मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून 2026 ईस्वी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज़्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को

2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मेरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वंदना कार्यक्रम के आरंभ में आपने अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में यह भक्ति रचना सुनी। आइए सुने एक और भक्ति संगीत।

0: अभी आप भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए चिंतन, वाचक स्वर प्रेम सिंह गोदारा का है।
1: आज से लगभग 500 वर्ष पहले एक महान संत हुए जिनका नाम कबीर महान है। भारत में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम के आगे महान लगा है। कबीर जी ने समाज को ध्यान की दो पद्धतियां दी, जिनमें से एक का नाम तत्वज्ञान है और दूसरी का नाम पारख ज्ञान है। तत्वज्ञान के अंतर्गत ध्यान की चार विधियां हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं। इस तत्वज्ञान का प्रतीक, इसका परिचायक सांथिया है, जो हम सब लोग अपने घरों के अंदर दीवारों पर या घर के मुख्य द्वारों पर बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर सांथिया बनाता है, वह व्यक्ति बताना चाहता है कि मैं तत्वज्ञान की चारों विधियों को जानने वालों में से हूँ। दूसरा प्रतीक, हम अपने घरों के मुख्य द्वारों पर शुभ और लाभ भी लिखते हैं, जिसका मतलब है हम उन लोगों में से हैं जो शुभ करते हैं और लाभ पाते हैं। शुभ का अर्थ है अपने मन, अपनी वाणी और अपने शरीर से अच्छे कार्य करना, और लाभ का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति। अब मैं तत्वज्ञान की उन चारों विधियों के नाम बता दूं। पहली विधि, जिसका नाम है अजपाजाप। दूसरी विधि का नाम है खेचरी मुद्रा। इस विधि को अमृत पान विधि भी कहते हैं। तीसरी विधि, जिसका नाम है अनहद नाद विधि। और चौथी विधि, जिसका नाम है ज्योतिर्मय स्वरूप। सबसे पहले मैं अजपा जाप के बारे में थोड़ा बता दूं। अजपा जाप का अर्थ है एक ऐसा सुमिरन, एक ऐसा जाप जो अपने आप हो रहा है। क्या हो रहा है? अपने आप, अपने आप हमारी श्वास भीतर जाती है और अपने आप बाहर आती है। यह एक प्रकार का झूला है जो बाहर वाले छोर से भीतर वाले छोर तक जाता है और फिर भीतर वाले छोर से बाहर वाले छोर तक आता है। यह एक ऐसी माला है जो हमारे घट में निरंतर फिरती रहती है। जब सांस भीतर जाता है तो एक प्रकार की ध्वनि पैदा होती है, और जब सांस बाहर आता है तो भी एक प्रकार की ध्वनि पैदा होती है। इस प्रकार आते जाते श्वास की ध्वनि से एक शब्द, एक नाम निर्मित होता है। उस नाम में ध्यान लगाए रखना ही अजपा जाप है, यानी अपने

0: को क्षण प्रतिक्षण अपने श्वास के आवागमन के प्रति आवागमन की जानकारी पर लगाए रखना ही ए जपा जाप है। हमारे संतों ने ऋषियों ने इस पे बड़े दोहे लिखे हैं, जिनमें से कुछ मैं यहाँ बोल रहा हूँ। श्वास श्वास हरि नाम सुमिर वृथा श्वास मत खोय, क्या जाने इस श्वास का आवन होए न होए। ऐसा सुमिरन कीजिए सहज रहे लोलाए, बिन जीवा बिन तालुए अंतर सुरत लगाए। हंसा सोहंग तार कर सुरती मकरिया पोए, उतरी उतरी फिर चढ़े सहजे सुमिरन होए। सुरती समावे नाम में जग से रहे उदास, कहे कबीर गुरु चरण में दृढ़ राखो विश्वास। ढूंढ कर पकड़ा नाम को जीव होठ के बीच, ए जपा जाप होवे स्वयं धोवे मानस कीच। आप ही रसना जप करे मन में माने मोद, व्रति वश होवे तभी हो संकल्प निरोध।
1: ये था आज का चिंतन, वाचक स्वर प्रेम सिंह गोदारा का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। किसान भाइयों के लिए प्रातः है 7:10 पर खेतीहर वास्ते कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा असली नकली खाद की पहचान। दिन में 12:50 पर खेत खलिहान में जानकारी का विषय रहेगा समस्याग्रस्त मृदाओं का आधार एवं प्रबंधन। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल होगा 7:00। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे कृषि के साथ पशुपालन व्यवसाय अपनाएं, रोग एवं रोग प्रबंधन ग्वार, बीमारी है बच्चों में मोटापा। इसके अलावा सुनेंगे उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम की जानकारी। लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में 9:10 पर कलाकार होंगे सुलोचना खमीर। मानस गान सुनेगा 7:20 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भाग संख्या 283। 7:30 पर सुनेगा कार्यक्रम सुप्रभात। इसमें आज विषय रहेंगे देशी खान पान, जीवन में सफलता, हमारे रीति रिवाज। सुगम संगीत में कुछ भजन सुनेगा 8:45 पर और चंद गजलें पेश की जाएंगी 12:30 पर। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का समय रहेगा 9:30 11:00 और 2:30 पर। गा मेरे मन का ये कार्यक्रम सुनेगा 10:00। एक ही शीर्षक से कार्यक्रम में आज का शीर्षक रहेगा रूठना और समय रहेगा 12:05। दिन में 1 बज

0: फिर 5 मिनट पर महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी घर आंगन। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे बचपन की यादें और लुप्त होते खेल। पानी की हर बूंद है कीमती, संस्कारों की छांव और बुजुर्गों का साथ, आंगन की रसोई और सेहत की चाबी। युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे। इसमें सुनेंगे यूथ आउटरीच कार्यक्रम की विजेता का रिकॉर्डेड कार्यक्रम। सरायकी कार्यक्रम आप सुना करते हैं शाम 6:05 पर। फिल्मी भक्ति संगीत का समय रहेगा शाम 7:45। रात्रि 8 बजे सुने कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इसमें सुनेंगे जानकारी और गीत। राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम गोरबंद सुनेगा रात्रि 9:15 पर। और रात्रि 10 बजे सुनेंगे कार्यक्रम गीत गंगा। हमारे दिल्ली और जयपुर के अंदर से रिले होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम होंगे दोपहर 3 बजे से, जिले की चिट्ठी शाम 6:40 पर। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:55 होने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विक शक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरक शक्तिः राष्ट्रप्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विगत दशके देशस्य उपलब्धयः विश्वासे स्थिरतायां बृहत्तर वैश्विक कल्याणाय प्रतिबद्धतायां च निहिताः सन्ति।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: सम्प्रति G7 शिखर सम्मेलने स्वस्य सहभागितायाः उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् राष्ट्रियहितं सर्वोपरि स्थापयितुं भारतस्य अविचल प्रतिबद्धतां वैश्विकनेतारः स्वीकृतवन्तः। सर्वकारस्य 12 वर्षाणां कार्यकालस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वच्छभारत, मेक इन इण्डिया, खादिप्रचारः, स्थानीय उत्पादानां समर्थनम् इत्यादयः उपक्रमाः सफलाः अभवन् येन नागरिकाः राष्ट्रनिर्माणस्य भावम् अङ्गीकृतवन्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सद्यः एव केषुचित् वर्षेषु प्रायः 25 कोटिशः जनाः निर्धनवर्गात् बहिः समागताः, येन विशालः नव मध्यमवर्गः उद्भूतः, आर्थिकक्रियाकलापाश्च प्रवर्धिताः। लखनऊनगरे 15 छात्राणां मृत्योः दुःखद अग्निघटनायाः अनन्तरं द्रुतकार्याचरणस्यान्तर्गतम् आरक्षकाः गतरात्रौ 6 जनानां विरुद्धम् FIR इति पञ्जीकृतवन्तः, तेषु 4 च निगडिताः। मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशानुसारं लखनऊ विकास प्राधिकरणस्य अग्निशामक विभागस्य विद्युत् विभागस्य च 4 अधिकारिणः अपि निलम्बिताः अभवन्। लखनऊनगरे अग्निघटनायाः सन्दर्भे अलीगंजनगरस्य आरक्षकैः BNS तथा उत्तरप्रदेश अग्निशामक सेवा अधिनियमस्यान्तर्गतं प्रासंगिकखण्डेषु 6 अभियुक्तानाम् अन्याञ्च उत्तरदायिजनानां विरुद्धं FIR पञ्जीकृतम् अस्ति, यत्र ह्यः दुःखद अग्निप्रकोपः अभवत्। तस्मिन् भवने अनधिकृत निर्माणस्य विषये 16-2000 वर्षे विध्वंसादेशः प्रसारितः आसीत्, परञ्च मासद्वयाभ्यन्तरे एव आदेशः निरस्तः अभवत्। एतदतिरिच्य राज्यसर्वकारेण अग्निघटनायाः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशोऽपि प्रदत्तः। घटनायाः अन्वेषणार्थं SIT इति विशेष अन्वेषण दलस्य निर्माणमपि कृतम्।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं।

0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Highlighting the government's 12 years in office, Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building. Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity. He stressed that empowering the poor and middle class remained a key priority, citing a affordable housing initiatives, tax reforms, healthcare schemes, and improved urban infrastructure. Taking swift action after the tragic fire incident in Lucknow, which claimed the lives of 15 students, the police registered a case against 6 individuals and arrested 4 of them last night. 4 officials from the Lucknow Development Authority, Fire Department and Electricity Department have also been suspended following directives from Chief Minister Yogi Adityanath. In connection with the fire incident in Lucknow, Aliganj police have registered an FIR under relevant sections of the BNS and the Uttar Pradesh Fire Service Act against 6 named accused and other responsible persons. Meanwhile, the state government has ordered a high-level inquiry into the fire incident. A special investigation team, SIT, was formed to investigate the incident and its members will submit their report within 7 days. At least 15 people, mostly students aged 16 to 25, died in the tragic fire yesterday afternoon. President Draupadi Murmu will confer the Padma Awards 2026 during the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. The President will confer 65 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 7 Padma Bhushan and 56 Padma Shri. Tennis legend Vijay Amritraj, actor Mammootty, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the coveted Padma Awards from the President.

0: limits have been imposed on the movement of civilian traffic through the Navyug tunnel during specific hours throughout the Yatra period to facilitate the movement of pilgrimage convoys. Vehicles travelling from Kashmir towards Jammu will not be allowed to cross the Navyug tunnel before 11:30 a.m., while vehicles moving from Jammu towards Kashmir will not be permitted to enter the tunnel after 3 p.m. each day. Indian Embassy in Doha has announced that Qatari authorities have confirmed the deaths of 12 Indian nationals in Ras Laffan incident Sunday night. In a social media post, the embassy extended its condolences to the bereaved families and offered prayers for the departed souls. It also stated that Qatari authorities confirmed all those injured in the incident are in stable condition and receiving appropriate medical treatment. The embassy is working in close contact with Qatari authorities to provide all possible help to the Indian nationals and their families affected by this incident. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतीहर वास्ते। आज इसमें जानकारी के विषय है असली नकली खाद की पहचान।
2: राम राम रामेश्वर भाई, राम राम
3: राम राम मुकेश भाई, राम राम राम राम। और सुनाओ मुकेश भाई, क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया रामेश्वर भाई, बस लाग रहे हैं खेत क्यार गए काम धंधे में।
3: बढ़िया बढ़िया। और अब देखा नहीं तो अब मौसम जो है वो बदल ला रहे है, और आपने हाड़ी जी की फसल है ना, आपने जो का भाई लोग है लगभग सामने में लाग रहे है।
2: जी बिल्कुल रामेश्वर भाई, अब आप देखने ला रहे हैं कि लगभग किसान भाई हैं जका आपकी फसलें जकी साम ली है, आगे की फसल की बीज आंत जकी बिंगी तैयारी भी शुरू कर दी है।
3: क्योंकि अब देखा नहीं तो आपने जगह कणगीज की फसल है बा लगभग कटाई हो चुकी है, लेकिन तूड़ी ताड़ी वालों तो काम धंधो नहीं मुकेश भाई, अजय की थोड़ा बहुत बाकी पड़ो है।
2: बिल्कुल रामेश्वर भाई, और वो काम धंधो तो देखो जी यही चाल तो ही रहनो है। हाँ, और हाँ। सागे सागे रामेश्वर भाई थारकनु कई जानकारी लेनी थे, मार में श्याणा मीने खो सोचे हो जानकारी थारू ही ले लिया।
3: मुकेश भाई श्याणा तो थे भी हो, लेकिन जानकारी की अगर बात पूछनी है ते पूछ सको, और पूछो के पूछना चाहो
2: रामेश्वर भाई। सहसु पहला तो मैं थारसु आ बात पूछना चाहूँ की जी आप खेती करा तो भी मैं खाद को उपयोग करा।
3: बिल्कुल।
2: और खाद के उपयोग का माँ अब अपन ने बेरो कौन लागे नहीं कि किसी खाद असली है और किसी नकली है, तो वो आन दिना में की चर्चा में रेवे कि आ खाद तो भाई तू नकली लिया हो या असली खाद है, तो बिंगी पिछाण किया करा
3: मुकेश भाई का। अब लाला दिना भी आपा एज की शिकायत है और एज की कमियां हैं, आपा सुनी और देखी भी आपने किसान भाई लोग बता ला रहे नकली खाद जी की है बाण ला रही है
2: जी,
3: तो इंग जी पिछाण है नी बा अपन करनी जरूरी है, तो इंग पिछाण आपा किया करनी है जी आपा डीएपी जिकी है बा खेत गमा बरताइया।
2: हाँ बिल्कुल, डीएपी आपा लगभग फसल में ही उपयोग में लेवाइया।
3: मुकेश भाई जे डीएपी की आपा पिछाण करनी है नी भी असली है नकली है, तो इंग लिए सहसु पहली आपा जो को तरीको अपनाना वो ये है कि डीएपी का कुछ एक जगह दाना भी हाथ में लेगे और बा में चुनो जो को है वो मिला गे और बिना मसलनो चाहिए हथेली के ऊपर, बिंग में जे तेज गंध आन ला जाए सुर मान ला जाए और आपा बिन सूंगे देखा तो यह समझाणो चाहिए का आ डीएपी जकी है बा एकदम असली है।
2: यानी कहना मतलब है कि जे सूंघणो ही मुश्किल हो जावे इतनी तेज गिंद आवे बीमा तो बा इंगो मतलब असली है।
3: हाँ बिल्कुल असली है, आ एक पिछाण है। और इंगे अलावा एक और पिछाण है मुकेश भाई।
2: के पिछाण है भाई बता दियो।
3: बा पिछाण आ है कि डीएपी का कुछ एक जगह दाना है बे धीमी आंच पर अपने तवा के ऊपर गर्म करना है जो को रोटी पोन वाला तो है
2: जी,
3: बिंग ऊपर आप गर्म कर लेवा, जे ये दाना फूल जाए तो समझाणो चाहिए है कि आ डीएपी जकी है असली
2: है।
3: हाँ
2: और इंग अलावा और कोई पिछाण है तो बा भी बता दे रामेश्वर भाई।
3: बिल्कुल एक और पिछाण है बा भी सुन लो थे, डीएपी की जिकी असली पिछाण है नी बा आ भी है मुकेश भाई के इंगा जका कठोर दाना भूरे काले और बादामी रंगा हुआ है और नाखून शू बे आसानी से टूटे कोनी आपा बिन मसल गए या तोड़ के देखा तो।
2: ठीक है, तो यूं आपा पिछाण सका कि आ डीएपी असली है और नकली है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: इंगा अलावा रामेश्वर भाई आपा पोटास को उपयोग करा फसल में।
3: बिल्कुल करा,
2: तो इंगो और बता दियो माने कि इंगो माने किया बेरो लगे कि नकली पोटास है या असली पोटास है।
3: इन चीज की भी पिछाण आपा कर सका जी पोटास की असली पहचान है वो इंगो सफेद जो को कड़ाकू है वो आपा मान सका। इंगे अलावा मुकेश भाई आपने एक और पिछाण है का आपा असली पोटास की जिकी पिछाण है बकियां कर सका, पोटास पानी में घुलने पर इंगो जो को लाल भाग है वो हमेशा ऊपर लपा से तैरतो रहे।
2: ठीक है रामेश्वर भाई, इंगे अलावा आपा बात करा सुपर फास्फेट की। तो सुपर फास्फेट की असली नकली की पिछाण आपा किया करा?
3: सुपर फास्फेट की भी असली नकली की पिछाण मुकेश भाई कर सका, सुपर फास्फेट

0: असली पहचान आ है कि इंगा सख्त दाना जका है अंगो जो को रंग है वो भूरो काड़ो और बादामी रंग हुए है।
1: ठीक है।
0: और इंगा अलावा सुपर फास्फेट का कुछ एक दाना तवा पर गर्म करना पर जे ए दाना ना फूले तो समझानो चाहिए का आ असली सुपर फास्फेट है।
1: असली सुपर फास्फेट। रामेश्वर भाई इंग एक पिछाण आ है कि इनमें ज्यादातर जो है वो डीएपी और एनपीके को मिश्रण बिंगी मिलावट हो है,
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: इंगो आपा पिछाण करके हैर आपा असली नकली की पिछाण कर सका।
0: बिल्कुल आप भी एक बहुत बढ़िया पिछाण है। और इन त्रियांशियों आप अगर आपने जी की असली नकली खाद है भी पिछाण कर गए यार खेत में ना खानी तो आपने जी की फसल है बा भी मुकेश भाई बहुत बढ़िया हुआ है। और आपने जो को पीसो टक्को लागू रहनी वो भी एड़ो कौन जेनी
1: बिल्कुल सही बात है रामेश्वर भाई।
0: पण है। अब तो खेत का काम धंधा मैं और थे और भी करना है तो क्यों ना चला।
1: चलो सा
0: राम
1: राम
0: राम
1: राम सा
0: सा
1: राम
0: राम राम।
1: राम। असली नकली खाद की पहचान। अभी किसान भाई इस विषय पर खेती और वास्ते कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए लोक भजन। कलाकार हैं भंवर लाल सोलंकी।

अभी आप लोक भजन सुन रहे थे। कलाकार थे भंवरलाल सोलंकी। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए मानस गान। आज इसमें सुनते हैं भाग संख्या 283, मुख्य स्वर शोभना राव और कविता कृष्णमूर्ति का है।

अपने को समर्पित कर देने के लिए रावण ने सीता को 1 माह का समय दिया था। इस अवधि की समाप्ति पर सीता जी के लिए अपना अंत हो जाने से अधिक व्याकुलता का कारण पतिवियोग है। वो त्रिजटा से कुछ ऐसा उपाय करने की प्रार्थना करती हैं जिससे वो शीघ्र शरीर त्याग कर सकें। त्रिजटा उन्हें धीरज बंधाती हैं। हताश सीता अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं, तुम्हारे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान दिख रहे हैं, तुम ही मुझ पर अग्नि वर्षा कर दो ताकि मेरी विरह व्यथा का अंत हो जाए। अशोक वृक्ष की डाल पर बैठे हनुमान जनक नंदिनी के शोक सने वचन सुनकर विचलित हो जाते हैं। वह श्रीराम की अंगूठी सीता जी के सामने गिरा देते हैं। मुद्रिका पहचान कर सीता जी को आश्चर्य होता है। श्रीराम की महिमा के गान के स्वर सुनकर वह राम कथा रूपी अमृत बरसाने वाले से अपने सामने प्रकट होने की प्रार्थना करती हैं।

मानस गान की भाग संख्या 283। अभी आपने सुनी मुख्य स्वर शोभना राव और कविता कृष्णमूर्ति का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज नमस्कार देवेंद्र शर्मा की ओर से। श्रोताओ, जल ही जीवन है, यह मात्र एक नारा नहीं बल्कि परम सत्य है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से लेकर उसके बने रहने तक जल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। श्रोताओ, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, और इसका सबसे बड़ा कारण यहां जल की प्रचुरता है। श्रोताओ, मानव शरीर और स्वास्थ्य के लिए जल हमारा शरीर लगभग 60-70% से बना हुआ है। श्रोताओ, मानव शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जल की प्राथमिक आवश्यकता रही है। जल हमारे शरीर में रक्त संचार को ठीक रखता है, भोजन को पचाने में मदद करता है और पोषक तत्वों को अंगों तक पहुंचाता है। पसीने के माध्यम से जल शरीर के तापमान को संतुलित भी रखता है। यह शरीर से हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। श्रोताओ, बिना भोजन के मनुष्य कुछ सप्ताह जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना कुछ भी दिन जीवित रहना असंभव है। आधुनिक युग में जल विकास का एक बड़ा पहिया है। बिजली बनाने, फैक्ट्रियों में सामानों के निर्माण, सफाई और कूलिंग के लिए भारी मात्रा में जल का उपयोग होता है। समुद्री और नदी मार्ग व्यापार के सबसे सस्ते माध्यम है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोड़ते हैं। श्रोताओ, बढ़ती जनसंख्या, अंधाधुंध औद्योगीकरण, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है। यदि आज हम नहीं संभले तो अगला विश्व युद्ध जल के लिए हो सकता है। आज की सबसे बड़ी जरूरत है जल की। एक एक बूंद कीमती है, इसे बचाने के लिए हमें व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर प्रयास करने होंगे। श्रोताओ, दैनिक जीवन में समझदारी यही है कि हम छोटे छोटे काम करते हुए, जैसे ब्रश करते समय या बर्तन धोते समय नल को खुला न छोड़ें, लीक होते नलों को तुरंत ठीक करवाएं, कारखानों के कचरे और प्लास्टिक की नदियों में बहने से रोकना होगा, अशुद्ध पानी को साफ करने, उसे बागवानी या सफाई के लिए काम में दोबारा उपयोग करना चाहिए। श्रोताओ, जल प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है।

जिसे फैक्ट्रियों में बनाया नहीं जा सकता। यदि जल समाप्त हो गया तो हरी भरी पृथ्वी एक मरुस्थल में बदल जाएगी। इसलिए यह है हम उसकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम जल का सम्मान करें और नारा बुलंद करें, जल ही कल है।

श्रोताओं, जिंदगी और प्यार यह एक ऐसा खूबसूरत चक्रव्यूह है जहां दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आपने इन दिनों इन दोनों शब्दों को जिस तरह हैं उसमें एक गहरा ठहराव और सोच छिपी महसूस होती है। अगर इसे गहराई से देखें तो इन दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा है, जिंदगी अगर जिस्म है तो प्यार उसकी धड़कन। बिना प्यार के जिंदगी सिर्फ काटी जा सकती है, जी नहीं जा सकती। शो तो प्यार सिर्फ किसी इंसान से हो ऐसा जरूरी नहीं, यह आपके सपनों, आपकी कला या खुद से भी हो सकता है। प्यार अगर रास्ता है तो जिंदगी उसका सफर। इस सफर में धूप छांव, सुख दुख दोनों आते हैं। प्यार हमें उस सफर को हंसते मुस्कुराते तय करने का हौसला देता है। दोनों इम्तिहान लेते हैं जिंदगी जीने का, सलीका सिखाने के लिए ठोकरें मारती है, और प्यार इंसान को निखारने के लिए धैर्य और समर्पण मांगता है। जिंदगी बिना प्यार के एक ऐसी किताब की तरह है जिसके पन्ने तो बहुत हैं लेकिन उन पर कुछ लिखा नहीं है।

श्रोतो, भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है और इस विविधता की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं में देखने को मिलती है। रीति रिवाज केवल कुछ क्रियाकलाप या रस्में नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों द्वारा संजोया गया वह ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। यह हमारी पहचान, हमारी जीवन शैली और हमारे संस्कारों का आईना है। श्रोतो, हमारे रीति रिवाज मानव जीवन को व्यवस्थित और अनुशासित बनाने का काम करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर पड़ाव को किसी न किसी संस्कार या रिवाज से जोड़ा गया है। त्योहारों, शादियों और अन्य पारंपरिक अवसरों पर पूरा परिवार और समाज एक साथ आता है। ये जुड़ाव आज के भागदौड़ भरे जीवन में अकेलेपन को दूर करता है और आपसी प्रेम बढ़ाता है। श्रोतो, बचपन से ही बच्चों को बड़ों के पैर छूना, अतिथियों का सत्कार करना और प्रकृति की पूजा करना सिखाया जाता है। ये रिवाज बच्चों में नैतिकता और संवेदनशीलता का विकास करते हैं। रिवाज भारतीय संस्कृति में मानव जीवन को संस्कारों के धागे में पिरोया गया है। श्रोतो, हमारे त्योहार ऋतुओं के बदलने और कृषि चक्र

से गहरे जुड़े हुए हैं। दीपावली अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी प्रकार होली आपसी मतभेद भुलाकर रंगों के जरिए गले मिलने का त्यौहार है। श्रोतो, हमारे रीति रिवाज हमारी जड़ें हैं। जिस तरह जड़ों के बिना कोई पेड़ जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह अपने परंपराओं के बिना कोई भी समाज अपनी पहचान खो देता है। आधुनिक बनना अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति को भूलकर नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने रिवाजों के सुनहरे और अर्थपूर्ण पहलुओं को संजो कर रखें और इन्हें अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपे, ताकि हमारी संस्कृति की यह अनमोल विरासत हमेशा जीवंत रहे।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म नसीब का ये नगमा कमलेश अवस्थी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

0: अभी आप कार्यक्रम सुप्रभात सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 8 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
2: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
2: भारत

0: आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैदाप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में NEFED की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम

के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रात

0: लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वही महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल है। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्यपार

0: करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends four officials in connection with Lucknow fire incident. Four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
2: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards during the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. A report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan,

0: Ravi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज आबनाए हुरमुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। नई दिल्ली में एक प्राइवेट मीडिया हाउस के ज़ेरे एहतमाम एक समिट से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क की कामयाबियाँ भरोसे, इस्तेकाम और आलमी सतह पर वसीतर बहबूद के तई अहद की बदौलत हासिल हुई हैं।
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में हालिया शिरकत का तज़किरा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने मुल्क के मफादात को मुकद्दम रखने के तई भारत के पुख्ता अज़्म को तस्लीम किया है और ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है जिसका मुल्क की पॉलिसियां और तरक्याती एजेंडा तय करने में अहम रोल रहा है। सरकार के गुज़श्ता 12 साल को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी के फरोख और मकामी अशिया के लिए हिमायत जैसे इकदामात इसलिए कामयाब हो सके कि लोगों ने मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाया।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में तकरीबन 25 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं जिससे एक नया बड़ा मुतवस्सित तबका उभरा है और इक्तिसादी सरगर्मियों को तकवीयत मिली है।
2: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इसमें फायदा होता है क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अता करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों

0: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में अता किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरिया 65 पद्म अवार्ड अता करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। अवार्ड्स हासिल करने वालों में 19 ख्वातीन शामिल हैं और 16 अफराद को बाद अजमर्ग ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती, फिल्म गुलूकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड्स से नवाजेंगी। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल योम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मज़कूरा अवार्ड्स गैर मामूली काम के एतराफ़ में तफवीज़ किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तिजारत व सनत, अदविया, अदब व तालीम, खेल, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दी शोबों में ये अवार्ड्स अता किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज़ दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्मा की सीरीज के तहत खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड्स याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किया जाता है।
2: मैदाब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये प्रोग्राम आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 पर सुबह 9:10 से सुना जा सकेगा। इसके अलावा आकाशवाणी के ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तियाब रहेगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ में पेश आए आग लगने के हादसे के तनाजुर में रियासती हुकूमत के 4 ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया है। मस्कुरा हादसे में 15 तलबा हलाक हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है और इनमें से 4 अफराद को कल रात गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी आग बुझाने वाले महकमे और बिजली महकमे के 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने 6 नामजदों मुलजिमों और दीगर कसूरवार अफराद के खिलाफ BNS और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट के मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज की है। आग लगने के इस वाक़े की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और खसूसी जांच टीम बनाई गई है जो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कल सपहर आग लगने के इस सानहा में कम अज़ कम 15 अफराद की मौत हो गई थी जिनमें बेशतर 16 से लेकर 25 साल की उम्र के तलबा थे। 9 तलबा जख्मी हुए जिन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में दाखिल किया गया है। बेशतर अमवात दम घुटने की वजह से हुई। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उमूरे दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत की कौमी ज़रई इमदाद बाहमी मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड के नीलामी पोर्टल का आगाज करेंगे। नीलामी के अमल में शफाफियत को मुस्तहकम बनाने और कामकाज को सहल बनाने की समत ये एक अहम कदम है। उम्मीद है कि मस्कुरा पोर्टल से नीलामी से मुतालिक सरगर्मियों को मरबूत करने और किसानों, मेंबर इदारों और मुतालिका फरीकों के मफाद में नेफेड के मजमूई कामकाज को वसत देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम हो सकेगा। बाद में जनाब अमित शाह नेफेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान के साथ एक मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में नेफेड अपनी सरगर्मियों और पेशरफ्त के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश करेगी। नेफेड का मुस्तकबिल का खाका भी पेश किया जाएगा। केमिकल्स और कीमियावी खाद महकमे की वजारत ने कहा है कि यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP और सल्फर की खेप लाने वाले 4 मालबरदार बहरी जहाजों ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए हुरमुज़ को कामयाबी के साथ पार कर लिया और अब ये

0: मुल्क में अपनी अपनी मुकर्ररा बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह और गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। वजारत ने कहा है कि कीमियावी खाद की इस दरामद से मौजूदा ज़रई ज़रूरियात की तकमील को मजीद तकवीत मिलेगी। वजारत ने ये जानकारी दी है कि मुल्क में कीमियावी खाद का मजमूई स्टॉक 196 लाख टन है, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 168 लाख टन था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ कल नई दिल्ली में बातचीत की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने में पेशरफ समेत दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों के मीटिंग के मौके पर यह बातचीत हुई। जनाब डोभाल ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि मुस्तहकम और तामीरी दोतरफा ताल्लुकात से तरफैन के दरमियान बाहमी एतमाद और बेहतर मुफाहमत कायम करने में मदद मिलेगी। दोहा में भारतीय सिफारतखाने ने यह ऐलान किया है कि कतर के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि इतवार की रात को रास लफान में हुए हादसे में 12 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिफारतखाने ने सोगवार खानदानों से ताजियत का इजहार किया और महलुकीन के लिए दुआ की। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि कतरी हुकाम ने तस्दीक की है कि हादसे में जख्मी होने वालों की हालत मुस्तहकम है और वो जेरे इलाज हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस हादसे में होने वाले जानों के जिया पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोहा में वाकई भारतीय सिफारत खाना इस हादसे से मुतासर होने वाले भारतीय शहरियों के खानदान की मदद के लिए कतरी हुकाम के साथ करीबी इश्तराक से काम कर रहा है और उनके राबते में है। कतर के सबसे बड़े गैस के मरकज में हुए धमाके के बाद कम अज कम 13 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं। दाखिली उमूर की वजारत ने बताया कि दोहा में रास लफान जोन में वाकई शहर के अहम रकीक कुदरती गैस LNG की प्रोसेसिंग के मकाम पर यह तकनीकी हादसा पेश आया। कतर के तवानाई के वजीर ने कहा कि इस धमाके से मुल्क की बरामदात मुतासिर नहीं होंगी। US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। इसमें सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। मर्दों के सिंगल सुमरे के पहले राउंड में आलमी नंबर 14 लक्ष्य सेन का मुकाबला बेल्जियम के जूलियन काराजी से होगा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू का सामना करेंगे। मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और मीनाक्षी की जोड़ी इंडोनेशिया के वीरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। मर्दों के FIH हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। चीन के हुलुम्बियर में मुनक़िदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत एक काबिल भरोसा मईशत के तौर पर दुनिया में तेजी से उभर रहा है। पिछले 12 बरसों में शुरू की गई फलाही स्कीमों से आवाम को फायदा पहुंचा है। वज़ीर ख़ारजा और डॉक्टर ए जयशंकर ने मंगोलिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तालीम व सकाफत और कई तरक्याती प्रोजेक्टों समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। अजीत डोभाल की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 2 रोज़ा मीटिंग कल नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल और सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में नई टेक्नोलॉजी के रोल पर हुई बातचीत, ये खबर भी आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाक़े के सिलसिले में 4 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज आबनाए हुरमुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुकाम ने रास लफान LNG धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और US ओपन

0: सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में सुनते हैं कुछ भजन।

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पर भी मेरी रूपा की कजरारी आंखों का ही रंग चढ़ गया है।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
0: अरे इसमें झूठ क्या है, जब देखो घूरती रहती हो मुझे, तुम्ही ने तो जादू डाला है मुझ पर।

0: अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में कुछ भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। यमुना जल परियोजना से संबंधित नई दिल्ली में आज होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हिस्सा लेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और केंद्र सरकार ने हज यात्रा 2027 के लिए नई नीति की घोषणा की, ऑनलाइन आवेदन शुरू। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को पद्म पुरस्कार मिलेगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। यमुना जल परियोजना के एमओयू को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। बैठक में दोनों राज्यों और केंद्र सरकार के बीच इस महत्वपूर्ण समझौते से जुड़े विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक विषयों पर निर्णायक चर्चा की जाएगी। इस परियोजना से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को पीने के पानी की भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा। गौरतलब है कि यमुना जल समझौते के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। ये डीपीआर केंद्रीय जल आयोग के साथ भी साझा कर दी गई है। प्रदेश के सरहदी जिलों में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि इन क्षेत्रों में एक निश्चित दायरे के भीतर बने निर्माण कार्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हटाया जा रहा है। श्री पटेल ने बताया कि राज्य सरकार सुरक्षा के मामले को लेकर पूरी तरह सजग है।
2: पाकिस्तान की बॉर्डर से एक निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी कतर का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा और वहाँ कोई अलॉटमेंट भी नहीं होगा, न स्थायी निर्माण होगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जब केंद्र सरकार के ध्यान में ये लाया गया कि ऐसे जो निर्माण है वो निर्धारित परिधि के अंदर है, वहाँ निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, अलॉटमेंट प्रतिबंधित है, और ये भी ध्यान में लाया गया कि इनकी गतिविधियां देश की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के ठीक नहीं है, तो माननीय केंद्र सरकार के निर्देशानुसार क्लीन शिप के नाम से जो निर्धारित अवधि के अंदर जहाँ अलॉटमेंट या कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता उसके अंदर है, उनको साफ किया जा रहा, हटाया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
1: राजस्थान में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई ये समिति राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करेगी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कल जयपुर में प्रेस वार्ता में जानकारी दी। श्री बेढ़म ने बताया कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। ये समिति संभाग स्तर पर लोगों से सीधा संवाद करेगी। इसके अलावा आम नागरिक वेबसाइट के जरिए भी अपने सुझाव समिति तक पहुंचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से प्रदेश को नई दशा और दिशा मिलेगी।
3: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो महिला हो या पुरुष हो,

0: उनको समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे। मैं समझ सकता हूं कि ये यूसीसी राजस्थान में लागू होने के बाद एक नई दशा और दिशा प्रदेश को मिलेगी। उस कानून के लागू होने के बाद सभी लोग एक कानून, एक प्रदेश, एक देश के तहत अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी कार्यविधियों को और अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इसे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री शाह नेफेड के निदेशक मंडल के साथ बैठक करेंगे। हज यात्रा 2027 के लिए नई नीति की घोषणा कर दी गई है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल नई हज नीति 2027 जारी की। इच्छुक लोग भारतीय हज समिति की वेबसाइट और हज सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार भी हज समिति और निजी क्षेत्र के बीच यात्रियों के कोटे का अनुपात 70-30 का रखा गया है। इसके तहत 1,22,518 सीटें भारतीय हज समिति के पास रहेंगी, जबकि 52,000 से ज्यादा सीटें निजी टूर ऑपरेटर्स के लिए निर्धारित की गई हैं। गौरतलब है कि सऊदी अरब द्वारा तय समय सीमा का पालन करने और तैयारियां समय पर पूरी करने के उद्देश्य से इस बार हज नीति की घोषणा जल्दी की गई है। प्रदेश में आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक मजबूत तथा तकनीक आधारित बनाने के लिए इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 परियोजना बनाई गई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर में इस परियोजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने और आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में न्याय संहिता डैशबोर्ड पर राजस्थान के प्रदर्शन और स्कोर्ड कार्ड की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कल ही पीएम श्री और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों का दौरा कर जमीनी स्तर पर योजनाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था को सुगम और सिग्नल फ्री बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण तेजी से काम कर रहा है। जयपुर में महल रोड की तर्ज पर अब न्यू सांगानेर रोड और सीकर रोड पर भी यू टर्न आधारित सड़कें बनाई जा रही हैं। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक जैम से निजात दिलाना और यातायात को निर्बाध बनाना है। उन्होंने बताया कि यदि यू टर्न का ये प्रयोग सफल रहता है तो इस साल के अंत तक शहर के लगभग 21 प्रमुख ट्रैफिक चौराहों यानी जंक्शनों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
2: हम लगभग यू टर्न पैटर्न के ऊपर बेस के ऊपर ही लगभग 21 ट्रैफिक जंक्शंस को हम बंद कर पाएंगे। साथ में हम और तरीके के भी बहुत सारे हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे लोगों को अगर लेफ्ट जाना है तो उनको रेड लाइट पे खड़े ना होना पड़े। एक हमने प्रयास यहाँ पे करा था रामबाग सर्कल के ऊपर और बाकी शहरों में भी अब हमने यहाँ जेडीए सर्कल पे, जेडीए चौराहे पे भी किया है। इसके साथ साथ हम लगभग 15 जुलाई के आसपास हमने 24 जंक्शन चिन्हित करे हैं, जहाँ पे हम जो हमारा कंट्रोल रूम है ट्रैफिक का, वहाँ से देख के, कैमरा से देख के ही लोगों को हम वार्न करेंगे। अगर कोई रेड लाइट को क्रॉस कर रहा है या स्टॉप लाइन के आगे आ रहा है या बिना हेलमेट के कर रहा है तो हम अपने स्पीकर के थ्रू ही उनको समझाने की कोशिश करेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। यमुना जल परियोजना से संबंधित नई दिल्ली में आज होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हिस्सा लेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भारतीय राष्ट्रीय कृषि

0: अधिकारी विपणन संघ के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और केंद्र सरकार ने हज यात्रा 2027 के लिए नई नीति की घोषणा की, ऑनलाइन आवेदन शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं सुलोचना खमीर।

ये आकाशवाणी का गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं सुलोचना खमीर।

मरुमंगल कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज कलाकार हैं सुलोचना खमीर।

प्रार्थी सुलोचना खमीर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं लता मंगेशकर को। गीत रचना हसरत जयपुरी की और संगीत शंकर जयकिशन का, और फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो।

श्रोताओं, एक बार फिर से सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म जुगन जंगली में। हसरत जयपुरी की रचना को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म कभी कभी से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। साहिर लुधियानवी की रचना को संगीत दिया है खय्याम ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा आनंद बख्शी की रचना संगीत दिया है राजेश रोशन ने, फिल्म जूली के लिए आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

उस्तादों के उस्ताद। श्रोताओं, सुनता है इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी को, आसाद भोपाली की रचना को संगीत दिया है रवि ने।

किशोर कुमार को सुनते हैं फिल्म मेरे जीवन साथी में। मजरू सुल्तानपुरी की रचना को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

झील के उस पार सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर को, आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गा मेरे मन गा। इस कार्यक्रम में ये पहला नगमा आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी। आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: मेरा साया. श्रोताओ, सुनते हैं इस फिल्म में आशा भोसले को. गीत लिखा है राजा मेहदी अली खान ने और धुन मदन मोहन की.

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुनते हैं फिल्म जुगनू में। आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है एस डी बर्मन ने।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: आशा भोसले और मोहम्मद रफी को सुनते हैं फिल्म नागिन में। गीत रचना वर्मा मलिक की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
3: शरारे बरसा रही हैं और इनकी ताब लाने के लिए मुझे सहारा चाहिए।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुनते हैं फिल्म अपना देश में। आनंद बख्शी की रचना को संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

गांव मेरे मन गा एक कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज आपके साथ में मैं देवेंद्र शर्मा। श्रोतो, कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म चित्तचोर से, आवाज यशुदास की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

महेंद्र कपूर और बलबीर को सुनते हैं फिल्म मेरे हमसफर में। आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

हसीना मान जाएगी। श्रोताओं, सुनते हैं इस फिल्म में मोहम्मद रफी को। गीत रचना अख्तर रोमानी की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म पगला कहीं का से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, हसरत जयपुरी की रचना को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुनते हैं फिल्म प्यार का मौसम में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को सुनते हैं फिल्म गुलामी में। गुलजार की रचना को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

गा मेरे मन गा। अभी आप ये प्रोग्राम सुन रहे थे, हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं, फिल्मी गीतों का सिलसिला जारी है फिल्म संगीत के तहत।

0: गाइड फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, गीत के बोल शैलेंद्र के थे और धुन तैयार की थी एसटी बर्मन ने।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को

0: सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
0: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत तैयार किया है नौशाद ने और फिल्म का नाम है सन ऑफ इंडिया।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: मेरे महबूब, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत तैयार किया था नौशाद ने।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: श्रोताओं, इस समय आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं मजरू का लिखा ये गीत। धुन आरडी बर्मन की है, आवाज़ है किशोर कुमार की, और इस गीत को हमने फिल्म अनामिका से लिया है।

श्रोताओं, ये आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की फिल्म मेरा साया में। गीत के बोल राजा मेहदी अली खां के थे, धुन मदन मोहन की। और लीजिए अब किशोर कुमार को सुनिए, नीरज का के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है एस डी बर्मन ने और आवाज़ दी है किशोर कुमार ने। फिल्म शर्मीली।

हिमालय की गोद में। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत को लिखा था इंदिवर ने और संगीत तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, अब हम आपको साहिर लुधियानवी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। धुन रवि की है, आवाज़ महेंद्र कपूर की, और फिल्म का नाम है गुमराह।

हम दोनों फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। लीजिए आशा भोसले के साथ हम मुकेश को सुनिए, गीत साहिर का, संगीत खयाम का, और फिल्म का नाम है फिर सुबह होगी।

सुमन कल्याणपुर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं।

12:05 पर कार्यक्रम होगा एक ही शीर्षक से। आज का शीर्षक रहेगा रूठना। 12:30 पर सुगम संगीत और 12:50 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। दिन में 1 बजे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। आज इसमें चर्चा के विषय रहेंगे बचपन की यादें और लुप्त होते खेल, पानी की हर बूंद है कीमती, संस्कारों की छांव और बुजुर्गों का साथ, और आंगन की रसोई सेहत की चाबी। दिन में 2 बजे अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 2:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा और दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी।

आज शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में आप यूथ आउटरीच कार्यक्रम की विजेता अंकिता सिहाग की प्रस्तुति सुनेंगे। शाम 6 बजे कार्यक्रम विवरण वह 6:05 पर सिराई की प्रसारित की जाएगी। शाम 6:30 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 7 बजे किसान भाइयों के लिए प्रसारित किया जाएगा उनका अपना कार्यक्रम चौपाल। आज चर्चा के विषय रहेंगे कृषि के साथ पशुपालन व्यवसाय अपनाएं, बच्चों में मोटापा, ग्वार में रोग प्रबंधन और साथ ही बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। रात्रि 8 बजे एक ही फिल्म से प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। रात्रि 9:15 पर राजस्थानी फरमाइशी कार्यक्रम सुनिएगा गोरबंद। रात्रि 10 बजे कार्यक्रम गीत गंगा प्रसारित किया जाएगा। ये था कार्यक्रम विवरण।

हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही शीर्षक से।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुमन शेखावत का नमस्कार। श्रोताओं, आज के शीर्षक पर हमें साहिर लुधियानवी की पंक्तियां याद आ रही हैं कि किसी के मनाने में लज्जत वो पाई, किसी के मनाने में लज्जत वो पाई कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है। रूठने की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें बच्चों का ख्याल आता है, और यूं भी बचपन और रूठना तो एक दूसरे के पर्याय हैं। और जब हमारे घर का कोई नन्ना मुन्ना रूठता है या

श्रोताओं, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ तकरार भी लाजमी है, और कभी कभी तो यूं भी होता है कि हमें किसी के रूठने की वजह ही मालूम नहीं होती, और जब वजह मालूम ही नहीं तो फिर मनाया कैसे जाए।

साथियों, ये रूठना मनाना भाई बहनों में भी खूब चलता है, लेकिन परिवार में हमारा कोई भाई या बहन किसी वजह से दूर चला जाए तो उसकी कमी बहुत अखरती है हमें, और दिल उसके लौटने की दुआ करने लगता है।

श्रोताओं, इस समय आप प्रोग्राम सुन रहे हैं एक ही शीर्षक से, और आज का शीर्षक है रूठना। साथियों, कोई एक शख्स जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, तो अगर वो दूर भी चला जाए फिर भी करीब ही महसूस होता है, फिर चाहे वो रूठ कर गया हो।

श्रोताओ, बड़ी अजीब सी बात है कि बच्चों को मनाना तो आसान होता है, मगर कभी कभी बड़ों को मनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।

अभी आपने कार्यक्रम सुना एक ही शीर्षक से। आज का शीर्षक था रूठना। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

चित्रा सिंह की आवाज़ में अभी आपने सईद राही का ये कलाम सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश जगजीत सिंह की आवाज़ में, इन दोहों को लिखा है निदा फासली ने।

चित्रा सिंह की आवाज़ में अभी आपने ये गज़ल सुनी। सुगम संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम की अगली पेशकश जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: इसी गज़ल के साथ ही प्रोग्राम सुगम संगीत अब यहीं ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान। आज इसमें जानकारी का विषय है समस्याग्रस्त मृदाओं का सुधार एवं प्रबंधन।
1: किसान भाइयों राम राम। आपने भारत देश के मां बहुत बड़े भूभाग के ऊपर किसानी करी जावे, लेकिन कठे न कठे अपन देखा के ईसो ही एक बड़ो भूभाग ईसो है जगह के ऊपर अवांछित खरपतवार खड़ी है, घास है, हानिकारक झाड़ियाँ खड़ी है। तो बे भूमि है जकी कृषि वास्ते उपयुक्त कोनी। ना उपयुक्त होने को कारण वो है कि का तो वह लवणीय है का वह क्षारीय है। इसी भूमि के ऊपर खेती संभव को नहीं हुआ, क्योंकि बुंटे की जी की जड़ है बिंगी विकास और वृद्धि हो कौन सके, और इसी जी की भूमि है बा लगभग छोटे किसाना कन है जबकि कठे न कठे आर्थिक असमानता लियागे देवे, क्योंकि किसान जी को है वो समृद्ध हो कौन पावे और आर्थिक रूप से पिछड़ तो जावे। लवणीय क्षारीय भूमि के सुधार वास्ते बहुत सा कार्यक्रम चालन लाग रहे और इकट्ठे न इकट्ठे समाज हित में। लवणीय और क्षारीय भूमि एक तो सदाशु ही हुए, एक बने बनने का कई कारण बन जाए। बिंगमा शुष्क जलवायु है, सिंचाई का जी का स्रोत है जियाँ ट्यूबवेल आपां लगावा, नहरों पानी की जी की प्रकृति है बा लवणीय हो जाए या क्षारीय हो जाए,

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। यमुना जल परियोजना के लिए एमओयू पर राजस्थान और हरियाणा के बीच सहमति बन गई है। आज नई दिल्ली में एमओयू को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री पाटिल ने बताया कि इस एमओयू पर अगले सप्ताह हस्ताक्षर किए जाएंगे।
1: आज दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। अन्य मुख्यमंत्री दोनों ने जो हरियाणा से पानी जो सरप्लस वाटर आज उसका नया एमओए करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो एमओयू का उनको एक्सचेंज करेंगे। इस तरह का अभी आज तय हुआ है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही जल बंटवारे की समस्या समाधान के बाद राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिल पाएगा।
2: यमुना के पानी की मांग लंबे समय से हो रही थी और 94 का ये जो फैसला है वो आज बैठ करके हमारे सभी अधिकारियों ने उसको आगे बढ़ाया है। जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमओए उसका होने वाला है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में जिस तरह से पानी की कमी है और राजस्थान को पानी की आवश्यकता है वो राजस्थान का हिस्से का पानी इसमें मिलेगा। मैं इसके लिए धन्यवाद माननीय पाटिल साहब को और माननीय हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी धन्यवाद देता हूं।

0: यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध होगा, साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज जोधपुर के एम्स और पावटा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने पावटा अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की तबियत बिगड़ने के मामले में ये दौरा किया है। श्रीमती राठौड़ ने एम्स में भर्ती दो और पावटा अस्पताल में भर्ती छह प्रसूताओं के स्वास्थ्य और उपचार की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों को सभी मरीजों की 24 घंटे निगरानी करने और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों और आला अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कम वर्षा की स्थिति में आवश्यक तैयारियों, वैकल्पिक फसल योजनाओं और किसानों के हितों पर रक्षा पर भी चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 21 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ हल्की बरसात हो सकती है। हनुमानगढ़ में आज सुबह से ही बादल छाए रहे और रिमझिम बरसात हुई। वहीं पिछले दिनों से जारी प्री मानसून गतिविधियों से लोगों को चिलचिलाती धूप और लू से राहत मिली है। हालांकि उमस वाली गर्मी से लोग परेशान है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर को छोड़कर लगभग सभी जगह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष प्री मानसून गतिविधियां अच्छी रही हैं। 1 से 21 जून के बीच प्रदेश में सामान्य से 41% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। ये दिन हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को खेलों के माध्यम से फिटनेस, शांति, एकता और भाईचारे के लिए प्रेरित करना है। इस साल की थीम यू कैन डू दिस, लेट्स मूव रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और उभरती प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता की भावना को मजबूत बनाते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

राम राम सा खम्मा गणी। दोपहरी रात ठीक 1:05 ऊपर हो गया है। मारी सगली श्याणी मावा लाडली बहना और चाची ताइया ने थारी आपने सिल्लू जीजीरो हिवड़े सु गहराइया सु घणो घणो स्वागत करूँ सा। बहनों आज तपती दोपहरी सूरज भगवान पूरे ताव माथे है। लूरा थपेड़ा चाला है और माटी तपे। पण ये तपती रुत रे मायने भी मारे मारवाड़ रे घरा रे आंगन कितना शांत और सुगढ़ लागे सा। सुबहरो सगलो चूल्हे चौके रो काम निपटार, टाबरा ने सुवार और पशुआ ने पानी पार, छाया में बांधर अब घड़ी भर सुस्तावन रो और रेडियो रे नेड़े आवन रो वक़्त हो गयो ऐसा। रेडियो रे नेड़े आवते ही पूरे दिन री थकान उतर जावे। आज तो ओ घर आंगन कार्यक्रम घणो

0: मायने एक इसी हिलोर उठाए नी जाने कोई पुरानी तिजोरी खुल गई होवे। तो आज आपा उन सुनहरी बचपन री यादा माथे बात करा ला। मैनू आपा अपनो बालपन याद कराने तो सुकून सो मिला है। जेठ बैसाखरी दोपहरी होनती स्कूल री छुट्टियां होनती मावा दादी सा रा लाख डांटन और मना करन रे बाद भी ज्यों ही घर रा बड़ा बडेरा सोमता आपा दबे पगा घर सु बारह निकल जामता। उन तपती रेत मायने नीम री ठंडी छाया रे मायने गलिया रे मायने जिको खेल रो मेलो मंडतो वाह सा वाह। कदी सतोलियो खेलनो कदी दड़ी खेलनो कदी पिट्ठू खो खो और कदी कदी तो लुका छिप्पी खेलने। उन बकत खेल रा साधन कितना सस्ता और सादा होता हा। कोई महंगो खिलौनो को नहीं होन तो बस गली रा चार टेबर टाबर भेड़ा होया और खेल शुरू। और बह घोड़ा कबूतर रुमाल झपट्टा और गलिया रे मायने टायर दौड़ानो याद है नी थाने? और थाने के याद है अपना बचपन रा खेल? इंग मथे बात करा ला पण पहले सुनावा थाने एक चोखो सो गीत।
1: चला जोधपुर ए जी जोधपुर का कबूतर और भाई उड़ता रे पुर पुर रखे मोटर बोली गुर छोरा बोलिया हुर लागर गिंडकड़ा लागर गिंडकड़ा।

काल भाई र कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस ये जी मोर राम जी ये जी मोर राम जी कर फैसलो नानी तो कंजूसर भाई नानी बोली अर छोड़ दाल चर पर नानी बोली अर

कान्यो गयो भाग नानी का गई लाग, कान्यो गयो भाग नानी का गई लाग। ए जी कान्यो रोवे भाई नानी दौड़े।

मैडम बचपन रहा बे दिन कितना पूट रहा हूं था हा, ना कोई चिंता ना कोई फिकर और सारे दिन खेलनो और काम करनो और पढ़ाई करनी। तो बहनों भी खेल रहे मायने भी कितना आनंद आपने मिलते हो, कभी आपा खो खो खेलता, कभी पकड़न पकड़ाई और कभी कबड्डी, और थाने याद है खेल खेल रहे मायने कभी कभी गोडा छिल जाता, कभी गोडा फूट जाऊंता, कभी हाथ छिल जाता, मन मजाल है कि कोई टाबर रोवे पाछा खड़ा होनता, माटी झाड़ता और पाछी दौड़ लगा देता। उन खेला सु बहनों मनोरंजन तो हो तो ही हो, सागे सागे आपनो शरीर भी मजबूत बनतो, हिवड़े माए धीरज आम तो और आपस मायने मिल रेवनरी भावना भी पैदा होती ही। हार जीत ने हंसर झेलन री सीख आपने उन खेला सु ही मिलती ही। पण आजकल आप देखा कई टाबर तो घर सु बाहर निकलनो ही कोनी चावे, बाने तो बस मोबाइल चाहिए जाए, मोबाइल चलावनो मोबाइल माथे गेम खेलनो घणो ही चोखो लागे। पण बहनों इन सू टाबरा रो शरीर कमजोर भी हो जावे कई बार, और कई बार वह टाबर चिड़चिड़ा भी हो जावे, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने वास्ते आपने खेल भी खेलनो चाहिए जाए, बारे घूमनो फिरनो भी चाहिए जाए। घर री लक्ष्मी होवन रे नाते आपनी जिम्मेदारी है कि आपा टाबरा ने पुराना खेल सिखावा। कदी रात ने आंगन मायने भेड़ा बैठर खुद उंड रह सागे आँख मिचोनी या घर घर खेला तो देख जो टाबर कितो राजी होवेला। तो मारी शानी बहनों आज सु ही टाबरा ने पुराना खेल सिखाओ, जिंग सुबांगो शारीरिक और मानसिक विकास होवेला। बात तो बहनों कितनी भी खींच लो सा हिवड़ो कोनी भरा, पर अब वक़्त हो गया फूट रो और उमंग सु भरियोड़ो लोक गीत सुनावन रो। तो थे सुनो ओ गीत और आनंद लेओ, और मैं थोड़ी देर में पाछी आऊँ।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: वाह भाई वाह, बालपन री यादा रो उमड़ाओ और ओ पुट रो सो गीत सुनर तो हिवड़ो सचमुच हरी भरी दूब ज्यों तर हो गयो है। पर बहनों, ज्यों ही आपा तर होवन री बात कराने तो इन ताती दोपहरी रे मायने मारो ध्यान उन कोणे रे मायने रखियोड़े माटी रे घड़े खाने जावे और उन घड़े रे माए सजोयड़े अमृत ज्यू ठंडे पानी खाने। पर पानी री हर बूंद कीमती है। आजकल घर घर नल आ गया है। नल आवासू आपा होदी भर लेवा, टंकी भर लेवा, पर कई बार बहनों के हुए कि आपा होदी भर लेवा और आपा ध्यान ना देवा तो वो पानी नाली रे मायने ढुले है, जिको कदी कदी अपने जी ने घणो ही दोरो लागे है और जी भी दुख पावे कि इतो पानी इं ही बर्बाद गयो। कई बार टाबर हाथ मुंडा धोवे तो नल ने खुल्लो ही छोड़ देवे है, या कई बार वह मंजन करे तो टूंटी खुली ही पड़ी रहे। तो ये सब चीज़ें अपने टाबरा ने सिखानी पड़सी कि जितनी जरूरत होवे है बितो ही पानी ने काम मायने लेवनो है। और सागे मंजन वगैरह करो तो बाल्टी या मग्गे सो कर लो या फिर टूंटी ने फिर बंद कर दो। आंगन मायने धोवन मायने भी कई बार आपा कई बाल्टियां पानी इं ही बहा देवा हाँ। पर बहनों, आपने आ भूल कदे को नहीं करनी। बादलिया खाने देखो कदी तो बे आवे और कदी बिना बरसिया ही उड़ जावे। मौसम रो मिजाज कतो बदल रियो है। इन वास्ते पानी री एक एक बूंद ने ध्यान सु बरतनो है सा। रसोई मायने जब आपा दाल या सब्जी धोवानी तो उन पानी ने फेंकन री जगह आंगन मायने लाग्योड़ा पौधा या नीम री जड़ मायने घाल देवनो चीज है। और टाबरा ने भी बालपन माए ही सिखाओ कि गिलास मायने उत्तो ही पानी लेओ जितनी प्यास होवे, क्योंकि कई बार टाबरिया के करे गिलास पूरी भर ले सी, एक दो घूंट पी सी और वो पानी फिर इं ही ढोल देवे है। मनो अपने दादी नानी भी कया करता कि पानी ने जे आपा आज बचावाला तो पानी अपनो काल बचा सी। ऐ तो असली संस्कार है अपना। पानी री हर बूंद मायने जीवन है। इन जीवन ने सहेज राखनो अपनो धर्म है। पानी खुद भी बचावनो है और टाबरा ने भी सिखावनो है। अब घड़ी री सुई मने इशारो कर रही है कि एक चोखो सो भजन सुनाओ, तो चलो सुना आपा एक चोखो सो भजन।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: वासावा भजन सुनर तो कलेजे ने ठंडक सी मिल गई सा। थाने भी आनंद आयो नी बहनों, आनो ही चाहिए जाए। भजन सुमिरन सु मन री सगली आंधिया एकाएक थम जावे है। अरे हाँ बहनों, पानी री बचत री बाता करता करता मने याद आयो कि आ घर गृहस्थी री गाड़ी चलावनो भी आसान कोनी। इंग मायने भी सुख दुख, खट्टी मीठी बातें और सब सुबेसी आपने बड़ा बडेरा रो साथ होनो घणो ही जरूरी है। अब आपा बात कराला अपने हिवड़े रे सब सु नेड़े, संस्कारा री छाव और बुजुर्गारे साथ मात है। मैनो घर गृहस्थी री बाता मायने जब ताई सासू जी और दादी सारो जिक्र ना होवे तो बात पूरी ही कोनी लगे। बुजुर्गारो साथ तो आपने घर माथे उन हरे भरे नीम ज्यू है सा, जिको कड़वो जरूर लागे पर उन री छाया ठंडी होवे। आप सोचो, जब घर मायने कोई टाबर बीमार हो जावे या कोई नई चीज बनावनी होवे तो आपा सासू जी खने जावा या भागर दादी सा खने जावा, बेझट सु कोई ना कोई नुस्खो बता देवे है और अपनी मदद करे। बहनों बडेरा घर मायने हुए नी तो टाबरा ने संस्कार बडेरा री गोदी रे मायने बैठर मिले है। अच्छी अच्छी कहानियां सीखण ने मिले, टाबर बडेरा रे पगे लागनो सीखे, खम्मा गणी और राम राम कहवनो सीखे और अच्छी अच्छी आदता सीखे। जिका टाबर बडेरा री छाया मायने मोटा होवे नी, वह कदी जिंदगी री राह सु कोनी भटके। और साची पूछो तो घर गृहस्थी री असली बरकत है बुजुर्गा रे राजी खुशी मायना है। सुबह उठर सास ससुर जी रे पगा लागर आशीष लेओ तो पूरो दिन चोखो जासी। कदी कदी सासू जी री बात सुन भी लो तो हंस टाल दो सा, सोचो माँ ही तो है। कदी गलती होवे तो अपनी माँ भी तो अपने डांटा है, बी बह अपना माँ है। जब ते हस्तो मुंडो राखो लानी तो पूरे घर मायने खुशियारो वातावरण बनसी। तो मारी लाडली बहना, आपने घर रे बड़ा बडेरा ने मान सम्मान देओ। उन सागे दोपहरी रे मायने घड़ी भर बैठर सुख दुखरी बातें करो। मैडम बातें तो कत्ती कर लो, हिवड़ो कोनी भरा है, पर अब थारे वास्ते एक घणो ही फूट रो और झुमणियों गीत बजावन रो बकत हो गयो है। थे सुनो ओ गीत, आनंद लेओ और मैं थोड़ी देर मायने पाछी आऊँ।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: entered the knockout stage. Meanwhile, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In hockey, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan in the opening match of the FIH Pro League today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Hulunbuir, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex plunged 653 points to 76,441, while the Nifty lost 220 points to 23,883 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage, and in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है। तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास कर।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100

0: 1.1 MHz पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज़ ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक

0: बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
3: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन

0: जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरु मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

हिना फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और लीजिए अब नरेंद्र चंचल को सुनिए, फिल्म का नाम है बॉबी।

नाम फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम की अगली पेशकश सुखविंदर सिंह की आवाज़ में, फिल्म है चलते चलते।

लेकिन फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और लीजिए अब हरिहरन, अलका याग्निक और जसविंदर नरूला को सुनिए, फिल्म है जुदाई।

श्रोता, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। 3 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में उर्दू सर्विस हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी।

सामिन आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज़ होता है।

आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। सामिन, आपको बता दें फिर कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। 3:30 हम पेश करेंगे प्रोग्राम अदब नुमा। 4 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी। तो सामने थे एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे।

मीडियम में 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप आसिया मेमुना से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अता करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए अब नए हुरमुज खोले जाने का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। लियोनल मेसी फीफा आलमी कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अर्जेंटीना नॉकआउट मरहले में सबसे आगे है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अता करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में अता किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरिया 65 पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में 19 खवातीन शामिल हैं और 16 अफराद को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिए जाएंगे। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूटी, फिल्मी गुलूकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा इन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मजकूरा अवार्ड गैर मामूली खिदमात के एतराफ में तफवीज किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तिजारत सनत, अदविया, अदब तालीम, खेल, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दिद शोबों में अता किए जाते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गया है। जनाब शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनका शुमार मुल्क के सबसे ज्यादा अजीम रहनुमाओं में होता है जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद और यकजहती को महफूज करने में मदद की। उन्होंने नेफेड नीलामी पोर्टल शुरू करते हुए नई दिल्ली में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए ये बात कही। भारत ने अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मफाहमत नामे का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों की कौमी सलामती मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि इस मफाहमत नामे के नतीजे में दुनिया भर में तवानाई की सप्लाई मुस्तहकम होगी। उन्होंने आबनाए हुरमुज खोले जाने का भी खैर मकदम किया और कहा कि इससे सप्लाई में हायल रुकावटें दूर होंगी और कीमियावी अशिया और कीमियावी खाद जैसी चीजों की किल्लत पर काबू पाया जा सकेगा। जनाब हाल ने कहा कि खित्ते और खित्ते से बाहर जहाजरानी की ज्यादा पेशरफ से इक्तिसादी खुशहाली को फरोग हासिल होगा।

जनाब डोभाल ने मजीद कहा कि आज दुनिया अफरा तफरी के दौर से गुजर रही है, जहां फौजी तनाज़ात, जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल, इक्तसादी मसाइल और ऐसी टेक्नोलॉजी भी सामने आ रही है जो रुकावट डाल सकती है। इंसानी हकूक से मुतालिक कई तंजीमों और कारकुनों ने चार बलूच सरगर्म कारकुनों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने की शदीद मजम्मत की है, जिनमें मेहरांग बलूच भी शामिल हैं। उन्होंने इस फैसले को सरीहन नाइंसाफी और पाकिस्तान की तरफ से की गई इसे अदालती दहशतगर्दी करार दिया। इससे पहले पाकिस्तान की इनजाद दहशतगर्दी अदालत ने फ्रंटियर कोर के एक एहलकार के कत्ल से वाबस्ता चार बलूच कारकुनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बलूच कौमी तहरीक ने पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुमलिकत करार देते हुए इल्जाम लगाया कि इस्लामाबाद बलोच में खौफ व हिरास और दहशतगर्दी फैलाने के लिए अपने इदारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अवामी जमहूरिया कांगो में इबोला में मुब्तला मरीजों की तादाद के बढ़कर 1,000 से ज्यादा होने की तस्दीक हो गई है। मुल्क के सेहत के हुकाम ने 267 अमवात की तस्दीक की है। 371 मरीजों को अलग थलग रखा गया है या फिर वो अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि 112 अफराद रूबे सेहत हो चुके हैं। इतवार को 60 अमवात समेत 202 मुश्तबा मामलात का भी पता चला था। सेहत से वाबस्ता हुकाम ने खबर दी है कि अगर हिफ्जान सेहत के जाब्तों पर तेजी से अमल नहीं किया गया तो इसके मजीद फैलने का अंदेशा है। अमरीका इस हफ्ते वाशिंगटन में इसराइल और लबनान के अहदेदारों के दरमियान नए दौर की बातचीत की मेजबानी करेगा। इस बातचीत का मकसद जंगबंदी को मुस्तहकम बनाना और दोनों मुल्कों के दरमियान पायदार अमन और सलामती और की समत कोशिशों को आगे बढ़ाना है। अमेरिका के महकमा खारजा ने कहा है कि इस बातचीत की क्यादत महकमा खारजा के कौंसलर डैन हॉलर और बैन अलावी सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक महकमा दिफा के मुआविन सेक्रेटरी डैन जिमरमन करेंगे। एक अमरीकी एहलकार ने बताया कि इन मीटिंगों का आगाज मुश्तरक फौजी और सियासी इजलास के साथ होगा, इसके बाद एक मिलिट्री मीटिंग होगी और हतमी सियासी दौर की बातचीत होगी। मजकूर एहलकार ने कहा कि दो हमसाया मुल्कों के दरमियान वसी तर तस्वीर की समत मामलात को रफ्तार देने के लिए ये बातचीत हो रही है। इसके अलावा एक और अमरीकी अहदेदार ने बताया है कि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वाशिंगटन की इन मीटिंगों से कबल जुमे को इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू और लबनान के सदर जोसेफ आउन से फोन पर बातचीत की। मजकूर अहदेदार ने इस बात की तस्दीक की है कि इसराइल और लबनान के नुमाइंदे मुजाकरात के लिए कई दिन तक वाशिंगटन में रहेंगे। स्विट्जरलैंड में पहले मरहले के मुजाकरात के बाद ईरान ने अमरीका के नायब सदर जेडी विंस के इस दावे की तर्दीद की है कि ईरान न्यूक्लियाई मुआयना कारों को मुल्क में मुआयना करने की इजाजत देगा। इसके बरक्स अमरीकी नायब सदर जेडी विंस ने यह दावा किया था कि मौजूदा मुजाकरात के बाद तेहरान ने न्यूक्लियाई मुआयना कारों को ईरान में मुआयना करने की इजाजत दे दी है। मुजाकरात के बाद विंस ने कहा कि बैन अलावी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के साथ बातचीत आज हो सकती है। मुजाकरात में ईरान पर आयद पाबंदियों में 60 दिन के लिए छूट दी गई है। यूएस के महकमा खजाना की जानिब से ये छूट दी गई है और इससे ईरान पर लंबे वक्त से आयद पाबंदियां, जिनकी वजह से तेहरान की मईशत को भारी नुकसान पहुंचा है, वो मजकूरा मुद्दत के लिए खत्म कर दी गई है। इस इकदाम से ईरान खाम तेल और पेट्रोकेमिकल्स की पैदावार और फरोख्त कर पाएगा। अमेरिका ने भारत के लिए M777A2 अल्ट्रा लाइट हॉबिट्जर्स के पैकेज का ऐलान किया है, जिसकी मालियत 23 करोड़ अमेरिकी डॉलर बताई जाती है। भारत में अमेरिका के सफीर सर्गियो गौर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई साझेदारी लगातार बढ़ रही है और मुजवजा फरोख्त हतमी शक्ल दिए जाने के लिए तैयार है। नेपाल में बदउनवानियों की जांच करने वाले एक कमीशन ने 16 अफराद के खिलाफ बदउनवानियों के सिलसिले में काठमांडू की एक खसूसी अदालत में एक केस दर्ज कराया है। इन 16 अफराद में पासपोर्ट के महकमे के डायरेक्टर जनरल तीर्थराज अरियाल भी शामिल हैं। पासपोर्ट के महकमे के डायरेक्टर जनरल तीर्थराज अरियाल और इतलाती टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर सुनील कुमार केसी के खिलाफ पासपोर्ट की छपाई में होने वाली बदउनवानियों के लिए यह केस दर्ज किया गया है। खेलकूद और नौजवानों के उमूर के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बैन अलावी ओलंपिक दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क में खेलकूद के मैदान में एक ऐसा इनकलाब आ रहा है जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। मुल्क के खिलाड़ियों को बाख्तियार बनाया जा रहा है और मुल्क का हर शहरी खेलों में दिलचस्पी ले रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में आज सुबह सवेरे

फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इस तरह फ्रांस ने नॉकआउट मरहले में अपनी जगह बना ली है। एक दूसरे मैच में नॉर्वे ने आज न्यूयॉर्क स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में सेनेगल को 2-3 से हरा दिया। एक और मुकाबले में कल रात अमेरिका में आर्लिंगटन में ग्रुप जे के एक मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हरा दिया। इस तरह अर्जेंटीना ने 32 टीमों के राउंड में अपनी जगह बना ली है। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने पहला गोल 38वें मिनट में किया, जबकि दूसरा गोल मैच के आखिरी लम्हात में किया। इस तरह मेसी फीफा वर्ल्ड कप में मजमुई तौर पर 18 गोल कर चुके हैं और वो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी ने 16 गोल करने का जर्मनी के मिरास्लाव क्लोस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा तावीर हो गया है।

0: मिरास्लाव क्लोज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सर्वे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों की कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए आबनाए हुरमुज खोले जाने का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। लियोनल मेसी फीफा आलमी कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अर्जेंटीना नॉकआउट मरहले में सबसे आगे है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश गोदान फिल्म का नगमा मुकेश की आवाज में आप तमाम सामईन के लिए।

Mira que esta burra se lee.

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों को, फिल्म थी गंगा जमुना, मौसीकार थे नौशाद। और समझ लीजिए, सुनिए शारदा सिन्हा की आवाज़ में असद भोपाली का लिखा है गीत, जिसे मौसीकी सजाया राम लक्ष्मण ने। फिल्म है मैंने प्यार किया।

0: सामिनी नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम मेरी पसंद अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम अदब नुमा। सामिन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामिन, आज का अदब नुमा प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हैं। कहते हैं सामिन, अदब हमें न सिर्फ शऊर बख्शता है बल्कि समाजी नाबराबरी और समाज के नशेब फराज यानी माशरती नशेब फराज से भी आगाह करता है। वो बातें या वो वाकयात व हादसा जिन्हें तारीख कभी कभी फरामोश कर देती है या किनारा करके निकल जाती है, वो हमें सब अदब में मिल जाते हैं। एक ज़माना था कि लोग लंबी लंबी कहानियाँ सुनते थे, फुर्सत के औकात होते थे, लेकिन इंसान की तरक्की के साथ साथ वक्त की कमी होती गई और अब लोग छोटी छोटी कहानियों पर इनसार करने लगे हैं। वो कहानियाँ जिन्हें उर्फ़-ए-आम में अफसाना कहा जाता है। अफसाना उर्दू की बहुत मकबूल सिंफ है। नए नए लिखने वाले पैदा हो रहे हैं। पुराने लोगों ने यानी हमारे पेशरों ने जो लिखा है वो भी काबिल तकलीद है। खूबसूरत अफसाने हमें दिए हैं और ऐसी ऐसी कहानियाँ दी हैं जो हमारे आस पास की ज़िंदगी की हैं, इन जिनके किरदार हमारे आस पास ही कहीं मौजूद हैं। आज के अदबनुमा में हम आपको एक ऐसा ही अफसाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे शायरी की। उर्दू शायरी की तारीख पर अगर नज़र डाली जाए तो बहुत से शोरा ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न सिर्फ गज़ल की गैसु सवारे बल्कि दूसरी असनाफ यानी नज़्म और दोहों में भी अपना नाम कमाया। इन्हीं शोरा में एक नुमाया नाम निदा फाजली का भी है। निदा फाजली ने न सिर्फ गज़लें कहीं बल्कि नज़्मों पर भी अपना कलम आजमाया और दोहों के लिए भी वो एक जाना पहचाना नाम है। आज की अदबनुमा की पहली पेशकश कलाम शायर के तहत समात फरमाइए जनाब निदा फाजली से उनका कलाम।
1: एक नज़्म पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है शिनाख्त की दुआ। दुआएं मांगो शजर हजर में हर एक समर में किसी का मस्कन रहे हमेशा। दुआएं मांगो शजर हजर में हर एक समर में किसी का मस्कन रहे हमेशा। वो नाम जिसके हरूफ सारे जमीन आकाश फूल तारे, वो नाम रोशन रहे हमेशा। दुआएं मांगो शजर हजर में हर एक समर में किसी का मस्कन रहे हमेशा। वो नाम जिसके हरूफ सारे जमीन आकाश फूल तारे, वो नाम रोशन रहे हमेशा। कदीम कब्रों पे सर झुकाए घनेरे पेड़ों की डालियों में शफीक माओं सी फाख्ताएं तिलावतों के दिए जलाए। कदीम कब्रों पे सर झुकाए घनेरे पेड़ों की डालियों में शफीक माओं सी फाख्ताएं तिलावतों के दिए जलाए। अंधेरा दर्पण बशारतों का, अंधेरा दर्पण बशारतों का उजाला जैसे फरिश्ता कोई सहीफा खोले और वसी गहरे समंदरों में खुदा के पैरों का अक्स डोले। अंधेरा दर्पण बशारतों का उजाला जैसे फरिश्ता कोई सहीफा खोले, उजाला जैसे फरिश्ता कोई सहीफा खोले और वसी गहरे समंदरों में खुदा के पैरों का अक्स डोले। दुआएं मांगो हमारे अंदर, दुआएं मांगो हमारे अंदर, हमारे माँ बाप की शबीहें हमारी हो, हमारे होठों से मुस्कुराएं, हमारी आँखों में जगमगाएं, हमारी तन्हाइयां बसाएं। दुआएं मांगो हमारे

अंदर हमारे माँ बाप की छवि है, हमारे होठों से मुस्कुराए, हमारी आंखों में जगमगाए, हमारी तन्हाइयां बसाए, दुआएं मांगो दुआएं मांगो। दूसरी नज्म का उन्वान है एक लुटी हुई बस्ती की कहानी। बजी घंटियां ऊंचे मीनार गूंजे, बजी घंटियां ऊंचे मीनार गूंजे, सुनहरी सदाओं ने उजली हवाओं की पेशानियों पर रहमत के बरकत के पैगाम लिखे, रहमत के बरकत के पैगाम लिखे। बजी घंटियां ऊंचे मीनार गूंजे, सुनहरी सदाओं ने उजली हवाओं की पेशानियों पर, सुनहरी सदाओं ने उजली हवाओं की पेशानियों पर रहमत के बरकत के पैगाम लिखे। वुजू करती सुबहें खुली कोनियों तक मुनव्वर हुई, वुजू करती सुबहें खुली कोनियों तक मुनव्वर हुई, झिलमिलाए अंधेरे और भजन गाते आंचल ने पूजा की थाली से बांटे सवेरे, झिलमिलाए अंधेरे भजन गाते आंचल ने पूजा की थाली से बांटे सवेरे, पूजा की थाली से बांटे सवेरे। खुला द्वार बच्चों ने बस्ता उठाया, खुला द्वार बच्चों ने बस्ता उठाया, बुजुर्गों ने पेड़ों को पानी पिलाया और नए हादसों की खबर लेके बस्ती की गलियों में अखबार आया। खुला द्वार बच्चों ने बस्ता उठाया, बुजुर्गों ने पेड़ों को पानी पिलाया, बुजुर्गों ने पेड़ों को पानी पिलाया और नए हादसों की खबर लेके बस्ती की गलियों में अखबार आया, बस्ती की गलियों में अखबार आया। और खुदा की हिफाजत की खातिर पुलिस ने पुजारी के मंदिर में, मुल्ला की मस्जिद में पहरा लगाया। अब कुछ दोहे पेश कर रहा हूँ। दोहे के बारे में इतना जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि दोहा दुनिया में सबसे मुख्तसर तरीन सिन्फ़े सुखन है, बल्कि यूं भी कहा जा सकता है कि हाइको से भी बहुत ही मुख्तसर सिन्फ़े सुखन है। अर्ज कर रहा हूं, देखिए, बरखा सबको दान दे, बरखा सबको दान दे जितनी जिसकी प्यास, बरखा सबको दान दे जिसकी जितनी प्यास, मोती सी ये सीप में माटी में ये घास। बरखा सबको दान दे जितनी जिसकी प्यास, मोती सी ये सीप में माटी में ये घास। तू दरिया का रास्ता, तू दरिया का रास्ता, मैं रस्ते की प्यास, तू दरिया का रास्ता, मैं रस्ते की प्यास, मैं रस्ते की प्यास, मैं हूं तेरी खोज में तू है मेरे पास, मैं हूं तेरी खोज में तू है मेरे पास। और दुआ देखिए, लेके तन के नाप को, लेके तन के नाप को घूमे बस्ती गांव, लेके तन के नाप को घूमे बस्ती गांव, घूमे बस्ती गांव, और हर चादर के घेर से बाहर निकले पांव, हर चादर के घेर से बाहर निकले पांव। और चाहे गीता बाचिए, चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान, चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। सासे सातक सात सुर, सात सुरों में राग, सासे सातक सात सुर, सात सुरों में राग, सात सुरों में राग, और उतना ही संगीत है जितनी तुझ में आग, उतना ही संगीत है जितनी तुझ में आग। और नैनों में था रास्ता, नैनों में था रास्ता, हृदय में था गांव, नैनों में था रास्ता, हृदय में था गांव। पूरी हुई न यात्रा, पूरी हुई न यात्रा, घिस गए दोनों पांव, नैनों में था रास्ता, हृदय में था गांव। पूरी हुई न यात्रा, घिस गए दोनों पांव। और देखिए, युग युग से हर बाग का ये ही एक उसूल,
युग युग

0: से हर बाग का यही एक उसूल, यही एक उसूल, जिसको हंसना आ गया वो ही माटी फूल। युग युग से हर बाग का यही एक उसूल, जिसको हंसना आ गया वो ही माटी फूल। और दरिया से बादल बने, दरिया से बादल बने, बादल से बरसात, दरिया से बादल बने, बादल से बरसात, बादल से बरसात, तू चाहे जो रूप ले मैं हूं तेरे साथ। दरिया से बादल बने, बादल से बरसात, तू चाहे जो रूप ले मैं हूं तेरे साथ। और दुआ पेश कर रहा हूं कि पंछी, बादल, फूल, बन, अलग अलग आकार, पंछी, बादल, फूल, बन, अलग अलग आकार, अलग अलग आकार, और माटी का घर एक ही सारे रिश्तेदार। पंछी, बादल, फूल, बन, अलग अलग आकार, माटी का घर एक ही सारे रिश्तेदार। अर्ज कर रहा हूं कि सीता, रावण, राम का करें विभाजन लोग, सीता, रावण, राम का करें विभाजन लोग, एक ही तन में देखिए तीनों का संजोग। सीता, रावण, राम का करें विभाजन लोग, एक ही तन में देखिए तीनों का संजोग। और देखिए सपना, झरना, नींद का, सपना, झरना, नींद का, जागी आंखें प्यास, सपना, झरना, नींद का, जागी आंखें प्यास, जागी आंखें प्यास, पाना, खोना, खोजना, जीवन का इतिहास। सपना, झरना, नींद का, जागी आंखें प्यास, और पाना, खोना, खोजना, जीवन का इतिहास। और दुआ अर्ज कर रहा हूं कि मैं रोया परदेश में, मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, और दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। और देखिए कि एक पलड़े में प्यार रख, एक पलड़े में प्यार रख, दूजे में संसार, एक पलड़े में प्यार रख, दूजे में संसार, और बिन तोले मत मानिए किसमें कितना भार, बिन तोले मत मानिए किसमें कितना भार, और चाकू काटे बांस को, चाकू काटे बांस को, बंसी खोले भेद, चाकू काटे बांस को, बंसी खोले भेद, और उतने ही सुर जानिए जितने इसमें छेद। चाकू काटे बांस को, बंसी खोले भेद, उतने ही सुर जानिए जितने इसमें छेद। और बहने चिड़ियां धूप की, बहने चिड़ियां धूप की, दूर गगन से आए, बहने चिड़ियां धूप की, दूर गगन से आए, हर आंगन मेहमान सी, हर आंगन मेहमान सी, पकड़ो तो उड़ जाए। और जितना भीगे बावरी, जितना भीगे बावरी, उतनी सुलगे प्यास, जितना भीगे बावरी, उतनी सुलगे प्यास, और सावन बरसे 60 दिन, नैना 12 मास। एक आखिरी दुआ पेश कर रहा हूं कि सूरज से धरती तपे, छाया ढूंढे काग, सूरज से धरती तपे, छाया ढूंढे काग, तन के अंदर मन जले, धुआं दिखे ना आग।
1: अभी आप जनाब निदा फाजली से उनका कलाम समात फरमा रहे थे। समीन, कलामी शायर से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे अफसाने की। अफसाना असल में वो कहानी है जो हमारे आसपास की कहानी है। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसके किरदार हमारे आसपास के ही होते हैं, लेकिन एक आम आदमी की निगाह उन्हें देख नहीं पाती। लेकिन जब एक कलमकार किसी वाकये को या किसी किरदार को जीता है तो अपने कलम के जरिए उस किरदार को जिंदगी अता कर देता है। ऐसी ही एक कहानी या अफसाना लेकर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इकबाल अंसारी। आइए उनसे सुनते हैं उनका यह अफसाना, वापसी का सफर।
2: अवध आसाम एक्सप्रेस अपने मुकर्रा वक्त पर दिल्ली जंक्शन से रवाना हुई थी और अगली सुबह अपने मुकर्रा वक्त पर उसने अपना 1105 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था।

0: क्यों नजर आ रहा है, क्यों ना नजर आए। गरीबी की मार कोई कहां तक झेले, रियासत से बाहर जाना लोगों की मजबूरी बन गया है। चंद तिजोरियां भरी हैं, बेशुमार पेट खाली हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग रोज ही कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और पंजाब के लिए निकल रहे हैं, जहां वो कुलीगिरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं और रात को किसी फुटपाथ पर या किसी पार्क में पड़ रहते हैं, एक नई सुबह के इंतज़ार में जो पुरानी सुबह से कतई मुख्तलिफ नहीं होती। पुरानी सुबहों का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। भूख करती है इंसान को अपनों से दूर, अपने शहर से दूर, अपनी मिट्टी से दूर। भूख कराती है दरबदरी, और कितना तशद्दुद फैल गया है। भूख इंसान को तशद्दुद पर आमादा करती है, तशद्दुद इंसान की बस्ती में बदअमनी फैलाता है, भूख फैलाता है। जहाँ भूख होगी वहाँ तशद्दुद होगा, जहाँ तशद्दुद होगा वहाँ भूख होगी। पेट की भूख, बदले की भूख, ताकत की भूख। ये वही सरजमीन तो है जिस पर बौद्ध धर्म की तबलीग सबसे पहले हुई थी। बौद्ध धर्म जिसका मूल मंत्र है अहिंसा, अदम तशद्दुद। अहिंसा परमो धर्मा का संदेश दुनिया को इसी मिट्टी, इसी धरती से तो गया है। गाड़ी मुक्तापुर पर रुकी, कंपार्टमेंट में मौजूद वो दोनों मुसाफिर जो कहीं पीछे से आ रहे थे उतर गए। अब कंपार्टमेंट में सिर्फ माजिद रह गया था, कमर कटने सी लगी थी। माजिद ने कमर से रुपया खोलकर बैग में रख लिया और फिर बैठकर खिड़की से अपनी धरती, अपने माहौल का नज़ारा करने लगा। ट्रेन रवाना हुई तभी उसने देखा कि दो पुलिस वाले एक लड़के को पकड़े ले जा रहे थे। लड़के का हर अंदाज खासा जारहाना था। ये इतने छोटे लड़के को ये लोग कहाँ पकड़ कर ले जा रहे हैं। 15-16 साल का ये लड़का न जाने क्या जुर्म कर बैठा, बेचारा जेल जाएगा और शायद वहाँ से पक्का मुजरिम बनकर निकलेगा, कौन जाने। नौजवानों को अच्छी तरबियत नहीं मिल रही है। गाड़ी किशनपुर पर रुकी और 2 मिनट के बाद जब चली तो दो नौजवान कंपार्टमेंट में दाखिल हुए। माजिद खिड़की से अपनी धरती का नज़ारा करता रहा, जिसकी मिट्टी की रूह अफजा महक उसकी रग रग में रची हुई थी। ये छतरी से नज़र आने वाले ताड़ के खूबसूरत दरख्त, तालाबों के ठहरे हुए शांत पानियों पर मखाने के गुलाबी से नजर आने वाले ये खूबसूरत पत्ते, दूर पर महुए का वो, माजिद चौंक पड़ा। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो दोनों नौजवान जो अभी किशनपुर पर कंपार्टमेंट में आए थे माजिद के सामने खड़े थे। एक के हाथ में देसी तमंचा था जिसकी मोटी भद्दी नाल का रुख माजिद की तरफ था। खड़ा हो। खाली हाथ नौजवान ने दुरुस्त लहजे में माजिद से कहा। माजिद चुपचाप खड़ा हो गया। नौजवान ने उसकी पैंट से उसका पर्स निकालकर अपनी पैंट की जेब में रखा, उसके हाथ से घड़ी खोलकर अपने पैंट की जेब में रखी और फिर उसकी मुकम्मल तलाशी ली। कुछ भी नहीं मिला। माजिद के बैग की तरफ इशारा करके बोला, इसमें क्या है। माजिद ने एक ठंडी सांस ली और कहा, अब्बा के लिए एक कुर्ता पैजामा, अम्मा के लिए शलवार जम्पर दुपट्टा, तुम दोनों के लिए एक एक पैंट शर्ट का कपड़ा और तुम्हारी ऊंची तालीम के लिए जमा किए हुए 20,000 रुपये।
1: वापसी का सफर। अभी जनाब मोहम्मद इकबाल अंसारी से आप उनका ये अफसाना सुन रहे थे। उम्मीद है आपको अफसाना पसंद आया होगा। आइए अब चलें जरा मौसीकी की दुनिया में, जहां गजल सरा है जगजीत सिंह।

इस गज़ल के साथ ही सामिन, आज का हमारा ये प्रोग्राम अदबनुमा अब ख़त्म होता है। उम्मीद है हर मर्तबा की तरह आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अपनी राय और मशवरे ज़रूर लिखिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है उर्दू सर्विस ESG@gmail.com। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान शमीम उस्मानी को इजाज़त दीजिए। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश बंधन फिल्म का नगमा कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज़ों में।

और स्वामी जी जब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आमने सामने फिल्म का नगमा नामा निगार आनंद बख्शी, मौसीकार कल्याण जी आनंद जी।

0: और सामने जब सुनिए सुरेश वाडकर और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों में भ्रष्टाचार फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: सा रे गा मा, तुम भी गाओ।

0: भरोसा फिल्म के नाम आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमनिगार थे राजेंद्र कृष्ण, मौसीकार रवि। और सामने सुनी महेंद्र कपूर के साथ उषा खन्ना की आवाजों में कंगन फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।
1: जो तेरे में

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी सजाए नगमा, फिल्म थी मन मंदिर। और शामिली अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में रखवाला फिल्म का नगमा, मौसीकार कल्याण जी आनंद जी।

सामिन सिलसिले के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम में भी कदार 71 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। शाम के 4:50 में हैं, अब खबरें नशर होंगी।

दो अल्ट्रा लाइट हॉविट्सर के पैकेज का ऐलान किया है, जिसकी मालियत 23 करोड़ अमरीकी डॉलर बताई जाती है। भारत में अमेरिका के सफीर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई साझेदारी लगातार बढ़ रही है और मुजवजा फरोख्त हतमी शक्ल दे जाने के लिए तैयार है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज अमेरिका के तजारत से मुतालिक नुमाइंदे और भारत में अमरीकी सफीर से नई दिल्ली में मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि वो भारत और अमरीका के दरमियान दो तरफा तजारती माहदे पर सूदमंद तबादले ख्याल के मुंतजिर हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट इस्तेदाज़े की भर्ती के इम्तहानात के सिलसिले में मुबैना धानली के मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 जगहों पर छापे मार रहा है। डायरेक्ट्रेट का कहना है कि मरकजी क्राइम ब्रांच की जानिब से 2017 में दर्ज की गई एफआईआर की बुनियाद पर यह कार्रवाई की जा रही है। उसने यह भी बताया है कि पुलिस ने 2021 में इस मामले में फर्द जुर्म दाखिल की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 के मनसूखे से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गया है। जनाब शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनका शुमार मुल्क के सबसे ज़्यादा अजीम रहनुमाओं में होता है, जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद और यकजहती को महफूज रखने में मदद की। उन्होंने नेफेड नीलामी पोर्टल शुरू करते हुए नई दिल्ली में एक इज्तिमा से खताब करते हुए ये बात कही। इंसानी हकूक से मुतालिक कई तंजीमों और कारकुनों ने चार बलोच सरगर्म कारकुनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाए जाने की शदीद मजम्मत की है, जिनमें महरांग बलोच भी शामिल हैं। उन्होंने इस फैसले को सरीहन नाइंसाफी और पाकिस्तान की तरफ से की गई इसे अदालती दहशतगर्दी करार दिया। इससे पहले पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फ्रंटियर कोर के एक अहलकार के कत्ल से वाबस्ता चार बलोच कारकुनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। बलोच कौमी तहरीक ने पाकिस्तान को एक दहशतगर्द ममलकत करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि इस्लामाबाद बलूचिस्तान में खौफ हरास और दहशतगर्दी फैलाने के लिए अपने इदारों का इस्तेमाल कर रहा है। नेपाल में बदनवानियों की जांच करने वाले कमीशन ने 16 अफराद के खिलाफ बदनवानियों के सिलसिले में काठमांडू के खसूसी अदालत में एक केस दर्ज कराया है। इन 16 अफराद में पासपोर्ट के महकमे के डायरेक्टर जनरल तीर्थराज आर्याल भी शामिल हैं। पासपोर्ट के महकमे के डायरेक्टर जनरल तीर्थराज आर्याल और इतलाती टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर सुनील कुमार केसी के खिलाफ पासपोर्ट की छपाई में होने वाली बदनवानियों के लिए यह केस दर्ज किया गया है। अवामी जमहूरी कांगो में एबोला में मुबतला मरीजों की तादाद बढ़कर 1000 से ज़्यादा होने की तस्दीक हो गई है। मुल्क के सेहत के हुकाम ने 267 अमवात की तस्दीक की है। 371 मरीजों को अलग थलग रखा गया है या फिर वो अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि 112 अफराद रूबसेहत हो चुके हैं। इतवार को 60 अमवात समेत 202 मुश्तबा मामलात का भी पता चला था। फीफा वर्ल्ड कप में आज सुबह सवेरे फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इस तरह फ्रांस ने नॉकआउट मरहले में अपनी जगह बना ली है। एक दूसरे मैच में नॉर्वे ने आज न्यूयॉर्क स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में सेनेगल को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। लायन मेस्सी फीफा वर्ल्ड कप में मजमू तौर पर 18 गोल कर चुके हैं और वो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की ख़ास ख़ास खबरें एक बार फिर सुनिए। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए आबनाए हुरमूज़ खोले जाने का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफ़ा 370 के मनसूखे से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है और अवामी जमहूरिया

0: इंडिया रेडियो दा सिराइकी प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे कीते अज दा प्रोग्राम घिन के हाजिर हाँ। के हाल चाल हैं तुहाडे? मेरा ख्याल है तुसा सारा ठीक ठाक होसो। ते चलो शुरू करें दे हाँ प्रोग्राम।
1: मैं प्रमोद चोपड़ा पानीपत तो तुहाडा सभा दा
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। युवा श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। श्रोतो, युववाणी के आज के इस अंक में हम आपको सुनवा रहे हैं यूथ आउटरीच कार्यक्रम की विजेता का रिकॉर्डेड कार्यक्रम। अंकिता सिहाग वार्ताकार से।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी सूरतगढ़ के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंकिता और आज मुझे आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला है जो केवल एक कम्युनिकेशन मीडियम ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है। हमारा विषय है डिजिटल युग में आकाशवाणी की प्रासंगिकता। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है। मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग जैसे कई प्लेटफॉर्म्स ने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है। आज कोई भी खबर सिर्फ एक क्लिक दूर है। लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन को देखते हैं। न्यूज से लेकर एंटरटेनमेंट तक सब कुछ डिजिटल हो चुका है। ऐसे समय में कई लोग सोचते हैं कि रेडियो आज भी रेलेवेंट है? क्या आज भी लोग आकाशवाणी सुनते हैं? क्या रेडियो का महत्व खत्म हो रहा है? लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि रेडियो केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि एक एहसास भी है, एक ऐसी आवाज है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और यही कारण है कि इतने डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद भी आकाशवाणी आज भी लोगों के जीवन में अपनी जगह बनाए हुए हैं। आकाशवाणी का इतिहास भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जब टेलीविजन नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, तब रेडियो ही लोगों के लिए दुनिया की खिड़की था। लोग अपने घरों में शाम को रेडियो के पास बैठते थे और समाचार, गीत, नाटक, कविताएं और विभिन्न कार्यक्रम सुना करते थे। उस समय रेडियो केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं बल्कि एक परिवार का हिस्सा हुआ करता था। आज हमारे दादा दादी और माता पिता आज भी बड़े भावुक होकर बताते हैं कि कैसे बिना का गीतमाला चौपाल सुना करते थे और क्रिकेट कमेंट्री सुनते समय पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता था। उस दौर में रेडियो लोगों की कल्पना शक्ति को भी बढ़ाता था क्योंकि वहां दृश्य नहीं होते थे, केवल आवाज होती थी और वही आवाज लोगों के मन में चित्र बना देती थी। भारत जैसे विश्व

नेपाल देश में जहाँ अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं हैं, वहाँ रेडियो ने लोगों को जोड़ने का काम किया। आकाशवाणी ने हर क्षेत्र, हर भाषा और हर वर्ग के लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज भी भारत के कई ऐसे गांव और दूरदराज के क्षेत्र हैं जहाँ इंटरनेट की सुविधा पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, लेकिन रेडियो की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है। एक छोटा सा रेडियो सेट भी लोगों को दुनिया से जोड़ देता है। यही कारण है कि आकाशवाणी को जनता की आवाज़ कहा जाता है। डिजिटल युग में सबसे बड़ी समस्या है झूठी और गलत खबर। दिल को छू लेने वाले इस गाने के साथ मैं लेती हूँ आपसे छोटा सा सुरीला विराम।

संगीत के छोटे से विराम के बाद हम फिर लौट आए हैं अपनी खास चर्चा के साथ। सोशल मीडिया पर कई बार खबरें फैल जाती है, लोग भ्रमित हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे समय में आकाशवाणी जैसे विश्वसनीय माध्यम की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। लोग आज भी ऑल इंडिया रेडियो के समाचारों पर भरोसा करते हैं क्योंकि वहाँ जिम्मेदारी और विश्वसनीयता होती है। जब देश कोई महत्वपूर्ण घोषणा होती है, चुनाव होते हैं, प्राकृतिक आपदा आती है या कोई राष्ट्रीय संकट होता है, तब रेडियो की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बाढ़, भूकंप या तूफान जैसी परिस्थितियों में कई बार इंटरनेट और बिजली की सेवाएं प्रभावित हो जाती है, लेकिन रेडियो लोगों तक सूचना पहुंचाने का काम करता रहता है। कोविड महामारी के समय हमने संचार की असली ताकत देखी। उस कठिन समय में रेडियो ने लोगों तक जागरूकता, हेल्थ गाइडलाइंस और प्रेरणादायक संदेश पहुंचाए। कई विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन या ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं थी, तब शैक्षिक कार्यक्रम उनके लिए बहुत मददगार साबित हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि रेडियो आज भी समाज की जरूरत है। आकाशवाणी का एक और महत्वपूर्ण योगदान भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखना है। आज ग्लोबलाइजेशन के कारण कई क्षेत्रीय भाषाएं, लोक कलाएं धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है, लेकिन आकाशवाणी ने हमेशा भारतीय संस्कृति को सम्मान दिया है। लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, कविताएं, नाटक और साहित्यिक कार्यक्रमों को ऑल इंडिया रेडियो ने लगातार मंच दिया है। कई महान कलाकारों की पहचान आकाशवाणी से ही बनी है। आकाशवाणी ने केवल एंटरटेनमेंट नहीं दिया बल्कि भारत की संस्कृति विरासत को सुरक्षित भी रखा है। आज भी जब हम किसी लोकगीत या पुराने कार्यक्रम को सुनते हैं तो हमें अपनी मिट्टी से जुड़ाव महसूस होता है। यदि हम ग्रामीण भारत की बात करें तो रेडियो वहाँ आज भी बहुत प्रभावशाली माध्यम है। किसानों के लिए आकाशवाणी खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी, मौसम की जानकारी, सरकारी योजनाओं और नई तकनीकों की जानकारी प्रसारित करती है। बहुत से किसान आज भी इन कार्यक्रमों का लाभ उठाते हैं। आज की युवा पीढ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर अधिक आकर्षित है। वे स्पॉटिफाई, पॉडकास्ट और यूट्यूब जैसे माध्यमों का उपयोग करते हैं। यह सच है कि रेडियो को कंपटीशन मिला है, लेकिन यह भी सच है कि रेडियो ने समय के साथ खुद को बदला भी है। आज ऑल इंडिया रेडियो केवल परंपरागत तौर तरीकों तक सीमित नहीं, अब यह मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। अब कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर इंटरनेट के माध्यम से आकाशवाणी सुन सकता है। यह रेडियो का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ही है। इससे यह साबित होता है कि रेडियो खत्म नहीं हो रहा बल्कि एक नए स्वरूप में विकसित हो रहा है। और बातों के इस खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

अब बात करते हैं, एफएम रेडियो और आरजे कल्चर ने भी रेडियो को नई पहचान दी है। पहले रेडियो को केवल इन्फॉर्मेशन मीडियम माना जाता था, लेकिन अब यह एंटरटेनमेंट और इंटरेक्शन का भी माध्यम बन चुका है। आरजे अपनी आवाज और बातचीत के माध्यम से सुनने वाले के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। कई लोग ट्रैवलिंग करते समय रेडियो सुनते हैं, कई लोग अकेलेपन में रेडियो सुनते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करते समय धीमी आवाज में एफएम सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि रेडियो में एक अपनापन होता है, एक गहराई होती है जो कि कई बार विजुअल मीडिया में महसूस नहीं होती। एक आरजे के रूप में मैं यह महसूस करती हूँ कि रेडियो केवल आवाज नहीं बल्कि कंपेनियनशिप है। कभी कभी एक छोटा सा मोटिवेशनल मैसेज किसी सुनने वाले को उम्मीद दे सकता है, एक गीत किसी उदास व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, यही रेडियो की असली ताकत है। आज डिजिटल मीडिया ने हमारी जिंदगी को बहुत गतिशील बना दिया है, हर समय नोटिफिकेशन, रील्स और स्क्रोलिंग चलती रहती है, लोग मानसिक रूप से थके हुआ महसूस करते हैं। ऐसे समय में रेडियो एक शांत साथी की तरह लगता है, उसमें सरलता, अपनापन और सच्चाई दिखती है। रेडियो की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह इमेजिनेशन को जीवित रखता है। टेलीविजन और सोशल मीडिया हमें विजुअल्स दिखाते हैं, लेकिन रेडियो हमें सोचने और महसूस करने का अवसर देता है। जब हम कोई कहानी या कविता रेडियो पर सुनते हैं तो हमारा मन अपने आप चित्र बनाने लगता है, यही उसकी खूबसूरती है। भविष्य की बात करें तो मुझे लगता है कि रेडियो और डिजिटल टेक्नोलॉजी साथ मिलकर और अधिक मजबूत बन सकते हैं। पॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, AI बेस्ड कंटेंट भविष्य को और उज्जवल बना सकते हैं। आकाशवाणी में यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम, एजुकेशनल पॉडकास्ट और इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स पर भी अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। इससे यह नई पीढ़ी के बीच भी और लोकप्रिय बनने की पहल कहा जा सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम रेडियो को केवल पुराने समय की चीज मानकर न देखें। हमें यह समझना होगा कि रेडियो आज भी समाज में सकारात्मकता, जागरूकता और एकता फैलाने का काम कर रहा है। रेडियो ने भी समय के साथ खुद को बदला है। आज आकाशवाणी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अब दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर लोग ऑल इंडिया रेडियो सुन सकते हैं। यह ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सुंदर मेल है। एक आरजे के रूप में मैं ये महसूस करती हूँ कि कम्युनिकेशन केवल इन्फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि इमोशन भी है। एक सच्ची और संवेदनशील आवाज लोगों के दिलों तक पहुंचती है। कई बार प्रेरणादायक संदेश किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आकाशवाणी ने देश को जानकारी दी है, शिक्षा दी है, संस्कृति को सुरक्षित रखा है और लोगों को जोड़ा है। यही कारण है कि डिजिटल एज में भी इसकी रेलेवेंस बनी हुई है। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन इंसानी आवाज की जो भावना और अपनापन देती है वो कभी पुरानी नहीं होती। आकाशवाणी केवल एक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, विश्वास और यादों का हिस्सा है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई रेडियो पर परिचित आवाज सुनाई देती है तो मन अपने आप ठहर जाता है। तो चलिए इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक बेहतरीन नगमा। आप बने रहिए मेरे साथ सिर्फ इसी स्टेशन पर।

अभी हमने सुना प्यारा सा गीत, आइए अब बात करते हैं। दोस्तों, जब हम कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो केवल मनोरंजन ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी होता है कि सही जानकारी सही समय पर जनता तक पहुंचे। आज के डिजिटल दौर में सरकार और जनता के बीच संवाद का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। अब सरकारी सेवाएं और योजनाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, जिसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। तो आइए बात करते हैं ई गवर्नेंस, पारदर्शिता।

और जनसंचार की भूमिका पर। आज भारत तेजी से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। मोबाइल फोन्स और इंटरनेट ने सरकारी सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाना पहले से भी अधिक आसान बना दिया है। आज बिजली का बिल जमा करवाना हो या किसी सरकारी योजना की जानकारी लेनी हो, ऑनलाइन आवेदन करना हो या शिकायत दर्ज करनी हो, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभव हो गया है। यही व्यवस्था ई गवर्नेंस कहलाती है। ई गवर्नेंस का सरल अर्थ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच बेहतर, तेज और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करना। इसका उद्देश्य है कि सरकारी सेवाएं आम जनता तक आसानी से पहुंच सके और प्रशासन अधिक जिम्मेदार तथा प्रभावी बन सके। आज भारत में डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से सरकार अनेक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवा रही है। बिजली पानी का बिल भरना, आधार कार्ड डाउनलोड करना, ऑनलाइन आवेदन करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना, पेंशन सर्विसेज, बैंक सुविधाएं, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, यह सब ई गवर्नेंस का एक अहम हिस्सा है। ई गवर्नेंस ने लोगों का समय बचाया है। पहले छोटी सी सरकारी प्रक्रिया में बहुत समय लगता था, लेकिन अब कई सेवाएं घर बैठे उपलब्ध है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था अधिक कुशल और प्रभावी बनी है। लेकिन ई गवर्नेंस का महत्व केवल सुविधा तक सीमित नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा होती है। जब सरकार की योजनाएं, निर्णय और प्रक्रिया जनता के सामने स्पष्ट रूप से होती है, तब लोगों का विश्वास बढ़ता है। डिजिटल सिस्टम के माध्यम से रिकॉर्ड ऑनलाइन होने लगे हैं, ट्रांजैक्शन ट्रैक होने लगी है और इन्फॉर्मेशन आसानी से उपलब्ध होने लगी है। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, पहले कई सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, बीच में कई समस्याएं आती थी। लेकिन आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि DBT, इसके माध्यम से सरकारी सहायताएं सीधे लोगों के बैंक खातों तक भेज दी जाती है। इसके माध्यम से सरकारी सहायताएं सीधे लोगों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है। इसी प्रकार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उनकी स्थिति ट्रैक भी कर सकते हैं। यह व्यवस्था प्रशासन को अधिक जिम्मेदार बनाती है। एक छोटे से विराम के साथ फिर होगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले सुनते हैं यह मधुर गीत।

संगीत के छोटे से विराम के बाद हम फिर लौट आए हैं अपनी खास चर्चा के साथ। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या केवल टेक्नोलॉजी ही पर्याप्त है? क्या केवल ऑनलाइन सर्विसेज शुरू कर देने से हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंच जाती है? उत्तर है नहीं। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें डिजिटल लिटरेसी यानी कि इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का सही और सुरक्षित उपयोग करने की जानकारी ही नहीं है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित है और कई बुजुर्ग अशिक्षित लोग ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे में जनसंचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन समाज और सरकार के बीच संवाद का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। इसका उद्देश्य केवल इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं बल्कि लोगों को जागरूक, शिक्षित और सहभागी बनाना है। जब हम जनसंचार की बात करते हैं तो रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे माध्यम हमारे सामने आते हैं। लेकिन भारत में रेडियो का महत्व आज भी बहुत विशेष है। आकाशवाणी जैसे माध्यमों ने वर्षों से लोगों तक जानकारी पहुंचाने का कार्य किया है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में रेडियो आज भी एक विश्वसनीय माध्यम माना जाता है। किसानों के लिए खेती से जुड़े जानकारी, मौसम की जानकारी, सरकारी योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधी संदेश और शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से पहुंच जाते हैं। जनसंचार का सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों और सरकार के बीच विश्वास कायम करना। यदि जनता तक सही जानकारी नहीं पहुंचेगी तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। इसलिए कम्युनिकेशन किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। आकाशवाणी और अन्य

है पब्लिक सेक्टर के ब्रॉडकास्टिंग चैनल की सबसे बड़ी ताकत उनकी क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता है। लोग भी आजकल ऑफिशियल जानकारी आज भी लोग ऑफिशियल जानकारी के लिए ऐसे माध्यमों पर भरोसा करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने कम्युनिकेशन की वास्तविक शक्ति देखी। उस समय लोगों में डर और भय था, सोशल मीडिया पर कई गलत जानकारियां फैल रही थीं, लेकिन रेडियो और सरकारी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ने लोगों तक सही स्वास्थ्य जानकारी, सरकारी गाइडलाइंस और जागरूकता संदेश पहुंचाने का कार्य किया। माहौल को थोड़ा और सुरीला बनाते हैं इस शानदार गीत के साथ।

संगीत के छोटे से विराम के बाद हम फिर लौट आए हैं अपनी खास चर्चा के साथ। यदि हम ग्रामीण भारत की बात करें तो वहाँ ई गवर्नेंस और जनसंचार दोनों का संबंध और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार डिजिटल सेवाएं शुरू कर सकती है, लेकिन उन सेवाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य कम्युनिकेशन मीडिया ही करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी किसान को यह पता नहीं होगा कि वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सरकारी योजना का लाभ ले सकता है, तो टेक्नोलॉजी का लाभ अधूरा रह जाएगा। इसीलिए जागरूकता सबसे आवश्यक है। जनसंचार केवल सूचना देने का माध्यम ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, मतदान जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक विषयों पर मीडिया समाज को जागरूक बनाता है। आज की युवा पीढ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में ट्रेडिशनल मीडिया दोनों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। भविष्य की बात करें तो ई गवर्नेंस और जनसंचार दोनों का महत्व और बढ़ने वाला है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम आम भाषा में AI कहते हैं, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग और स्मार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम प्रशासन और संचार दोनों को प्रभावी बनाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी भी विकसित हो जाए, कम्युनिकेशन का मूल उद्देश्य हमेशा एक ही रहेगा, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, जागरूकता फैलाना और

विश्वास बनाए रखना। यदि ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी देता है तो जनसंचार उस ट्रांसपेरेंसी को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। दोनों ही घटक एक दूसरे के पूरक हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन दोनों का उपयोग समाज के विकास के लिए किया जाए। डिजिटल इंडिया तभी सफल होगा जब प्रत्येक नागरिक जागरूक और आपस में जुड़ा हुआ होगा। एक छोटे से विराम के साथ फिर होगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले सुनते हैं यह मधुर गीत।

संगीत के छोटे से विराम के बाद हम फिर लौट आए हैं अपनी खास चर्चा के साथ। यदि डिजिटल भारत का सपना सफल करना है तो सभी नागरिकों को आपस में जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। अंततः यह पूरी यात्रा सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट की है। जब सूचना, सेवा और संचार सीधे जनता के हाथ में होते हैं तो वह सशक्त महसूस करता है। आज का नागरिक केवल एक वोटर नहीं बल्कि पार्टनर है जो देश के शासन में सक्रिय योगदान दे रहा है। तकनीक के इस सेतु ने प्रशासन को मानवीय चेहरा दिया है। जहां पारदर्शिता ही सबसे बड़ा हथियार है, इसी तरह हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सुशासन केवल एक नारा नहीं बल्कि एक नागरिक की हकीकत है। ये तकनीक सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं है, ये हम इंसानों के बारे में भी है। यह हमें सशक्त बनाने के बारे में है। ई गवर्नेंस और जनसंचार ने हमें एक मजबूर नागरिक से एक मजबूत नागरिक बना दिया है। हालांकि हमें अभी भी डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता पर काम करना है।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिराय की। 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। तत्पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

संध्या 7 बजे चौपाल कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय रहेगा, कृषि के साथ पशुपालन व्यवसाय अपनाएं, रोग एवं रोग प्रबंधन ग्वार, बीमारी है बच्चों में मोटापा, इसके अलावा उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी।

भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा संध्या 7:45 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में फिल्म की जानकारी और गीत आपको सुनवाए जाएंगे। स्पोर्ट्स कैन ये कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। समाचार संध्या का वक्त रहेगा रात्रि 8:45।

राजस्थानी लोकगीतों और लोक भजनों का साप्ताहिक फरमाइशी कार्यक्रम गौरबंद आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर, रात 10 बजे कार्यक्रम गीत गंगा सुनाया जाएगा। रात्रि 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम, उनका विवरण और प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सिराय की।

0: अमचूर ते अद्धा चम्मच पिसा होया सौंफ। हुण कढ़ाई गैस ते रख के उंदे च सरसों दा तेल, ए सब्जी सरसों दे तेल च ही बनी सू, सरसों दा तेल पा गिणो। हुणी तेल च कटे हुए प्याज दे टुकड़े पा डो। जिवें ही प्याज थोड़े जिए लाल गुलाबी थी वजन, कटे हुए आलू दे टुकड़े कढ़ाई विच पा डो। हुण इंदे च लून जितना तुसा खांदे हो, लाल ते हरी मिर्च पा डो, ते अद्धा चम्मच हल्दी पा के प्लेट नाल ढक डो। थोड़े जहे आलू गल वजन ता इंदे विच करेले दी छील पा के ढक डो। थोड़ी थोड़ी देर बाद हिला के उकुडे दे रहो कि सब्जी तैयार थी गई है कि नहीं। जे वेले सब्जी तैयार थी वजे ते पानी सुक वजे, चंगी तरह पानी सुक वजे, तो गैस बंद कर दो। हुण ई सब्जी विच थोड़ा गरम मसाला ते थोड़ा अमचूर दा पाउडर भी पा दो। हुण ई सब्जी गरम गरम पराठे दे नाल खा के मजा खिन सकते हो।
1: सिराकी खाना खजाना विच हुणे तुसा एक चने दी दाल ते करेले दी सब्जी ते दूजी करेले दी छिल ते आलू प्याज दी भुर्जी किवें बनावणी है, इस उते वार्ता सुनदे पए हवे। वार्ताकार हन कमलेश कुमारी। तरीका तुसा समझ लिया, हुण बनाओ, आप भी खाओ ते मेहमाना को भी खुआओ। ते हुण जुलदे हां गीता वल को। गीत बहु मजेदार है। गीत तो पहला एक शेर उस तो भी मजेदार है। मैं तपदियां गलियां विच फिरदा, दीदार तेरा दरकार वे तू, दुनिया दी ना कोई लोड़ माही, हिक तेरा चाहिदा प्यार मेकू। ते गीत है, तेरे इश्क ने सांवल यार मस्त मलंग कीता।

हे गीत जो तुसा सुनिया है ना, मेकू आप बहु पसंद है। मेरा ख्याल है तुहा को भी पसंद आया हो सी। सुना लियो, प्यार ता निभावन दी गल ले, सारा नाल ता निभदी नहीं। प्रोग्राम दा आखरी गीत कुछ एहो जिया ही है। लाहे गवा साड़ी नहीं निभदी, तेरे सिवा साड़ी नहीं निभदी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिराय की। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। राजस्थान में जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। जयपुर में कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ। किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए।

0: समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आज नई दिल्ली में बैठक हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परियोजना के एमओयू से जुड़े विभिन्न मुद्दों को अंतिम रूप दिया। साथ ही किशाऊ बांध परियोजना पर भी विचार विमर्श किया। इस मौके पर श्री पाटिल ने कहा कि यमुना जल परियोजना को दीर्घकालिक नजरिए के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत पानी को पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने का प्रस्ताव है, जिससे वितरण व्यवस्था व्यापक होगी। उन्होंने कहा कि केशाऊ बांध परियोजना के बारे में 6 राज्यों के मुद्दों का समाधान हुआ है, जल्दी ही एमओयू भी किया जाएगा।
1: दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे, दोनों ने जो हरियाणा से पानी जो सरप्लस वाटर आज उसका नया एमओए करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है, जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो एमओयू का उनको एक्सचेंज करेंगे।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यमुना जल परियोजना शेखावटी क्षेत्र के लिए अहम है, जल्द से जल्द इसे धरातल पर लाया जाएगा। वहीं श्री सैनी ने कहा कि बैठक में वर्षा के पानी को सहेज कर राजस्थान पहुंचाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज करौली पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पांचना संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह धाबाई और अन्य पंच पटेलों की उपस्थिति में समस्या के समाधान के लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान करौली विधायक दर्शन सिंह और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा भी मौजूद रहे। उधर पांचना बांध से सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर सवाईमाधोपुर जिले के खंडीप गांव में किसानों का महापड़ाव आज भी जारी रहा। वहीं धरने के कारण कुछ समय तक रेल यातायात प्रभावित रहा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जयपुर में आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में रियायती दरों पर जमीन आवंटन के प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा कर सहमति दी गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज जोधपुर के उम्मेद अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसूताओं, चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ से बातचीत कर उपचार व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया। साथ ही अधिकारियों को चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती राठौड़ ने कहा कि हर मरीज को बेहतर और सुरक्षित इलाज उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आमजन को चिकित्सालय के प्रति भरोसा बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल एसओपी की पालना सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
2: अभी इनके जो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, लेबर रूम एरिया है, महिलाओं से भी बात करी है, डॉक्टर्स और स्टाफ से भी बात करी है कि किस तरह से वो लोग एंश्योर कर रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स की जो मेडिकल के प्रोटोकॉल्स हो उनकी पालना हो, यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। लोगों का इतना फेथ है तभी 25,000 लोग यहाँ पे आते हैं। बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स है, सारी फैसिलिटीज है।
0: गौरतलब है कि पावटा अस्पताल में सिजेरियन के बाद प्रभावित प्रसूताओं के इलाज और सेहत की सतत निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर अपडेट देने के लिए मेडिकल बुलेटिन जारी करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद आज जयपुर में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम और पुलिस की टीमों ने शहर में कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के अग्नि सुरक्षा इंतजामों की जांच की। इस कार्रवाई में 14 कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालयों को सील किया गया। साथ ही 24 कोचिंग सेंटरों को फायर सेफ्टी नियमों की अनुपालना के लिए नोटिस जारी किए गए। अभियान के दौरान नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग और फायर एनओसी से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक दाखिलों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परिणाम जारी करते हुए बताया कि उम्मीदवार CUET पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एनटीए के अनुसार इस

0: साल मई महीने में हुई प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नेफेड के नीलामी पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने अगले 2 सालों में दलहन की खरीद सीधे किसानों से खरीदने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने किसानों की भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए फसलों को सुरक्षित रखने और आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। अलनीनो संकट के संभावित असर से निपटने के लिए आज उन्होंने कृषि मंत्रियों और मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के सभी जिलों के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार कर ली हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों से इन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों से किसानों को समय पर स्पष्ट सलाह पहुंचाने की बात कही।
2: जिस तरह की सहयोग की आपको आवश्यकता होगी हम करेंगे, जहां विशेष परिस्थितियों में जाना आवश्यक हो वह हमारी टीम आपके सहयोग करने आएगी भी। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी कुछ राज्यों में जाएंगे, लेकिन आप मानसिकता ये बना लें कि संकट से विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है और हमको इस संकट से पार अपनी जनता को, अपने किसानों को, अपनी कृषि को लेके जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके अपने किसान को किसी कठिनाई का सामना न करने दें और इन विशेष परिस्थितियों में भी संकट की हम अन्न का हो, फल सब्जी का उत्पादन हो, उसको प्रभावित न होने दें। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करें।
0: राज्य में आज कुछ स्थानों पर प्री मॉनसून गतिविधियों का असर देखने को मिला। सीकर, झुंझुनू और करौली में दोपहर बाद मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ धूल का गुबार छा गया, साथ ही बूंदाबांदी हुई। झुंझुनू में कई स्थानों पर करीब आधा घंटे तेज पानी बरसा। उधर श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़, राजियासर और अन्य कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। भरतपुर में भी धूल भरी आंधी चली, उसके बाद कुछ देर हल्की बरसात हुई। बीकानेर, जैसलमेर और फलौदी सहित आसपास के क्षेत्रों में भी हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज, वहीं 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 जून तक जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर झोंकेदार हवाएं चलने के भी आसार हैं। दक्षिणी राजस्थान में बरसात की गतिविधियों में कमी देखी जा सकती है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा कि देश की महान विभूति डॉक्टर मुखर्जी के प्रखर विचार और आदर्श हर पीढ़ी को मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने निवास पर डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का त्याग और राष्ट्र प्रथम का संकल्प देश सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज भरतपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर श्री शेखावत ने कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सेवा के लिए समर्पित किया।
3: जो आज का दिन लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है।

0: कि आज पूरा भारत एक ऐसे महामना, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे विचार के प्रतिपादक व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहा है, जिसने संघर्ष का रास्ता चुन करके एक विचार को स्थापित किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। राजस्थान में जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। जयपुर में कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ। किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। जून का महीना अब अपने अंतिम चरण में है। इसी के साथ जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पिछले दिनों कई क्षेत्रों में हुई बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के बाद कई जगह मौसम सुहावना हो गया। इससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है और किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारियां तेज कर दी हैं। खेतों की जुताई, बीज और खाद की व्यवस्था का काम चल रहा है। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा है। विभागीय अधिकारियों को किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी ओर जल संरक्षण, जनसेवा, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों को लेकर जिले में अनेक गतिविधि आयोजित की गयी। आइए भीलवाड़ा जिले की प्रमुख गतिविधियों के बारे में इस चिट्ठी में जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का लाभ जिले के किसानों को भी मिला। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। किसानों ने बताया कि योजना के तहत मिलने वाली राशि खेती किसानी के कामों में सहायक साबित हो रही है। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती, पशुपालन, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने हुरुड़ा पंचायत समिति के खारी का लांबा ग्राम पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और पशुपालकों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी। अगले दिन गाँव में भ्रमण कर लोगों से सीधे बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों की मांग पर विद्यालय में विज्ञान और वाणिज्य संकाय शुरू करने, खेल मैदान तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े कामों की घोषणाएं की गईं। ग्रामीणों ने अपनी आवश्यकताओं और सुझावों से प्रशासन को अवगत कराया। जल संरक्षण को लेकर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया गया। मेवाड़ के प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहाँ जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन का संदेश दिया गया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर जल स्रोतों की साफ सफाई, श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। लोगों को जल बचाने और परंपरागत जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। भीलवाड़ा शहर सहित जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टा वितरण, पेंशन संबंधी काम, प्रमाण पत्र, चिकित्सा सेवाएं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार इन शिविरों की निगरानी कर रहा है। अधिकारियों को प्रकरणों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आमजन को राहत मिली है। परिवहन के क्षेत्र में भी भीलवाड़ा जिले को हाल ही में नई सुविधाएं मिली हैं। प्रधानमंत्री

0: ई बस सेवा योजना के तहत जिले में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया है। इन बसों के माध्यम से शहरवासियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी। ई बसों के चलाए जाने से प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर यात्रा की सुविधा मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जिले में प्रशासन और लोगों की ओर से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी मॉनसून में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले में बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से लगभग 35 लाख पौधे लगाने की योजना पर चर्चा की गई है। वन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियां हुई। जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने आमजन को योजनाओं की जानकारी दी तथा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसी के साथ भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर सू पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: सचिव गायत्री राठौड़ आज जोधपुर रा उम्मेद सफाखाना रो जायजो करयो वणा परसु तावां चिकित्सका अर नर्सिंग स्टाफ सु बणतल कर उपचार व्यवस्थावां माते फीडबैक लियो साथे ही अहलकारा ने चिकित्सा सेवावां ने बत्ती प्रभावी अर गुणवत्तापूर्ण बनावण खातिर जरूरी दिशा निर्देश दिया इनरे पाछे खबर नवीसा सु बणतल माए श्रीमती राठौड़ कयो के हर मरीज ने चोखो अर सुरक्षित इलाज मुहैया करवाणो राज्य सरकार री सर्वोच्च प्राथमिकता है आम जन ने चिकित्सालय सारू भरोसो बनायो राखणो चाहिजे वणा कयो कि सगळा सफाखाना माए मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल एसओपी री पालना पक्की करने खातिर जोर दियो जा रियो है
1: इनके जो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है लेबर रूम एरिया है महिलाओं से भी बात करी है डॉक्टर्स और स्टाफ से भी बात करी है कि किस तरह से वो लोग एंश्योर कर रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स की जो मेडिकल के प्रोटोकॉल्स हो उनकी पालना हो यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले लोगों का इतना फेथ है तभी 25,000 लोग यहाँ पे आते हैं बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स है सारी फैसिलिटीज है
0: ध्यान जोग है कि पावटा सफाखाना माए सिजेरियन रे पाछे प्रभावित प्रसूतावां रे इलाज और सेहत री सतत निगरानी राखी जा रही है जिला प्रशासन वाणी स्वास्थ्य स्थिति माथे अपडेट देने खातिर मेडिकल बुलेटिन जारी करने रा हुकुम दिया है लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड रे पाछे आज जयपुर माए फायर सेफ्टी व्यवस्थावां री जांच खातिर खास अभियान चलायो गयो नगर निगम और पुलिस री टीमा ने शहर माए कोचिंग संस्थावां और लाइब्रेरी रा अग्नि सुरक्षा इंतजामां री जांच करी इन कार्रवाई माए 14 कोचिंग संस्थावां और पुस्तकालयां ने सील करयो गयो साथे ही 24 कोचिंग सेंटरां ने फायर सेफ्टी नियमां री अनुपालना खातिर नोटिस जारी करया गया अभियान रे चालता नगर निगम पुलिस और प्रशासन री संयुक्त टीमा ने संस्थाना माए फायर सेफ्टी उपकरण आपातकालीन निकास मार्ग और फायर एनओसी सु जुड़िया दस्तावेजा री जांच करी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 स्नातक दाखिला रा नतीजा घोषित कर दिया है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नतीजा जारी करता थका बतायो कि उम्मीदवार CUET पोर्टल माथे आपरा स्कोर कार्ड देख सके है एनटीए रे मुजब इन बरस मई महीना माए प्रवेश परीक्षा माए 11,00,000 सु 32 पढ़ेसरी भेड़ा व्याहा ए समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रिया हो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नेफेड रे नीलामी पोर्टल रो नूवी दिल्ली माए शुभारंभ करयो इन मौके माथे श्री शाह कयो कि काश्तकारा ने सीधी खरीद खातिर जरूरी व्यवस्था तैयार कर दी गई है वणा कयो कि सहकारिता मंत्रालय आवता 2 वर्षा माए दलहन री खरीद सीधे काश्तकारा सु खरीदने रो लखस राख्यो है वणा किसाना री भागीदारी ने मजबूत करने खातिर खरीद कामा माए बिचौलिया री भूमिका ने खत्म करने रो हेलो करयो
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से ना आए सीधा किसानों के माध्यम से आए जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी तभी जाकर परिणाम मिलेंगे
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो प्रभाव सु बिरखारी आशंका ने देखता थका फसला ने सुरक्षित रखने और जरूरी कृषि प्रबंधन उपाया माथे खासा दिशा निर्देश दिया है अलनीनो संकट रे संभावित असर सु निपटने खातिर आज वे कृषि मंत्रियां और मौसम महकमारा अहलकारा खातिर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करी वणा कयो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश रा सगला जिला खातिर आकस्मिक योजनावां तैयार कर ली है केंद्रीय कृषि मंत्री राज्य सरकारा सु आ योजना ने प्रभावी रूप से लागू करने री अरज करी है साथ ही वणा वैज्ञानिका सु कास्तकारा ने बकत माथे सही सलाह पहुंचाने री बात कही है
3: जिस तरह की सहयोग की आपको आवश्यकता होगी हम करेंगे जहां विशेष परिस्थितियों में जाना आवश्यक हो वह हमारी टीम आपके सहयोग करने आएगी भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी कुछ राज्यों में जाएंगे लेकिन आप मानसिकता ये बना लें कि संकट से विचलित नहीं होना है घबराना नहीं है डट के मुकाबला करना है और हमको इस संकट से पार अपनी जनता को अपने किसानों को अपनी कृषि को लेके जाना है मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके अपने किसान को किसी कठिनाई का सामना न करने दें और इन विशेष परिस्थितियों में भी संकट की हम अन्न का हो फल सब्जी का उत्पादन हो उसको प्रभावित न होने दें इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करें
0: और अबे मौसम राज्य माए आज कुछ एक थोड़ा माथे प्री मॉनसून गतिविधियां रो असर देखने मिलियो सीकर और

0: करौली माए दोपहरा पाछे मौसम बदल्यो और तेज हवावां रे साथे धूल रो गुबार छाग्यो। साथे ही बूंदाबांदी हुई वटीने श्रीगंगानगर जिले रा सूरतगढ़ राजियासर और दूजा कई इलाका माए तेज हवावां साथे बरसात हुई। भरतपुर माए भी धूल भरी आंधी चाली। इनरे पाछे कई देर हल्की बिरखा हुई। बीकानेर जैसलमेर और फलोदी समेत आसे पासे रा खेतरा माए भी हवावां रे साथे बादलारी आवाजावी देखण ने मिली। मौसम महकमा रे मुजब आ सात जिला माए आंधी बारिश रो ऑरेंज वठीने 12 जिला माए येलो अलर्ट जारी करयो गयो है। 27 जून ताई जोधपुर कोटा और उदयपुर संभाग माए कठई कठई गरज चमक रे साथे हल्की बिरखा हो सके है। इनरे चालता कई जगह माथे झोंकेदार हवावां चालने रा भी असार है। दक्षिण राजस्थान माए बरसात री गतिविधियां माए कमी देखी जा सके है। भारतीय जनसंघ रा संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री पुण्यतिथि माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दूजा कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। वाने सोशल मीडिया पोस्ट माए श्री मोदी लिख्यो कि महान विभूति डॉक्टर मुखर्जी रा प्रखर विचार और आदर्श हर पीढ़ी ने मातृभूमि री सेवा खातिर प्रेरित करता रहेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आपरे निवास माथे डॉक्टर मुखर्जी रा फोटो माथे फूल चढ़ार वाने नमन करो। मुख्यमंत्री कहो कि डॉक्टर मुखर्जी रो त्याग और राष्ट्र प्रथम रो संकल्प देश सेवारे मार्ग माथे चालने खातिर प्रेरित करतो रहेला। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भरतपुर माए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रे बलिदान दिवस माथे राखीजिया कार्यक्रम माए भाग लियो। इन मौके श्री शेखावत कहो कि वणा आपरो सगलो जीवन सेवा खातिर समर्पित करो।
1: जो आज का दिन लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज पूरा भारत एक ऐसे महामना, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे विचार के प्रतिपादक व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहा है, जिसने संघर्ष का रास्ता चुन करके एक विचार को स्थापित किया।
0: कोटपुतली खेतर्रा बनार गांव रे कने आज एक सड़क हादसा माए एक मीनक हर टाबरी री मौत वेगी। हादसो तेज रफ्तार डंपर री चपेट माए आने सूंगयो। घटना रे पाछे खेतर माए शोक री लहर दौड़गी। युवा मामला और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहो कि भारत अभूतपूर्व खेल क्रांति रो साक्षी बन रियो है। सोशल मीडिया पोस्ट माए आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस माथे आपरे संदेश माए डॉक्टर मांडविया कहो कि देश री खेल क्रांति खिलाड़ियां ने सशक्त बना रही है और हर नागरिक ने खेला ने जीवन शैली रे रूप माए अपनावन खातिर बधाओ दे रही है। वणा कहो कि देश उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान रे ओलंपिक मूल्यां रो जश्न मना रियो है, जको दुनिया भर माए लाखों लोगों ने प्रेरित करे है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 खातिर 31 जुलाई ताई आवेदन किया जा सके है। सगला नामांकन ऑनलाइन लिया जा रहा है। ए पुरस्कार 15 सू 18 बरस आयु वर्ग रा टाबरा रे असाधारण साहस और सृजनात्मकता ने समर्पित है। आने 6 श्रेणिया माए दिया जावे है। राष्ट्रपति कानी सू ए पुरस्कार हर बरस नवी दिल्ली माए आयोजित खास जलसा माए प्रदान करया जावे। जलसा माए आयोजन वीर बाल दिवस रे मौके माथे 26 दिसंबर ने करयो जावे है। और आखिर माए खास खबरां एकर फेरू सुनो। यमुना जल परियोजना वारे क्रियान्वयन ने लेर नवी दिल्ली माए अहम बैठक भी। राजस्थान माए जल प्रबंधन ने मजबूती मिलेला। जयपुर माए कोचिंग संस्थाना माए अग्नि सुरक्षा व्यवस्थावां ने लेर विशेष अभियान चलाया गया। नेफेड रे नीलामी पोर्टल रो शुभारंभ। काश्तकारां सू सीधी खरीद खातिर जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो प्रभाव सू कम बारिश री आशंका ने देखता थका आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायां माथे व्यापक दिशा निर्देश दिया। इनरे साथे ही प्रादेशिक समाचारों उ बुलेटिन अठे ही पूरो व्यो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। ग्रामीण परिवार सुने अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल।
3: I'm

0: चौपाल कार्यक्रम सुनिए सगळ्या परिवाराने भोरूबाई की घणी घणी राम राम मोकळी मोकळी राम राम लियो आज तो श्रीपाल जी आ रहे हैं राम राम सा
1: राम राम सा कार्यक्रम सुनिए सगळ्या परिवाराने मोकळा मोकळा राम राम।
0: और श्रीपाल जी तकड़ा मकड़ा
1: बस जमा मौज में एरबो कह रहनी के थाने देखे और ही मौज गए मां
0: वासा। श्रीपाल जी अपनी जिकी युवा पीढ़ी है अब आपा देखा लगभग जी का बच्चा है भाई देश की नींव है
1: बिल्कुल।
0: एर जे आपा शारीरिक स्तर की बात करा तो अब जी को बच्चा के अंदर मोटापो दिनों दिन बढ़न लग रहे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है।
1: बिल्कुल आ तो सोचने वाली बात है गुरु भाई के टाबरा को जो शरीर है नी वो एकदम सही तरीके में विकसित हुए वो नहीं जल्दी वह बढ़िया आगे जाके जवान बनेगा पूरा अपना शरीर जो है वो ग्रोथ करेगा मतलब बढ़िया शरीर बनेगा।
0: बिल्कुल अब देखा गए टाबर जी का है वह ज़्यादा मोबाइल के माँ पहला टीवी चल गया फिर मोबाइल चल गया और खेलूं दिनों दिन जी को है वह दूर होने लग रही।
1: हाँ आ बात तो थे नी बहुत ही सियानी बात करी है टाबर जी का है नी बह के माने तो मोबाइल दे दो और की कौन चाहिए
0: क्योंकि है के आपने जी का पुराना परिवार है अपना परंपरागत जी को तरीको है वो माने के भाई ज़्यादा खाने पीने हूँ लाड जी को है वो ज़्यादा हुआ है और कटे न कटे असंतुलित खानों जी को है वो बढ़न लाग रही है और की रे सपरे दवाया के कारण भी जिका बच्चा के अंदर हार्मोन है वह दिनों दिन बिगड़ता जान लग रहा है वो भी एक कारण है कि मोटापो जी को है बच्चा के अंदर दिनों दिन देखने मिलन लाग रही है।
1: वो एक कारण तो है पर वो कारण इतो तकड़ो है जिके वो सारों बड़ो कारण आप इन मान सका क्योंकि जिका आपनों पारंपरिक जिको भोजन हूं तो जो राबड़ी उनती छा उनती या घर गए माँ जो भी आपने इम्यूनिटी को बिना खाद सपरे को जो भोजन पकवान दलियो खींचड़ो ए जी सारी चीज़ा पुराने टाइम के माँ होती नहीं बे अब छूटने लग रही है टाबर की है कि कहा तो कैसे माने कुरकुरा दे रहो
0: बिल्कुल
1: कहा कैसे माने बर्गर दे
0: आजकल
1: रहो
0: फास्ट
1: पिज्जा
0: फूड चल गया तो मोबाइल ऊपर कर दिया
1: हाँ
0: बाजार घर तीन पुगाड़ने और आज
1: हाँ घर तीन पुगाड़ना आज ऐसी चीज़ा देखो जरूरत की है चलो जिया भी काम चले है जरूरत के हिसाब मंगाओ पर बच्चा ने खास करके जेकी ए तलेड़ी बुंदेड़ी चीज है फास्ट फूड है जंक फूड है तो आ चीजों दूर रख लो क्योंकि मोटापे को जो एक कारण है नी वो भी है।
0: डॉक्टर तो उठते ही कहने लग गया कि जिकी गर्भवती माता जी की है बिंगो भी जी को खानो है वो संतुलित होना चाहिए जिको भी वो खान पान करने लाग रही है बिंगो जी को पांचवों हिस्सों है वो प्रोटीन गो सलाद या रसदार जी का भोजन है बने लेनो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि भविष्य के अंदर जिको पेट के अंदर बच्चो है वो जब बड़ो होगा तो कठे न कठे अब अगर माता इसो कोई भोजन करन लाग रही है या इसो कोई आहार लेन लाग रही है तो बिंगो असर भी टाबरा के अंदर आन लाग रही है कि भाई वह बच्चा ज़्यादा खाने लग गया और मोटापो जी को है थोड़ो सो ज़्यादा खाते ही मोटापो जी को है वो बदन लाग गया तो कठे न कठे जी को पूरो कारण बने हुए वो बने कि जन्म ले गई इन्हें सावचेत रह गए और माता ने खानो खान पान करना चाहिए और बिंगे बाद में जी शिशु हो गयो तो बिंगो भी संतुलित आहार होना चाहिए। और हार्मोन की गड़बड़ी की बात करा तो वो भी क्या है कि ज़्यादा तो कौन मिले लेकिन फिर भी अब जिको संख्या बढ़ी है बात थायराइड वाला की बढ़ी है
1: बिल्कुल आप बात
0: जिको
1: भी
0: थायरोक्सिन हार्मोन है ना वो शरीर शरीर के अंदर जरूरत के हिसाब से कम बने तो भी मोटापो बढ़ जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: यार कदी कदी तो टाबरा जिको मस्तिष्क है बिंग माँ ईसा हार्मोन्स बनने लग जाए जक भूख जी की है वह अनियंत्रित होने लग जाए और वो ज्यादा खाने लग जाए जके शू भी मोटापो बढ़ जाए। जी हाँ स्टीरोइड हार्मोन ईसो है जिको ज्यादा बने जके कब है कि मोटापो जिको है बच्चे को दिनों दिन बदन लाग जाए और अनियमित बदन लाग जाए और बच्चो बहुत ज्यादा बीमार पड़न लाग जाए या कोई बच्चे के गहरी चोट सिर पर लाग जाए तो बिंगो भी मस्तिष्क जुगो जे असंतुलन हुए तो भी क्या मोटापो बहुत ज्यादा बढ़े। बिंग अलावा अनुवांशिक तो होवे ही हुआ है कि माता पिता जे ज्यादा खान वाला हुआ ज्यादा मोटा हुआ तो बंगा बच्चा भी जी का है भी आदत के कारण मोटा होने लाग जाए और बड़ो खतरनाक बताए हुए
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्या है कि मोटापो तो है ना जी को एक टोक्सिन है मतलब जहर है। श्रीपाल जी क्या मोटापो किसी भी उम्र हो नहीं।

0: भाई खतरनाक है। आप जाना भी हाँ भाई, शुगर हो गयो, ब्लड प्रेशर हो गयो, और आजकल देखा हार्ट अटैक आने लग रहे है। वो मोटापे को ही कारण है कि जका बच्चा मोटा होएगा या जिको भी बुजुर्ग मोटो होएगा, शरीर में भारू होएगो, बिंग ए बीमारियां तो सगे रहेगी रहेगी।
1: बिल्कुल, आपन देखा नहीं कि जेका भारी शरीर के माँ अपने परिवार में घर में जो भी वेर वह बंग किए के थोड़ी दिक्कत रहे तो वह डॉक्टर ने जद भी दिखावा नहीं जाना। डॉक्टर आजकल बा एक चीज़ बता के कोलेस्ट्रॉल बद गयो।
0: कोलेस्ट्रॉल तो अब बच्चा खेले को नहीं जन खून हुआ जाडो जाडो हुआ जन, वो कह दे कोलेस्ट्रॉल बोले जो वही खेल तो रुआ बिंगी ऊर्जा जी की है, बस चर्बी में ना बदले पसीने में निकल जाए,
1: बिल्कुल
0: मेहनत करे को नहीं, तो बिंगे कारण वो जी को मोटापो है वो बदन लाग जाए। अब तो टाबरा नहीं है भी तलो भुनो ना खान देवा, जे खावे तो बिन कम कर दिया,
1: बिल्कुल
0: खाने
1: नियंत्रण
0: में
1: होना चाहिए।
0: तेल घी को भी इस्तेमाल कम करा, बस सारा ही करा के टाबर के
1: बिल्कुल
0: बुजुर्ग
1: बिल्कुल
0: पूड़ी परांठा आ खाने के प्रति भी बच्चा ज़्यादा उत्साहित ना करा, मीठो ज़्यादा ना खान दिया, कह खांड तो सफ़ेद जहर है गए,
1: बिल्कुल
0: आपा तो
1: है।
0: चाह के माँ पूरी टेका,
1: तो
0: अर कह
1: देखो
0: खांड बिना तो कह के मीठे बिना तो क्या चाहे
1: हाँ,
0: गए।
1: मीठे बिना के चाह पिया तो ज़्यादा मीठो भी अति हर चीज़ की जकी हुए बहुत नुकसानदायक हुए। अरे बात या मोटापे की करी या खेल कूद की करी तो गुरु भाई खेल कूद हो गयो या व्यायाम हो गयो योग हो गयो, ऐ सारी चीज़ें हैं नहीं। ऐ जीवन के माँ चाहे बच्चों हुए चाहे युवा हुए है ना, तो ऐ बहुत ही जरूरी है। आऊँ कि एक फिजिकल शारीरिक रूप हूँ तो आदमी या टाबर बच्चों वो तो फिट रहेगा ही रहेगा, मानसिक रूप हूँ भी बिंगो असर जो है वो सकारात्मक असर पड़े।
0: अब तो श्रीपाल जी देखा कि टाबर जी का है वह खेल छंटा लेने लग गया, क्योंकि मोबाइल में खेल चल गया,
1: हाँ
0: एर आइसक्रीम टॉफी चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक आंगो सेवन देखा पर दिनों दिन बदन लग
1: बदन
0: रहे,
1: लाग गयो।
0: एर टाबर ताजी सब्जियां कौन खावे, सलाद कौन खावे, सलाद एलर्जी करे बताओ।
1: हाँ अरे आत गए माँ कने के देखो, टाबरा ने पूछा के देखन लाग रहे हो, कह रील देखा, देखो के
0: आजकल तो आ
1: जमानो आयो
0: बीमारी
1: है।
0: चल रही है, तो आपनों यही है कि भी टाबरा ने आ चीज़ों दूर रखो,
1: बिल्कुल,
0: यार घटन घटे मोटापो ना बदन दो, नहीं तो टाबर हो जाएगा बीमार।
1: तो गुरु भाई बात ही कर सो कोई भजन ही सुना सो
0: सुनाओ सा।
1: सुनो।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: वासा, ये कुर बताओ श्रीपाल जी, मेरे यार एक मित्र बंधु है, एर जमीनड़ी की कम, तो की सगे इसो काम कर लिया के भी बिंगो जी को घर है वो सक्षम हो जेर की आएगा जी का स्रोत है वे बन जे तो बिन के बताओ पड़ेड़ो घणो है कोनी
6: खर्चो निकल जाए बराबर। हाँ, है बात तो थे लाख टकांगी पूछी है, क्योंकि आज वो जो को समय चलन लाग रियो नी भुरु भाई इंग मा के खर्चा बद्दा चलन लाग।
5: हां तो टाबरांगी पढ़ाई है, कोई और है,
6: बिल्कुल
5: खर्चा दिनों दिन बिगा बढ़न लाग रिया है। वो अब वो पर घणो पढ़ेड़ो हुआ तो ही कोई नौकरी कर ले इन्हें।
6: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पुराने जमाने के माँ तो क्या है कि एक सीमित खर्चा होता घर के माँ, साबण का, सर्फ का, तेल का, ऐ जेका खर्चा है नहीं। वह समय के साथ बदलाव हुए तो वह लगाना भी देखो जरूरी हुए, एर बच्चा की पढ़ाई है और तो ऐ बात जी है थारी बिल्कुल लाख रुपया की बात है। किसान के सागे सागे, खेती के सागे सागे, जमीन तो देखो अब घटनी है। आ थारे मित्र बंधु की बात को नहीं, आ अपने पूरे समाज के लिए है कि जिया जिया जमीन अब आपने घटती जावेगी पीढ़ी दर पीढ़ी, तो आ इससे पानती के माँ जमीन थोड़ी हो जाएगी। तो खर्चो चलान खातर है देखो मूल रूप आप किसानी करा खेती करा, तो वो खर्चो चलान खातर बात जमीन थोड़ी हुए तो भी सागे सागे दूसरों जो थे बात कही है। तो इन वास्ते सारा हूँ जो जरूरी है खेती के सागे सारों जो को सोरो एर बढ़िया जो को आपने लगे वो है भाई पशुपालन को जो को काम है नहीं, वो बहुत ही किसान भाइयों वास्ते फायदेमंद हो सके।
5: बिल्कुल बिल्कुल भाई, गाय भैंस तो वे रखे ही है।
6: हाँ
5: एर की बदा ले बांगी
6: बिल्कुल है। हाँ आई मैं थाने कहना चाहूँ कि गाय भैंस जिया सागे बदा लेगा नहीं तो इंग माँ के हुए कि आप दो तीन लाभ जिका है वह इं ले सका। खेती हूँ आपने खेत के माँ थोड़ी जमीन है तो आप हरियो चारो भी पशुआ खातर बिजाई कर सका।
5: गरगो हरियो चारो जी
6: गरगो हरियो चारो
5: तो भी सागे टाइम भी तो ये टाइम जमीन न देनो है बिसोई पिंगे सागे सागे आपके घर की लोग हैं पता है टब
6: बिल्कुल। हाँ घर परिवार
5: को मदद कर सके
6: मिलजुल गए। हाँ वो काम कर सके
5: कोई गाँव त्रो करे तो टबरी सामले।
6: हाँ टबरी सामले बिल्कुल। अरे दूसरो जो वो है कि जी आप पशुपालन करांगा गायें भैंसा रखांगा तो दूध तो मुख्य रूप कमाई को साधन है ही है। दूध के सागे सागे पशुआंगी जकी गोबर हुए गो बिंग खाद हुएगी बा भी खेती के मां आप काम में ले सका।
5: बिंग अलावा दूध का दूध निर्मित

0: जिका
1: बिल्कुल
0: पदार्थ है, जिया दही करगो जे, छा करगी जे, आपने चूंटियो करगो जे,
1: बिल्कुल
0: यार पनीर और आजकल तो बना के बेचन
1: बिल्कुल
0: लग
1: बाजार
0: गया
1: के माँ हाँ सारी चीज़ां
0: यार,
1: देखो
0: चोखा
1: देखो
0: दाम मिले भीगा।
1: बिल्कुल जो कि शुद्ध देसी जो कि चीज़ां हुए चाहे वो दही हुए चाहे वो दूध हुए चाहे वो पनीर हुए या घी हुए तो अंग तो देखो कोई मोली को नहीं।
0: बिल्कुल यार, के खात भी जे आपके खेत में बरतो भी थी बरत ले, और बाकी जे बाकी केचुआ खात बना ले,
1: हाँ
0: कंपोस्ट तैयार कर ले, तो
1: बिल्कुल
0: बिंगा तो दाम अच्छा मिले और बतो बिक जे।
1: बिल्कुल
0: तो आ राय बिन देवा के
1: बिल्कुल
0: भाई
1: बिल्कुल
0: खेती के सागे सागे पशुपालन जी को है,
1: वो बहुत
0: बिंगो व्यवसाय जी को है, वो अपना ले जी को
1: बिल्कुल
0: बिंगो
1: फायदेमंद
0: बिंगमा
1: हुए
0: बिंगे जी की आर्थिक स्थिति है बाबीशू
1: बिल्कुल
0: मजबूत होने
1: बिल्कुल
0: लग
1: तो
0: जी
1: आ
0: सी
1: रहा
0: के।
1: है बने भी दे और आपने जो कहा किसान भाई सुनने वाला है वे भी ये बात ने समझ सके।
0: बिल्कुल सा अपनाना चाहिए, क्योंकि समय बीतो ही देनो है, बीती खेचल है, बिंगे सागे सागे एक व्यवसाय जी को है वो चालू हो जी सी।
1: बिल्कुल
0: एर सारी चीज ही प्रकृति में जुड़ेड़ी है, एर अपनी आमदनी जी की है बा बत जाए।
1: अब जी बात करा के घर गे माँ चूल्हो जलान खतरे अपने लकड़ी चाहिए क्योंकि आजकल गाँव माँ धीरे धीरे धीरे धीरे जिया के जगह गैस सिलेंडर है वह भी अब लोगों बपरा लिया गैस
0: बपरा
1: गए
0: लिया पर महंगाई मारन लग रही है।
1: बिल्कुल। तो इंग माँ के हुए के जो आप पशुपालन की बात करी तो आप भी चीज़ों में भी बचाव कर सका कि पशुपालन आजकल जो गोबर गैस है
0: हाँ गोबर गैस बना
1: तो
0: सके,
1: भी वो भी आप बनासकार भी हूँ दो रोला
0: सरकार मदद करे भी मैं
1: बिल्कुल
0: तो।
1: सरकार भी मदद करे कम पैसा में सब्सिडी वगैरह भी मिलती है उसी पूरी जानकारी किसान भाई इन्हीं ले सके। अरे अब इंगमा के वह के जो भी आप गोबर गैस बनाने वास्ते जी तो गोबर इंगमा घेरांगा तो बिनो तो सागे तो भी गैस को निर्माण होगा और सागे जो वो गोबर है वो भी किया गया एकदम पतलो हो गया पिघल गया बींगी जो की खाद बने तो बिना भी आप कई भाई तो किसान भाई तो बिनो किए खेत के माँ उपयोग भी करे तो छिड़काव भी करे कोई स्प्रे के रूप में भी काम में लेवे तो भी कई तरह की जकी आपने बिना जकी वे नहीं आपने
0: रे सप्रे वाली
1: हाँ रे स्प्रे वाली
0: जैविक खेती
1: जैविक जैविक खेती जकी बोले तो
0: बिंगा
1: वह भी
0: उत्पाद
1: आप कर
0: बना सके
1: सका।
0: है, जैविक
1: हाँ
0: खेती उत्पाद बना सके
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल
0: और वह भी बिकन लग जाए,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिकने वाली
0: व्यवसाय सागे चालू हो जाए, सागे दुकानदारी हो जाए, सागे खेती हो जाए।
1: हाँ तो क्या है कि मेहनत है लगन जो बनी तो इंगे सागे सागे किसानी इंगे सागे सागे जगह पशुपालन गार और बहुत सारा ऐसा काम है जगह किसान भाई लाभ उठा सके। बात जरूरी है मेहनत की
0: बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़े, टाइम भी तो ही
1: बितो ही
0: किसानी में लागण है, भी तो ही अठे लागण है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लो कोई गीतड़ो सुना दो।
1: हाँ मैं समझ गयो थारी बात है थे गीत सुनो चाहो तो सुनो सीमा मिश्रा एर साथियों गाइडो ओ गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: सुनो गीत बुरु भाई। बुरु भाई आज अब आपन देखने लग रहे हैं, आज यकीन देखो बदली आया है, छांटा छिड़का हुआ है।
1: बिल्कुल
0: अरे कई जगह तो आपने आसे पासे कई जगह आपने सूरतगढ़ गए आसपास गए, माँ देखो रेतीली जमीन है, बरानी टिबा बेल्ट है, तो अटे बरसाता भी हुई है। और बरसात हुई है तो क्या है कि अब मेघ की रुत है, अरे बिजाई गो टैम है।
1: बिल्कुल ग्वार बीजे सा
0: हाँ मोट बाजरी ग्वार, अरे अब थाने तो ग्वार प्यारो लगे है, अरे ग्वार की थे बात ही कर दी। तो गुरु भाई ग्वार के माँ लार लग कई सालों देखने लग रहे हैं, धीरे धीरे एक समस्या है जी बा बढ़ने लग रही है ग्वार की फसल के माँ। एक तो क्या हुआ है कि जब पौधो ग्वार को बड़ो हो जाए नी तो बिंग माँ जड़ गलन जी की है बा चालू हो जाए, शुष्क जड़ गलन जी की हुआ है जैसे माँ बिंगी निशानी आ हुआ है कि जड़ है नी बा धीरे धीरे धीरे धीरे सूखने लग जाए। बीहू क्या हुआ कि वो पौधो ही ऊपर लगे जो धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो पौधो सूख गए।
1: और तो और श्रीपाल जी, वो भूमि गमा निकलन से पहला और भूमि निकलन के बाद में दोनों स्थिति में नुकसान और पहुंचावे।
0: हाँ बिल्कुल। और दूसरी एक है कि पौधा जब बड़ा हो जाए नी जना जके आपने आम भाषा गमा तो आप बोला तुरड़ियो लगे पौधा गमा, अरे जी हाँ आप खेती की भाषा के माँ वैज्ञानिक भाषा में कह दिया झुलसा रोग। जी हम इंग माँ के हुए कि झड़ लगेड़ो सो पौधो जी ऊपरों जी हाँ के हुए कि जी गर्मी हो या ताप हूँ जी पौधो बड़े नहीं ऊपरों बी साहब हूँ झुलसेड़ो सो पौधो हो जाए, तो इन्हें झुलसा
1: बिल्कुल
0: रोग बोले आप तुरड़ियो बोल दें। तो आ समस्या भी जी की है खास करके जब पौधो हो जाए 2-3 फिट को अरे फाड़ लागणो शुरू हो जाए, कई बार तो फाड़ लागे बाद गए माँ भी फलियाँ लागने के बाद में भी पौधो झुलस जाए सूखन लाग जाए।
1: बिल्कुल
0: तो आ समस्याओं के बारे में भी आज थोड़ी सी थे बातड़ी जानकारी किसान भाई अन देो कि किया आऊँ निजात पास गए।
1: देखो श्रीपाल जी, फसल चाहे कोई भी है, किसान भाई ना इन चीज़ को तो ध्यान रखना चाहिए। एक तो समय से बुआई, समय से बुआई नहीं करने के कारण कई बिरिया जी को बुनटो है बिना पूरो जी को बिंगो पर्यावरण जी को अपनो इन्वायरमेंट जगह ना आप बोल दिया तो वो मिले को नहीं, और बिंगी वजह जी की फसल की बढ़वार है बा पूरी हुए को नहीं। तो एक तो बुआई जी की है बा हमेशा समय पर होनी चाहिए,
0: बिल्कुल
1: और भूमि जनित जी का रोग है बंगो उपचार बीज से ही होना चाहिए।
0: हाँ आ बात जरूरी है। देखो बीज को उपचार आप बार बार किसान भाइयों ने बताओ यहाँ के बीज को
1: बिल्कुल
0: देखो उपचार है बीजो उपचार कर गए अरे बीजो।
1: बिंगो कारण वो है कि जब बुनटो बंटवार का नहीं हुआ, जब जे जड़ में दिक्कत आ जाए जन फिर अपने गने हाथ में की रहे को नहीं भाई, अब फिर उपचार तो हुआ को नहीं। तो
0: बिल्कुल
1: भूमि जनित जी को रोग है बिंगो उपचार बीज के सगे ही अपन कर देना चाहिए। अब लारा जा जिया गर्मी बोली पड़ी, 35 डिग्री ऊपर जद भी तापमान रहे हो भाई, आपने पहला फसला निकली और
0: बिल्कुल
1: बी समय के अंदर गहरी पाड़ जगह किसान बयां कर दी तो घनकरो सो तो भूमि को जी को रोग है वो बा गर्मी खत्म कर दे।
0: अच्छा इंगी बुआई की बात करो थे समय के ऊपर, मैं तो आ समझो कि ग्वार की बुआई समय के ऊपर करने की
1: नहीं,
0: बात
1: ग्वार की
0: करो
1: बुआई तो करनी है समय
0: करनी
1: पर,
0: करनी
1: फसल चाहे कोई भी है, बिंगी
0: बिल्कुल।
1: बुआई जी की है बस समय पर होनी चाहिए। यार अब समय चलने लग रही है ग्वार को, लेकिन ई शू पहला जिया गर्मी पड़ी तो बिन समय भूमि की पाड़ जी की है बा गहरी करनी
0: बिल्कुल
1: चाहिए,
0: समझ गया मैं तारी बात है।
1: ताकि भूमि जनित जी का भी लार्वा है कोई
0: हाँ
1: खरपतवार का जी है बस सारा जी का है भाई, तपती गर्मी का माँ खत्म हो गया, भूमि ने एकदम तैयार कर दिया। बिंग बाद में अब जिया ग्वार बीजनी है तो ग्वार की जी को बीज है बिंग उपचार कर लिया, एर शुष्क जड़ गलन की जी की थे बात करी वो भूमि निकलने पहला एर निकलने के बाद में दोनों स्थितियां बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचावे। एर वो रोग बूटे के निकलने पहला बीमारी की जी की तीव्रता की स्थिति है बिंगमा 90% तू ज्यादा क्षति पहुंचावे,
0: बिल्कुल
1: एर भूमि निकलने के बाद में भी स्थिति जी की है वह 25-30% तक
0: हाँ
1: आ
0: बिल्कुल।
1: जाए।
0: अपन देखा नहीं कई बार जमीन में नमी हुए फिर भी किया कि पौधो जी बारे निकलो बुंटो और निकलते ही वो खत्म हो जाए
1: खत्म हो
0: जड़
1: जाए,
0: बिंगी जकी
1: इनका
0: बग।
1: लक्षण भी अपन ठा पड़ जाए भी तनों और जड़ मिलने की जिग्या पर हल्का गहरा भूरे रंग का धब्बा बन जी सी,
0: अच्छा
1: जी का बाद में पूरे तने पर फैल गए तने जी को है वो काड़ो कर दिया और खत्म कर दिया जी की थे अभी बतावा। ए रोगग्रस्त जी को बुनटो है वो आसानी से उखड़ जाए,
0: बिल्कुल
1: वृद्धि करतो जी को बुनटो है बिंगी पत्तियां पर कांस्य जी का आपा कुआ कांस्य का रंगा धब्बा जी का दिखाई देने लग जाएगा, और बाद में बुनटे के ऊपरी भाग पर ऊपरी भाग जी को है बुनटे को वो मुरझाने लग जाए।
0: हाँ पीले पीले रंगा देखा सा।
1: ए रोगग्रस्त जी को बुनटो है वो इंगमा फलियां बने को नहीं, और फलियां बने तो बीज रोगजनक हो गए और अगले साल तक एकदम ही बा खत्म हो जाए।
0: खत्म हो जाए
1: तो ए बिंगा लक्षण जी का है दिखाई दे जाए, इंगे प्रबंधन वास्ते आप वो कर सका कि बुआई एक तो समय पर जिया जून गए।

0: अब अंतिम सप्ताह चल रहे, इस समय कर दिया, फिर जुलाई गए पहले हफ्ते कमा अपन बिजाई कर देनी है।
1: बिल्कुल
0: गर्मी में गहरी जुताई अपन बात
1: हाँ, बात
0: करी,
1: जरूरी है।
0: बिंगो विशेष तौर से ध्यान रखा कि गहरी पाड़ कर दिया तो कठिन कठे अपनी भूमि जनित जी का रोग है पे बहुत ज़्यादा कम हो जाए। बुआई के 15-20 दिन पहला सरसों जी का अवशेष है वह भूमि में मिलाने से भी इन रोग में 15-20% तक कमी देखी गई है श्रीपाल जी।
1: अच्छा
0: एर गर्मी में सिंचाई देके माटी ने जलमग्न करना चाहिए, एक एकर नमी जी की है बा भूमि के अंदर अपन ने बिठानी चाहिए। बिंग अलावा रोग प्रतिरोधक जी की किस्म है वह जी हाँ HG 365 है, HG 563 है, HG 75, अंगी बुआई अपन करा तो कठिन कठे इन रोग को कम असर रहेगा
1: बिल्कुल
0: क्योंकि यह प्रतिरोधक है। भूमि में रोगजनक रोग जी को है वो कम करने वास्ते भी 2-3 जी का साल है बंग में फसल चक्र वो बहुत ही जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है।
0: भी जठे आप ग्वार बीजा बैठे ज्वार बाजरो जो सरसों ए कर लेनी
1: बिल्कुल आप
0: चाहिए।
1: बात तो आपा किसान भाइयों समय समय पर बताता ही रहा कि फसल चक्र देखो है वो भी
0: 2-3 सालों आप अगर फोड़ लिया
1: हाँ
0: नहीं भी भूमि ने तो
1: जरूरी
0: कठे
1: है।
0: न कठे बैजी का जी पक्का हो जाए वह खत्म होने लग जाए।
1: बिल्कुल
0: यार बीज ने आप बायोस्टिन विटावैक्स वेनलेट आगे 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर्शों उपचारित
1: कर सका
0: कर सका।
1: बिल्कुल
0: खड़ी
1: बहुत
0: फसल में भी भूमि में नज़दीक जी के तने के नज़दीक है बटे बायोस्टिन को आप छिड़काव कर सका तो
1: बिल्कुल
0: इन रोग सुन जी को है वो लारो छूट जाएगा। और बिंग बाद में थे बात करी झुलसे की जिके ना आप जीवाणु जूसो भी कहाँ अंग्रेजी में इनको नाम BLB भी कह दिया आप छोटो नाम ले लिया।
1: बिल्कुल
0: इंगमा के है कि ग्वार का उत्पाद जी का क्षेत्र है बटे वो क्षति पहुंचावे जटे ग्वार बीजांगा बटे वो नुकसान कर सी। रोग की तीव्र अवस्था रोग के उत्पादन में 50% तक कमी कर दे। इंगा लक्षण के होगा कि इंगो जी के बूंटे पर रोग वो लगेगो बिंगी पत्ती पर धब्बा जी का है वह झुलसे के रूप में प्रकट हो जाएगा। एर जी
1: हाँ
0: की शीरा है बांगे बीच में गोल एर यहाँ पानी में बरेड़ा फुफूला सा हुआ नहीं
1: हाँ
0: जलाशक्त बोला आप जी कहने या तेलिए धब्बा पत्ती के ऊपरली सतह पर दिखाई देने लग जाएगा।
1: बिल्कुल
0: पत्ती के किनारों के ऊपर वी के आकार का धब्बा बन जाएगा
1: हाँ
0: तो ए इंगी पहचान है। इंगे अलावा तने पर लंबी काली धारियां दिखाई देने लग जाएगी और तने के काले होने तक होनो और चटकने का भी कारण वही रोग है।
1: बिल्कुल
0: और कभी कभी तो फलियां पर भी काली धारियां जी की है वह दिखाई देने लग जाएगी। इंगे नियंत्रण वास्ते श्रीपाल जी आप वही बताऊंगा जिको आपने जी का वैज्ञानिक है भाई शोध करी है तो भाई बताया है कि बुआई को जी को समय वो जून
1: हाँ
0: को अंतिम सप्ताह यानी समय पर बुआई तो आप हम बात करी के करनी करनी है।
1: बिल्कुल
0: बिंग अलावा बुआई की रोग प्रतिरोधक जातियाँ जी की किस्म आवे वह आप भी जानत करा। बीज को उपचार जे रोग आंतरिक बीज जनित है तो बीज उपचारों प्रभावी नियंत्रण मिल जाए तो बीज उपचार आप करनो ही करनो है।
1: सारा हूँ जरूरी है।
0: गर्म पानी उपचार हो जाए बीज ने यानी 56 डिग्री तापमान वाला जी को गर्म पानी है बिंग में 10 मिनट तक जो आप भिगो देवा तो भी बीज में जी को है बात ताकत बन जाए इन रोगों लड़नगी।
1: बिल्कुल वो काम भी बहुत सावधानियों करना है।
0: बिल्कुल खड़ी फसल में बुआई के 5, 7 या 9 हफ्ते में आप जरूरत के हिसाबों स्ट्रेप्टोसाइक्लिन गो घोल जी को है वो बना के छिड़काव कर सका
1: बिल्कुल
0: तो इन तरीके से आप रोगों को उपचार कर सका। लो अब गीत और सुना दो का एक आपने कहना बाजार भाव आयो है श्रीपाल जी सुरतगढ़ मंडी को
1: बिल्कुल बांस के सुनाओ सा
0: फिर सुन छा गीत।
1: बिल्कुल थारे
0: ए सुरतगढ़ मंडी में आज कणक बिकी ऐसा नीचे नीचे 2375 रुपया और ऊपर में 2390 रुपया सरसों बिकी है 6862 रुपया में लेके 7172 रुपया तई। ग्वार बिक्यो है नीचे में 5510 रुपया और ऊपर में 5600 रुपया। गंगानगर मंडी में आज सरसों का भाव नीचे में रहा 6301 रुपया और ऊपर में 7337 रुपया। चीनो बिक्यो 5105 उन लेके 5451 रुपया तई। कणक बिकी 2402 लेके 2707 रुपया तई। ग्वार बिक्यो 5535 रुपया। जौ का नीचे का भाव रहा 2241 रुपया और ऊपर में 2250 रुपया। जई बिकी है 3580 लेके 3655 रुपया तई। मूंग बिके आज 6680 रुपया। लियो अब सुना दो एक गीत।
1: वाह वाह बुरु भाई बड़ी उतावल करे जी। आपने राजस्थानी में कहे करे नहीं कि किया किया उतावल करे कहते रहे कि गाड़ी टिपेगी।
0: गड्डी है भी कोई गीत सुना दो फिर।
1: लियो सुनो सा।

0: लो गुरु भाई सुनायो गीत।
1: बिल्कुल सा
0: अरे कार्यक्रम को टाइम तो देखो पूरा होने लाग रही है तो लेवा इजाजत।
1: बिल्कुल टाइम हो गया सा चला
0: सारा
1: बे राम
0: सारा
1: राम सा
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 7:45 हुए हैं। आइए सुने भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत।

बजरंगी भाईजान। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज थी अदनान सामी और साथियों की। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत, उदित नारायण नूतन और साथियों की आवाज में।

लो मैं आ गया। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुने ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुने कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज श्रीपाल शर्मा का श्रोताओ, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वारिस के कुछ गीत। साथियों, वारिस फिल्म सन 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे रविंद्र पीपट।

सो तो फिल्म वारिस के निर्देशक थे रविंद्र पीपट, पटकथा लेखक थे बलदेव गिल। इस फिल्म के निर्माता थे सवन योगराज, बलदेव गिल और J.S. चिम्हा। फिल्म वारिस में मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाने वाले कलाकार थे स्मिता पाटिल, राज बब्बर, राज किरण, अमृता सिंह। छायांकन के रूप में मनमोहन सिंह ने इस फिल्म में अपना योगदान दिया था। संपादन सुभाष सहगल का। उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना ने मुख्य रूप से इस फिल्म में संगीत के रूप में योगदान दिया। 6 मई 1988 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म वारिस एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें स्मिता पाटिल की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम फिल्मों में से एक के रूप में विशेष रूप से याद किया जाता है। साथियों, इस फिल्म को आज इस कार्यक्रम में शामिल करना मुख्य रूप से इसलिए था कि आज ही के दिन यानी 23 जून 1952 को एक ऐसे कलाकार जिन्होंने आज तक अपने कैरियर में बहुत बड़ा नाम कमाया, फिल्म इंडस्ट्री में

बहुत सारे फिल्मों में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। नायक और खलनायक के रूप में हिंदी फिल्मों के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में वो चर्चित नाम जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था वो है राज बब्बर, जिन्होंने इस फिल्म में नायक के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी।

सोतो फिल्म वारिस में गीत जिनमें आवाज़ देने वाले कलाकार रहे किशोर कुमार, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, मनमोहन सिंह, सुरेश वाडकर और आशा भोसले। राज बब्बर जो आज करीब 74 साल के हो चुके हैं, उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाओं के स्वरूप में आज फिल्म वारिस के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। साथियों, राज बब्बर का जन्म, जैसा कि हमने आपको बताया, 23 जून 1952 को टुंडला उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी शिक्षा आगरा में हुई। फिल्मी करियर के साथ साथ राजनीति में उनका बड़ा योगदान रहा है। लोकसभा सांसद और राज्यसभा सदस्य के रूप में राजनीतिक योगदान राज बब्बर का। साथ ही राज बब्बर ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी उल्लेखनीय काम किया। इंसाफ का तराजू, निकाह, आज की आवाज, वारिस, उमरा अफजान, बॉडीगार्ड, बंटी और बबली जैसी फिल्मों में उन्होंने अपना योगदान दिया। बात जहां तक वारिस फिल्म की है तो राज बब्बर ने इस फिल्म में बिंदर का किरदार निभाया। बिंदर सिब्बो यानी अमृता सिंह, जिससे वो प्रेम करता है। कहानी न्याय और परिवार के असली वारिस की रक्षा के लिए संघर्ष की रही। किशन सिंह अपनी जमीन और संपत्ति की वसीयत बनाता है। उनका बेटा दुल्ला यानी अमरीश पुरी नाराज होकर उसकी हत्या कर देता है। वर्षों बाद संपत्ति के वारिस को लेकर परिवार में संघर्ष शुरू हो जाता है। सरवण सिंह की हत्या कर दी जाती है और उसकी पत्नी पारो यानी स्मिता पाटिल वारिस को बचाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करती है। फिल्म का मुख्य विषय जमीन, विरासत और

सोताओ। इस फिल्म में आवाज, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों की, गीत लिखे वर्मा मलिक ने और संगीत दिया उत्तम जगदीश ने।

इसी गीत के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम समाप्त करने की शिरपाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बारिश फिल्म के कुछ गीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे पास है हर मैच का ताज़ा अपडेट और वो सब कुछ अधिक जानकारी के साथ। तो शुरू करते हैं आज का अंक, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से और इंग्लैंड का मुकाबला घाना से होगा। अर्जेंटीना, फ्रांस और नॉर्वे नॉकआउट राउंड में पहुंचे। जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। भारत ने तीसरा क्वार्टर समाप्त होने तक 3-1 की बढ़त बनाई। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू। और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित।

0: तो कार्यक्रम को सबसे पहले शुरू किया जाए फुटबॉल के महासंग्राम से, यानी फीफा विश्व कप की खबरों से, जहां आज ग्रुप स्टेज में कई अहम मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें टीमें नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान पे उतरेंगी। ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका के ह्यूस्टन में उज्बेकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। वहीं ग्रुप एल में रात 1:30 बजे अमेरिका के बोस्टन में इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। कनाडा के टोरंटो में सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से, जबकि ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया और कांगो आमने सामने होंगे। इस बीच अर्जेंटीना, फ्रांस और नॉर्वे ने नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: From close range, it's a second goal for Algeria, and it's been scored by Amin Gouiri. Algeria coming from behind in the second half. Jordan 1.

0: Algeria 2.
1: अल्जीरिया ने आज सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में ग्रुप जे के मैच में जॉर्डन को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के नॉकआउट राउंड में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। मैच में पहला गोल जॉर्डन के निजार अल राशदान ने मैच के 36वें मिनट में किया। इसके बाद अल्जीरिया ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए पलटवार किया और 2 गोल करते हुए मैच अपने पक्ष में कर लिया। इस हार के साथ ही जॉर्डन विश्व कप से बाहर हो गया है।
2: Senegal bite back in stoppage time. The final whistle. And the Viking adventure will go on. Norway into the knockouts.
1: इससे पहले 28 साल बाद फीफा विश्व कप खेल रही नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। नॉर्वे के लिए एरलिंग हॉलैंड एक बार फिर से मैच के हीरो बनकर उभरे। मैच का पहला गोल पहले हाफ के 43वें मिनट में नॉर्वे के मार्कस होल्मग्रेन पेटरसन ने किया। इसके बाद दूसरे हाफ में 48वें मिनट में एरलिंग हॉलैंड ने गोल कर नॉर्वे को 2-0 से बढ़त दिला दी। इसके बाद सेनेगल की तरफ से इस्माइला सार ने 53वें मिनट में गोल किया। एरलिंग हॉलैंड ने 58वें मिनट में गोल कर नॉर्वे को 3-1 से आगे कर दिया। इस्माइला सार ने सेनेगल के लिए दूसरा गोल किया। वहीं एक अन्य मुकाबले में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने उतरे किलियन एम्बाप्पे के 2 शानदार गोल की मदद से फ्रांस ने इराक को 3-0 से पराजित किया। इस जीत ने फ्रांस को राउंड ऑफ 32 में एंट्री दिला दी है। इसके साथ ही एम्बाप्पे 4 गोल के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में लियोनेल मेसी के ठीक पीछे खड़े हैं। फ्रांस के लिए पहला और दूसरा गोल एम्बाप्पे ने किया। इसके बाद माइकल ओलिस ने एक और शानदार पास दिया जिस पर डेम्बेले ने गोल कर अपने करियर का पहला विश्व कप गोल दर्ज किया।
3: Because he works miracles, and he is Lionel Messi. And Argentina leave Austria behind by 2-0. They are through.
1: दिन का पहला मुकाबला स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के नाम रहा, जो न सिर्फ ऑस्ट्रिया के खिलाफ अर्जेंटीना की जीत के नायक बने बल्कि फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। मेसी के 2 गोल की बदौलत मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया पर 2-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने नॉकआउट दौर में भी जगह पक्की कर ली है। मेसी ने मैच के 38वें मिनट में गोल कर अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। इसके बाद इंजरी टाइम में एक और गोल करके टीम की जीत पक्की कर दी।
2: Since Diego Maradona scored the hand of God, Lionel Messi scores the goal to make him the World Cup's all-time leading scorer. Wonderful moment.
1: इस गोल के साथ ही मेसी टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये फीफा विश्व कप में इस महान खिलाड़ी का 17वां और इस वर्ष का 4th गोल था। अपने 39वें जन्मदिन से 2 दिन पहले मेसी ने न केवल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा है बल्कि वे फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जॉर्जिन्हो के बाद लगातार 6 वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
4: और फुटबॉल के इस महासंग्राम के बाद अब निशानेबाजी की बात की जाए, जहां जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत पदक जबकि युग प्रताप सिंह राठौड़ ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी स्पर्धा की टीम इवेंट में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की टिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं इस प्रतियोगिता में, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। कार्यक्रम में अब बात हॉकी के मैदान से हॉकी की खबरों की, जहां FIH हॉकी प्रो लीग में लंदन में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने मुकाबले में 3-1 की बढ़त बना रखी है। भारत के लिए अभिषेक ने मैच के 21वें मिनट में, नीलकांता शर्मा ने 23वें मिनट में और सुखजीत सिंह ने 39वें मिनट में 1-1 गोल किया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से नदीम अहमद ने पाकिस्तान का एकमात्र गोल दागा। वहीं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण आज से बेंगलुरु में शुरू हो गया है। सुनते हैं इस प्रतियोगिता पर हमारी रिपोर्ट।
5: मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण आज से बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन जलाहली में शुरू हो गया है। प्रतियोगिता के पहले मैच में भारतीय वायुसेना ने भारतीय सेना की दक्षिणी कमान को 2-0 से

0: हटा दिया। 3 जुलाई तक चलने वाली इस हॉकी प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग से है नॉकआउट आधार पर ये मुकाबले एयरफोर्स स्टेशन जलाहली स्थित हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 2018 से इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इस दौरान टूर्नामेंट की विजेता टीम को 10 लाख रुपए और उप विजेता को 8 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। प्रत्येक मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच को 25,000 रुपए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस टूर्नामेंट का नाम वायुसेना के महान मार्शल अर्जन सिंह के नाम पर रखा गया है। हॉकी खेल के प्रति मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह का जुनून बेमिसाल था। भारतीय वायुसेना के इस पूर्व अधिकारी ने हमेशा ही वायु योद्धाओं को एक ऐसे वीर के रूप में प्रेरित किया जिन्होंने आगे रहकर नेतृत्व किया, चाहे वे युद्ध का मैदान हो या फिर खेल का मैदान। इस प्रतियोगिता का 6वां संस्करण पिछले वर्ष चंडीगढ़ के रघुवीर सिंह भोला हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिनमें 2 अन्य देशों की वायुसेना की हॉकी टीमें सहित कुल 12 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें भारतीय रेलवे ने खिताब अपने नाम किया था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एक शानदार प्रतियोगिता का आगाज हो गया है और एक प्रतियोगिता का आगाज आज होने को है। यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया के फुलर्टन में शुरू होने जा रहा है। प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का नेतृत्व करेंगे।
2: पुरुष सिंगल्स में विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पे काबिज लक्ष्य सेन को दूसरी वरीयता दी गई है और पहले दौर में उनका मुकाबला बेल्जियम के जूलियन कैरागी से होगा। इस महीने की शुरुआत में इंडोनेशिया ओपन में पहले दौर में बाहर होने के बाद लक्ष्य वापसी करने के लिए किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे। श्रीकांत पुरुष सिंगल्स में अपना पहला मैच चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू के खिलाफ खेलेंगे। सानिध दयानंद जापान की 4थी वरीयता प्राप्त युदाई ओकीमोतो के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यन ने भी मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है और उनका मुकाबला क्वालिफायर से होगा। महिला वर्ग में कुल 7 भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स में चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा और 6ठी वरीयता प्राप्त देविका सिहाग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। 17 वर्षीय तन्वी जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगी, जबकि देविका का सामना पेरू की इनेस लुसिया कैस्टिलो सालाजार से होगा। विश्व रैंकिंग में 91वें स्थान पर काबिज अनमोल खरब पहले दौर में बुल्गारिया की कालोयाना नलम्बतोबा से भिड़ेंगी। रक्षिता श्री एस का सामना पहले दौर में क्वालिफायर से होगा। अगर वह आगे बढ़ती है तो अगले दौर में उन्हें कनाडा की शीर्ष वरीयता प्राप्त मिशेल ली का सामना करना पड़ सकता है। श्रियांशी वल्ली शेट्टी अपना पहला मैच कनाडा की राहेल चान के खिलाफ खेलेंगी। तान्या हेमंत का सामना जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त रिको गुंजी से, जबकि आकर्षी कश्यप का मुकाबला चीनी ताइपे की तुंग सियो टोंग से होगा। महिला डबल्स में भारत की ओर से त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ही चुनौती पेश करेंगी। उनका पहला मुकाबला स्पेन की पाउला लोफेज और लुसिया रोड्रिगेज से होगा। पुरुष डबल्स के ड्रॉ में कोई भी भारतीय जोड़ी शामिल नहीं है। मिक्स डबल्स में 7वीं वरीयता प्राप्त ध्रुव रावत और मनीषा के इंडोनेशिया के विरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
3: पद्म भूषण डॉक्टर विजय अमृतराज खेल टेनिस, श्री सविता पूनिया खेल हॉकी, रोहित गुरुनाथ शर्मा खेल क्रिकेट।
1: पद्मश्री से सम्मानित होने पर सविता पूनिया ने इसे अपने लिए गौरव का क्षण बताया।
4: खुशी तो बहुत है क्योंकि एक हॉकी में लंबी जर्नी रही है मेरी और काफी हार्डवर्क किया है और टीम की बहुत हमेशा सपोर्ट रही है, फैमिली की सपोर्ट रही है। जब भी कुछ एक्स्ट्रा अवार्ड मिलता है तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जो भी हूँ अपनी टीम की वजह से और अपनी फैमिली की वजह से हूँ। हमेशा वो जर्नी याद आती है कि आपने खेलना क्यों स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया। तो एक वो टाइम था कि मुझे घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था, हॉकी खेलना तो बहुत दूर की बात थी, और आज मुझे राष्ट्रपति भवन में अपनी फैमिली के साथ जाना है तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है।
1: वहीं पद्म भूषण से सम्मानित होने पर विजय अमृतराज ने इस सम्मान के लिए भारत सरकार का आभार प्रकट किया।
5: I think I'm truly honored, I'm thrilled, I'm delighted, humbled.

0: Built by this incredible award by the Government of India, the People's Award. The Padma Awards are very, very special. The Padma Bhushan is truly special for me at this stage in my career. And I am honored. I thank the Government of India. I thank the Honorable Prime Minister and of course, the people of this great country who have helped me perform to the best of my ability, not just in India, but around the world. And it has been a real honor to be able to represent India around the world.
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत केरलम के तिरुवनंतपुरम में साइकिलिंग बाय द सी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान श्री मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग एक बेहतरीन एक्सरसाइज है।
2: Cycling is a best exercise, is a solution of pollution, is a save the fuel, is also solution of traffic. एक cycling में इतना फायदा होता है तो why we are not doing cycling? सभी केरलावासी को आग्रह है कि आपका कामकाज का स्थान दूर न हो तो आप cycling करिए, cycle लेके आपके वर्कप्लेस पर जाइए। सभी कॉलेज और स्कूल के यूथ को मेरा आग्रह है कि अब स्कूल कॉलेज साइकिल लेके जाइए और साइकिलिंग को प्रमोट करके हेल्दी नेशन और वेल्दी नेशन के स्लोगन को साकार करिए।
1: किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए अपने देश का प्रतिनिधित्व करना उसका सबसे बड़ा सपना होता है। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी का बीसीसीआई ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वैभव पहली बार भारतीय टीम की जर्सी प्राप्त करके बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस दौरान वैभव ने कहा कि इस पल को शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
3: जिस चीज के लिए मैंने फर्स्ट डे से बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पे मैं गया प्रैक्टिस के लिए, वो आज ड्रीम मेरा पूरा हुआ और जो मेन स्टेप होता है वो आज कम्प्लीट हुआ। और मतलब मैं इस चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ड्रीम जैसा ही लग रहा था। और मतलब वो टी शर्ट देखते ही इतना मैं खुश हो गया।
1: और श्रोताओं, आज 23 जून है। आज ही के दिन 2013 में भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में बर्मिंघम में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी।
4: India win the Champions Trophy as England capitulate. It was their game, England, but it's been a tremendous bowling performance. And Mahendra Singh Dhoni, well, this was the one trophy he didn't have. He's got it now. And India now winners of the ICC Champions Trophy 2013.
1: तो इन्हीं स्मृतियों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी राय आप हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के

0: प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8%

0: की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है। कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फलस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फलस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदिनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन

0: have more domestic petroleum. Third is we should diversify our sources. एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे.
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई. अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है. जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए. 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता. 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता. अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं. फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा. ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा. वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा. लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए. पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल. सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं. मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया. इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
2: गुड इवनिंग. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South and contribute to a safer, more secure and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Devo Bhava and urged officers to keep citizens at the centre of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi

राम राम सा गोरबंद कार्यक्रम सुननी है सगले परिवार ने आज श्रीपाल रा मोकला मोकला राम राम सा। देखो सा मरुधरी आपनी आ धरती है, अरे धरती री जकी मिठास है, आपने जड़ी सोने जड़ी रेत जकी ने कवा इति मिठी अरे सुहावनी लागे, माटी री जकी सुगंध है बा बरसात से और ज्यादा गहरी हो जाया करे। बादल जब खेता में आवे तो खेत में उबो किसान बादलों ने झाला देवे,

के मारे अटे बरसात करो। अरे अब तो राम जी राजी ऐसा आपने, बरसात भी हो रही है, तावड़ो ही कम पड़ गयो। कग दिया थारा मेल आपने तक लगो लग पहुंच रहे है। एर जका व्हाट्सएप संदेश है वह भी आपने ताई पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत करा इंकी इच्छू।

लाल वर्मा। ओ संदेश अपने ताई पहुंचो है, कोई भी राजस्थानी गीत कथे माने सुनाइयो। पद्मा टॉकीज ने पा नगर मध्य प्रदेश में सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। गौरबंद कार्यक्रम मन बहुत ही अच्छो लागे। जय जय राजस्थान। चक 15 PS चों सरबजीत सिंह जोशन, सरबजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल जोशन मेलबर्न, रोबिन सिंह जोशन वैंकूवर। सबसे पहला तो कह पेशकर्ता ने हमारी तरफ से मोकली सारी रामा श्यामा एर कबूल करो सा कार्यक्रम सुन लाग रहा मायर भाषा को जो कार्यक्रम है मन बहुत ही अच्छो लागे। एर आपरो अंदाज जो है वो मन बहुत ही पसंद आवे। वाह सा लोग ठाकुर वाला सिंह, सोन सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, कोई भी गीत कथे मैंने सुनाइयो। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा एर टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। गांव डाबली रंगाला जालोर से मास्टर पेमा राम देड़ू, शेरा राम, राम सनई, कोला राम एर वीरेंद्र चौधरी। संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति यादव एर ओजस्वी यादव। गांव खोखरा वाली गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, शगुन बारासा एर आंगा साथी। के कार्यक्रम माने बहुत ही अच्छो लागे, फूटो लागे। हर मंगलवार ने मैं कार्यक्रम सुना एर कहानी रांसनिया भजन जिका बाबा ने बहुत ही दाया वे। वासा घणो घणो धन्यवाद। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय एर ए पी राय। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डींगिया, नमन डींगिया, अपार डींगिया एर कोई भी गीत में थारो मारो कागद कथे शामिल करियो, संदेश शामिल करियो। गांव पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश यादव, पूनम वर्मा, ज्योति एर शिवांश वर्मा। गांव हीरा वाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रीणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल, राम राम जी, सारस्वत जी। कार्यक्रम सुना मन बहुत ही अच्छो लागे एर लारलो कार्यक्रम जो थे फोन पर करियो वो बहुत ही बढ़िया लागो। गीत कथे मैंने सीमा मिश्रा का गाइड बिल्कुल जरूर सुना सा एर हंसनियो हाँ लिखे के एक जकी स्कूटी हुए नी आ स्कूटी चलान लाग रही कोई एक लुगाई जना बा जका ट्रैफिक का जका बे हा हवलदार बा रोक्यो एर बोलियो मैडम जी वो बोर्ड पढ़ियो को नी 40 ऊपर गाड़ी चलानो मना है तो के बा बोली मैं तो जो 35 गई हुई हूँ।

चंपा मैं तेर साथियों बैठो गीत सुनो फरमाइश आपने ताई लेकर भेजी ऐसा गांव रघुनाथपुरा गंगानगर सिंह लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित एर खुशी गोस्वामी लिखे के गौरबंद कार्यक्रम पेश करनिया ने मारी तरफ से घना सारा रामा श्यामा एर अभिनंदन। कार्यक्रम की प्रस्तुति बहुत ही दाय आवे एर चोखी लागे सा गौरबंद तो कह मन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लागे। पाकुड़ झारखंड से हूँ उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत केशुतासु अवर्णानंद सत्यम आनंद। कालूराम प्रजापत के गाइड है गीत की फरमाइश आपने लिखकर भेजी ऐसा दत्रेंगी बाटापुरा छत्तीसगढ़ से हूँ हीरामणि वर्मा पार्शमणि वर्मा पुष्पेंद्रमणि वर्मा नौके।

सुनो सा कालूराम प्रजापति साथियों री आवाज में उगीत एर संदेश आपने ताई पूछे है, मेल भी थारा पूछे ऐसा हो मेल आपने ताई पूछे गांव 10Z से हूँ, भानीराम जी, किशन जी, दीपू, राकेश, रूहानी, विराट एर, सजना, लालचंद एर, शांति देवी, कलरखेड़ा पंजाब से हूँ, लालचंद, संतोष, ओजैया, कमलेश, रत्नेश, भावित, आनंद, आनव, दिवाकर एर, आंगा साथी लिखे के माइड भाषा रो कार्यक्रम मन बहुत ही अच्छो लागे सा ई कार्यक्रम ने सुनन खातर उड़ीक रहे दिन रात माइड भाषा जेकी ई रो कार्यक्रम बहुत बड़ाई लिखी सा गांव फेफाणा छू लालचंद ओझा ओम ओझा राजेंद्र ओझा दलीप ओझा प्रदीप ओझा बिजमन ओझा एर रियांस ओझा लिखे सगला मिल गए में कार्यक्रम सुनार मन कार्यक्रम बहुत ही दाया वे वासा गांव आंडीखेड़ा सरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा इंदिरा शर्मा सार्थक शर्मा एर गांव चैनपुरा धोरीमन्ना बालोतरा से गायक जगदीश भारती गोस्वामी विजय भारती गोस्वामी नरेश भारती गोस्वामी एर मल्लिता गोस्वामी कैचंपा मैथी रो गीतड़ो सुने मन बहुत ही अच्छो लाग्यो वासा पावना सर से जैसलमेर से जितेंद्र पंवार गुलाब पंवार नेपाल पंवार पारस पंवार गोविंद गौतम एर भरत पंवार आनी चंपा मैथी रो गीत जो है वो अच्छो लागे वासा गांव कुवाई सालपुरा से नियमित श्रोता अपना सतीश श्रीवास्तव श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव हिमानी हर्षिता एर अभी

सेठ श्रीवास्तव, कार्यक्रम सुन लो, कदे नहीं भूले। वाह साहब, ए जगह मेल आपने ताई पहुंचे। ओ देखो मेल आपने ताई पहुंचे है, रामा श्यामा के सागे के मोटो सारो रेडियो घर में मेल रखे, कार्यक्रम सुन लाग रहा। अरे रेडियो सुनना तो कभी कदे नहीं भूला, पूरे परिवार के सागे रेडियो सुना है। गोरबंद कार्यक्रम तो बहुत ही दाया हुए, लिखने वाला है अर्जन सर, जिला बीकानेर से हूँ, हरी सिंह सियाग, विद्या देवी, सुनील, अनिल, एर सौरभ। वासा घना सारा मोकला सारा लखदा थाने एर संदेश थारा जी का अपने ताई पूछे बे भी बांचा। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਐਸਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖਮਾ ਗਣੀ ਗੈਸਾ ਗਏ, ਰਾਮਾ ਸ਼ਾਮਾ ਲਿਖੀਏ, ਨਰਗੋੜਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨਪੁਰੀ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਜੋਗੇਸ਼ਪੁਰੀ, ਟਵਿੰਕਲ, ਡਿੰਪਲ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਨਿਸ਼ਾ, ਤੁਲਸੀ, ਐਦਿਸ਼ਾ ਗੋਸਵਾਮੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਸਰਸਵਤੀ, ਸਰਸਵਤ ਐਸਾ, ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਕੋ ਨਾਮ ਲਿਖਿਓ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, के मोकलो सारो राम राम, गांधीनगर, गुजरात से हूँ, सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल एंड निशा। गोरबंद कार्यक्रम बहुत ही आचो लागे, कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार साईं गायकवाड़, कोई भी राजस्थानी गीत कथे माने सुनाइयो। एर मजनू कटीला से हूँ, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, एर माई मलिक, दादा बाबू रोड, गिरडीह, झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइजा नवाज, शरीफ नवाज, बाबू अहद चाहत, रंगा साथी, श्यामलाल राजपाल, जयपाल, संदीप कुमार, चिमना राम, मंडी केसरी सिंहपुर से, कोई भी गीत कथे माने सुनाइयो। एर दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, नमस्ते, कोई भी गीत थे माने सुनाइयो, बिल्कुल सुना सा। पटेल नगर मलोट से हूँ, अपना नियमित श्रोता डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, कुड्डू, मेरठ से हूँ, दिग्दर्शन और कविता गोड़, के माने कोई भजन सुनाइयो धार्मिक, बिल्कुल सुनावांगा सा। पलारी छत्तीसगढ़ से हूँ, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, एर मोताला महाराष्ट्र से हूँ, विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गोरी, एर ओमकार सुरलकर। गोरबंद कार्यक्रम पेश करने वाला ने मोकले सारी रामा श्यामा गामा रायण से, बनवारी लाल, जयपाल, श्रीमती बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल, पूनम, चालिया, के सुख में साथी घना मिले, भीड़ पड़ता भग जाए, साथी सोई जानिए, जो दुख में हाथ बटाए। वासा के अच्छी बात लिखिए थे कि थारी आवाज़ में गोरबंद बहुत ही अच्छो लागे, माइड भाषा का गीत भजन, एर छोटा छोटा टाबर गीत सुने बहुत ही अच्छा लागे, चौपाल कार्यक्रम भी अना अच्छो लागे। वासा गोरबंद कार्यक्रम मारो फेवरेट कार्यक्रम है। अब बात अपन लिखे गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से, प्रेम सारण, मोनिकार, मनीष सारण को, मारा लाडेसर प्रोग्राम है। वासा तो थे भी मारा लाडेसर श्रोता हो, एम कोई मेन मेक नहीं है सा, कोई भी गीत में हमारो नाम शामिल करियो। विजय पाटिल महाराष्ट्र जलाना शिव अपन लिखे, राम राम सा माने सीमा मिश्रा को गीत कथे सुनवाइयो, अनिल गौरव, कविता मानसी अरोड़ा, नई दिल्ली, मोती नगर एरिया से अपन लिखे सा। वार्ड नंबर एक पोफाली, यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर, अर्पिता, एर गांव बाड़ी वाला फाजिल का पंजाब से, ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत एर बेबी क्रीमा बगड़िया, बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन मध्य प्रदेश से, विनोद मूणत, जेहा नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाटा,
دشا

खुश मोहनत, गांव कुमार खेड़ा सहारनपुर से हूँ। सैयद मसरूर, साइना, हसन, अक्सा, नाजिफा, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब, अली कांडवा वाले से हूँ। बसंत सिंह चन, यशिका, युवराज गांधी, कुलदीप गांधी। कोई भजन गीत थे मैंने सुनाइए, बिल्कुल सुनो सा वो बाबे भजन।

सुनसा बाबे को भजन एर मेल आपने ताई पूछो है लिखे के लोभ बढ़ियो संसार में घट्यो हिबड़े में हेत कंचन री तृष्णा जगी ए सूना हो गया खेत बिरखा आवे सोमणी भरेला ताल तलाई धरती ओढ़ सी चूनड़ी हरख्यो हिवड़ो माई के भाई बंधु न्यारा भया टूट्यो हियेरो हार सुनो लागे आंगणो सुनो लागे आंगणो फीको सब संसार। लिखे गांव नाई वाला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा एर अलका मिड्डा वासा चौखी लाइना लिखी मेल।

अनेरी आवे, बिरखा बरसे सांतरी, साढ़ पपैया गावे वासा। राज सिंह नगर सिंह सोनलाल जांगिड़ मंजू जांगिड़ सुनील संजय जांगिड़ शिव प्रकाश साहब राम स्वामी लिखे गौरबंद मन बहुत ही आचो लागे। एर नियमित श्रोता विनोद कुमार छिंपा नगिना छिंपा मेगा छिंपा सुनीता यस भगवती छिंपा से जल से जू राउत सर हनुमानगढ़ सिंह आपन लिखे एर वाह सा राजा हिंदुस्तानी फिल्म गए गीत की फरमाइश। देखो सा राजस्थानी कार्यक्रम है, मेल जगह करो राजस्थानी गीतों खातर करो। वो मेल अपने ताई पहुँचे मोहाली पंजाब सिंह बबल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा एरंगा साथी हरिनगर गुड़गांव हरियाणा सिंह राय सिंह शेखावत चक 75 NP राय सिंह नगर सिंह बजरंग सिंह शेखावत भूपेंद्र सिंह शेखावत जयवर्धन ब्रिस्बान एरंगा साथी सगे आंगे भावेश एर राम राम सा खमा गणी बद्रीनाथ उत्तराखंड सिंह सुनील लोहिया प्रभास लोहिया जेनिका एर यशोदा लोहिया कदन जो बंदरी सांसती कदे न करिए कोय पलक जपतक पलक जपकता डल पचे ज्यों बादल री छोए वासा। खारिया सरसा सिंह प्रताप जनाकल इंदिरा मुकेश दिनेश अंशु एर बलदेव कटारिया गीत सीमा मिश्रा का गाइडो बिल्कुल मंडी गोलू वाला सिंह ब्रजलाल चौहान लिखा सा वासा गणी गणी रामा श्यामा कार्यक्रम यही दाय आवे एर वाणी जकी है बा बहुत ही अच्छी लागे के गौरबंद एक सेतु है ए आपा एक दूसरे से जुड़ेड़ा बिल्कुल सा।

सुनो सा सीमा मिश्रा साथियों की आवाज़ में वो गीत मिल आपने तय पहुँचे के बाजन लाग्या पाजना झूमन लाग्यो खेत मे बरसे मरुधरा सोनो उगले रेत के गाजे बादल गगन में मोर करे पुकार हरखी मारी मरुधरा आसी मे अपार मात पितारी छत्र छाया जटे सुखरी रात कृपा हुए राम जीरी बन जावे हर बात। वासा बहुत ही अच्छी बातें लिखी लिखने वाला है अपना नियमित श्रोता साधुल शहर सिंह राम कुमार रिवाड़ ए चंद्रकला रिवाड़ मेल अपने तई पहुँचो है दुलापुर यूपी से मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान मोहम्मद इरफान मोहम्मद इसरार ए नरगिस खातून तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्री लाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस ए गंगा देवी विश्वकर्मा ओ मेल अपने ताई पहुँचो है लिखने वाला है भास्कर डोलियो पंखियो वजियो बिचियो ज्योति आरती गंगा टैना जयश्री मोना आराध्या अंजलि भावना प्रभात दीक्षा स्वाति लिछी गोलती मिल गए मैं कार्यक्रम सुना चक अमरपुरा से वो मेला अपने ताई पहुँचे लिखे श्रीपाल जी रामा श्यामा गोरबंद कार्यक्रम मन बहुत ही अच्छो लागे मंगलवार री उड़ीक रवे मेरी सी आस रवे गोरबंद की तिकड़ी जकी है बामा ने बहुत ही अच्छो लागे तिकड़ी श्रीपाल जी रोहतास जी विकास जी लिखने वाला है नौत सिंह राम निवास सुथार। राम राम सामलोट पंजाब सिंह राजकुमार इंदौरा विकास इंदौरा गैरी इंदौरा बेबी दिव्या इंदौरा गोरबंद में शामिल करियो मारो गीत थे कोई सुनाइयो एर ओमेल आपने ताई पूछियो लिखने वाला है गांव कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा सचिन कड़वासरा सतीश कड़वासरा योगेश कड़वासरा नानियो है के मारे सागे युद्धो कड़वासरा एर एक दोस्त है लीलाधर स्वामी कुंदन जाखड़ एर किडू राम जोया किशन माइल हनुमान सारण एर सुनील भाईवाल शर्मा कार्यक्रम सुखो लागे। वासा मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा एर आंगा साथी गांव नलोई शिवानी मंडी हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा राजबाला कार्तिक एर वेदांश संदेश अपने तई जगह पहुंचेड़ा है थोड़ा बे भी शामिल कर लिया नरेंद्र भाटी वीणा भाटी ए गणेश चौक जोधपुर से रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ कालिया ए बलकार हुंदल काबुल सिंह हुंदल पदमपुर से अपन मेल मंडे एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी किन खुराना लव्य खुराना आरव खुराना मेगा आशीष अनुज छोटू एर आंगा साथी बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान संक्रांति चौहान उत्कर्ष चौहान गांव गमंडिया से जगदीश ढोकिया प्रमिला ढोकिया ज्योति स्वयं ढोकिया सरिता सचिन अमना तमन्ना साइन विष्णु ढोकिया ए द्वैती इवादारिणिया दूलापुर यूपी से मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तनवी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक एर बलवीर सिंह अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट अंजलि केवट रुद्राणी केवट कृष्णा केवट चंचल केवट फिल्म की फरमाइश लिखे है

आदर्श नगर बठिंडा से हूँ, अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, अनमोल सिंह, प्रवीण सिंह। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हूँ, अभिजीत गव्वाणकर, राही, श्रीमती सरिता गव्वाणकर, अर्जुन गव्वाणकर। कोई भी लोकगीत कथे मैंने सुनाइयो। बठिंडा रोड डब्बा वाली से हूँ, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। फाजिलका पंजाब से हूँ, भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा। अलीका डब्बा वाली से हूँ, रूप सिंह लाखोत्रा, करमजीत लाखोत्रा, सरबजीत लाखोत्रा, रानी सोनी, रजनू। कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली, आयुर्वेदिका फूलमाली। अहमदपुर खंडवा से हूँ, अपन लिखे एर गांव 4M से हूँ, कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत सिंह, जगदीश, आंगा साथी।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक गीतों और लोक भजनों का फरमाइशी कार्यक्रम गौरबंद। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुने कार्यक्रम गीत गंगा।

कार्यक्रम गीत गंगा सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज श्रीपाल शर्मा का खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।

क्रम में मैं रहूंगा आपके साथ, आपकी फरमाइशों को लेकर, आपके मनपसंद गीतों को लेकर। सुताओ आज 23 जून, आज के दिन एक महान शख्सियत, एक महान कलाकार, नायक और खलनायक के रूप में जिन्होंने फिल्मों में अभिनय किया, एक छाप छोड़ी, राज बब्बर, आज ही के दिन यानी 23 जून 1952 को इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के टुंडला में, और ये आज लगभग 74 वर्ष के हो चुके हैं। बहरहाल राज बब्बर को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम का आगाज करते हैं। इस बात के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।

भीगी पलकें फिल्म का गीत अभी आपने सुना। फरमाइश।

आपके हम तक पहुंची है, मेल और व्हाट्सएप पे संदेश आपके हम तक पहुंचे हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन येली, नवदीप येली, विश्वदीप येली और अशोक येली। कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं, ये संदेश हमें लिख के भेजा है। हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा ने। बाटापारा दतरेगी छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पार्समणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नौकेलाल वर्मा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ मऊनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक, आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई सवनकार, पिंकी सवनकार, आर्यन कृष्णा और पीहू सवनकार। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। लिखते कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। पाकुड़ झारखंड से हमें लिखते हैं। गीत गंगा में कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं। संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड एक पोफाली यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर, अर्पिता, अर्पिता जी। सिरसला फवारा चौक वार्ड नंबर 6 चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनग्रा, प्राची सोनग्रा, सोमल सोनग्रा, कार्तिक सोनग्रा और इनके परिवार के लोग। गांव जोगीवाला से गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। बुडलाना महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक मानकर। अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर। आदर्श नगर बठिंडा से हमें संदेश लिखते हैं। गीत आप कोई भी हमें सुनवाएं। नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। बारा राजस्थान से गांव कवाई सालपुरा से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। श्यामलाल राजपाल, जयपाल, संदीप कुमार, चिमनलाल मंडी, केसरी सिंहपुर से हमें लिखते हैं। और पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। गीत गंगा कार्यक्रम में कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं। गांव खोखरा वाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, शगुन बारासा और इनके साथी। बहरहाल सुने कार्यक्रम का अगला गीत।

दाग द फायर, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ें। पसंद करने वाले हमारे श्रोता,

चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा, मानकसर से महेंद्र शेखावत और गुड्डू, राम कुमार भादु, पुनीत पंचारिया और इनके साथी। संदेश हम तक पहुंचे आपके, सादुल शहर से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, गांव घमंडिया से जगदीश ढोकिया, प्रमिला ढोकिया, ज्योति, शिवम ढोकिया, सरिता, सचिन, अमन्ना, तमन्ना, साइना, विष्णु ढोकिया, इवाधारणिया और इनके साथी। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। बागपत यूपी से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया।

क्या ज्योति, शिवम डुकिया, सरिता सचिन अमन्ना तमन्ना, साइना विष्णु डुकिया, इवा धारिणिया और इनके साथी, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, बागपत यूपी से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया, अलीका डब्बावाली से बसंत सिंह चंद, यशिका, युवराज गांधी, कुलदीप गांधी और इनके साथी, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव, कंवर कॉलोनी बड़वा खरगोन यूपी से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, प्राग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, जनकपुरी सहनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, गीत गंगा कार्यक्रम बेहद इनको पसंद आ रहा है, कार्यक्रम सुन रहे हैं लाइव, गांव अरायन से डॉक्टर बनवारीलाल, जयपाल, विमला जयपाल, सोनू, ममता, दिशा मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल और पूनम चालिया, गांव कोला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, मोहनलाल सुथार, बजरंगलाल सुथार, सुनील कुमार और इनके साथी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल, मेल आपके हम तक पहुंचे हैं, तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्रीलाल, विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, बेंगलुरु से भारतभूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्यांशु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पुरुष, पंजाब से मलकित, राजकुमार इंदौरा, विकास इंदौरा, गैरी इंदौरा, बेबी दिव्या इंदौरा, राम सिंहपुर से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु, ये मेल हम तक पहुंचा है, वार्ड नंबर 23 हरिनगर गुड़गांव हरियाणा से राय सिंह शेखावत, 75 एनपी रायसिंह नगर से बजरंग सिंह शेखावत, भूपेंद्र सिंह शेखावत, जयवर्धन बिरसवान और भावेश, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनप्रीत, मनविंदर सिंह पांधा और जीएस रामगढ़िया, आइए सुनवाते हैं आप सबको ये गीत।

प्रेम रोग फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज़ें थी सुरेश वाडेकर, लता मंगेशकर और साथियों की, पंडित नरेंद्र शर्मा के लिखे गीत को संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइश हम तक पहुंची है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, गांव हीरा वाली फाजिल का, पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, मांसू गोदारा, सरवण रेणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल, राम राम के साथ लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम लाइव सुन रहे हैं।

कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं। गांव रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी की फरमाइश हम तक पहुंची। ये फरमाइश हम तक पहुंची है जलालाबाद वेस्ट से। लिखने वाले हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहुजा। गीत हमें सुनवाएं, आपके साथ जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे परिवार AIR सूरतकट। नाम इन्होंने नहीं लिखा। जलालाबाद फेट से सुरेश गगनेचा, कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश युदो कड़वासरा, कृष्ण माइल, किडू रामजोया, लीलाधर स्वामी, गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, गांव कलवंडी खुद जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार और इनके परिवार के लोग, हनुमानगढ़ टाउन से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान और इनके साथी, नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार साई, फाजिलका रोड मलोट पंजाब से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल, दिशा मोला, जगतार जग्गा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक जालंधर से इन्होंने फरमाइश भेजी है। दूलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह, माजा एक रूपदमपुर से बलकार सिंह हुंदल, काबुल सिंह हुंदल, कुलविंदर सिंह हुंदल और मित्रगण, गांव फरासी से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां, गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक, चक SDP 10 SDP लालगढ़ जाटान से रामेश्वर जी निरानिया, सुमन देविया, नूतन पंकज, मनीषा हेमू और ब्रजलाल निरानिया, अर्जुन सर से राजू ओझा, निखिल, चिरायु पार्थ, आदित्य ज्योति, आर्यन वेदांत, तनिषा और हार्दिक, सूरतगढ़ से दीपक बिश्नोई, अनिल बिश्नोई, सुभाष ढाका, रामावतार शर्मा, राज्यसर से जोगेंद्र शर्मा और आराधना शर्मा। मेल हम तक पहुंचे हैं। बहरहाल पहले सुनवाते हैं आपको ये गीत।

हाथी मेरे साथी। इस फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। मेल हम तक पहुँचे हैं सहारनपुर से, हमें ये मेल लिखते हैं चंदन नगर से सुरेश नारंग, आशु नारंग और सोनाली नारंग, आशा नारंग और इनके साथी, संगरिया से श्याम मिड्डा, सुमन मिड्डा, सहज मिड्डा, विराज और इनके साथी, विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, गांव हीरा वाली फाजिल का पंजाब से हजारीलाल पुरोहित, मोनी पारीक और भूपेंद्र पारीक, सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बाय हिमाक्ष, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी।

રાની માનકપુરી બોરખેડા પિત્રામલ ઉજ્જૈન મધ્યપ્રદેશ શ્રી વિનોદ મુણત નેહા જૈન દીપક મયંક મુણત ચેતન નાટા દીક્ષા કુશ મુણત ઓર ઇનકે સાથી જલાલપુરા સહારનપુર યુપી સે શરણ કુમાર પ્રજાપતિ શિવમ પ્રજાપતિ આર્યન પ્રજાપતિ લવિશ પ્રજાપતિ મુનિષ દેવી પ્રજાપતિ એવરગ્રીન રેડિયો ગ્રુપ બિહારી કોલોની શાહદરા સે તુલસી મસ્કીન વીના મસ્કીન ચૈતન્ય મસ્કીન ચંડીગઢ સે રાહુલ ખુરાના રચિતા ખુરાના કેશુ ઓર રિદાન ખુરાના સંબલપુર કાંકેર સે ફાગુરામ યાદવ જ્યોતિ યાદવ ઓજસ્વી યાદવ સંદેશ આપકે હમ તક પહોંચે ये संदेश हम तक पहुंचा है किशनगंज बिहार से लिखने वाले हैं रविंद्र मोहन दास आशा देवी अनुराग और मोहन बठिंडा रोड डब्बावाली से राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग तानिया नारंग खेगांव खंडवा से कैलाश फुलमाली दीपक फुलमाली समर फुलमाली और वेदिका फुलमाली गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत अलीका डब्बावाली से रूप सिंह लाखोत्रा करमजीत लाखोत्रा सर्वजीत लाखोत्रा रानी सोनू और रजनी नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस वाणकर निर्मला नवाणकर विशाल नवाणकर पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक मधु नायक गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी पूजा पायल जूली और जगदीश जौहरी चक सात डीवीएन भादवाली डाने से टेकचंद चारण संतोष देवी सत्यप्रिय चारण जय सिंह चारण बिटिया योगेश्वरी रंजीत सिंह सुतार गुरुदेव सिंह बगानिया हरनेक सिंह बगानिया कृष्ण लाल राहत 63 LNP से जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया रजत भाटिया मयंक भाटिया कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी वलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय कर्णवीर हाउस बुत्सो केचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा कर्णवीर करण दीपेंद्र वीरेंद्र कुलदीप सीमू एकम दमन और अभिजोत चक 15 PS से सर्वजीत सिंह जोसन सर्वजीत कौर जोसन गुरमन सिंह जोसन आदर्श पाल जोसन मेलबर्न से रॉबिन सिंह जोसन वैंकूवर से कुंडवाली महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर प्रमोद यमेकर प्रदीप यमेकर नोहर हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार मनोज सुथार हिमा सुथार पवन सुथार मोहन लाल महावीर मिस्त्री दुलीचंद सुथार लिखते कार्यक्रम गीत गंगा हम सुन रहे हैं राज बब्बर के जन्मदिवस पर उन पर फिल्माए गए गीत से गीत गंगा कार्यक्रम का आगाज उन्हें अच्छा लगा कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं गांव निम्नाबाद जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा जितेंद्र कौर गुरप्रीत लवप्रीत करमजीत कौर भादरा आरंभ शहर से गजानंद सारस्वत डॉक्टर ताराचंद सारस्वत सोनू पवन कुमार साहिल राघव मुरारीलाल शर्मा ममता मीतू कितु अक्षको महावीर लोहरा भूसाराम मील जितेंद्र मनीष राजेश कुमार हर्ष और इनके परिवार के लोग गांव होडू बालोत्रा से उम्मेदाराम सुरेश कुमार सुरतेश गोदारा मदन चौधरी और इनके साथी कुंडवाली महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर विजयलक्ष्मी सावनकर राजेश राकेश और ऋषिता आइए सुने आप सभी की पसंद पर ये गीत।

गोरा और काला फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मुकेश और लता की आवाज़ें। संदेश आपके हम तक पहुँचे हैं, मेल आपके हम तक पहुँचे हैं, मेल हमें मिला है। भूपेंद्र सुथार संगरिया से लिखते हैं कि कार्यक्रम गीत गंगा लाइव सुन रहे हैं। राज बब्बर पर कार्यक्रम की शुरुआत इन्हें अच्छी लगी और लिखते हैं कि संगरिया में राज बब्बर यहाँ दो बार आ चुके हैं, इनका मिलना भी हुआ है। इनके साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं कोटा से कविता शर्मा, मोनिका जैन शिवपुरी से। मेल हम तक पहुंचा, कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं, मलोट कैंप पंजाब से राजकुमार इंदौरा, विकास इंदौरा, गैरी इंदौरा, बेबी दिव्य इंदौरा। ये मेल हम तक पहुंचा लिखने वाले गांव बारह टीकी राज सिंह नगर से धर्मपाल भारती, कृष्णा भारती, विशेष भारती, अंजना भारती और इनके साथी।

संदेश आपके आप तक पहुंचे। मोंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलका लुबना और यस मंसूरी।

गंज डुंडवारा शेरवानी स्कूल से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज केतनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। गांव न्योला रामपुरा से सुरेंद्र डीडन, शकीला डीडन, संदीप अनवर, अकू बावरा और इनके साथी। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोरधंधरा, घनश्याम भार्गव, हसन सिक्का। गांव हिपरसोगा ओसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और कृष्णा शेख। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसिफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। ढाणी लाल खां से जावेद खां, इरमान खां, अरमान खां, इरमान खां, सीमा बानो, विनोद खां, सोहिल खां, जुनेद खां, मुखराम जी, आरिफ खां, ईयान खां, अशरद खां, अरमान खां और इनके साथी। आदर्श नगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी, समीम अहमद अंसारी, असनी अहमद अंसारी और सुनील रस्तोगी। कस्बा गुनोर यूपी से फारूक अली खान फैजी, फाराज फरहीन, फरहान फारिया, ताहिरा। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांसी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा और जीवन बुक। करनाल हरियाणा भोला कॉलोनी धरौंदा से विजेंद्र कुमार, जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल, वाणी जयजान और इनके साथी। गांव लोगढ़ ठाकुरावाला से सोन सिंह गिल, जलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनोज सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और इनके साथी। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद असान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासिन हाशमी, शमसुल कमर राही। मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी आलोट रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। पंचकुला से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक डींगरा। चकचौदह पीएस से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मंदराज, विरक्की। हितेंद्र दास आसाम से कोई भी गीत सुनवाने के लिए हमें फरमाइश लिखते हैं। खारिया हरियाणा से प्रताप जनाकलेंद्रा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। गौरधन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और रचिता खुराना, राहुल खुराना, केशु खुराना। आइए सुने आप सभी की पसंद पर ये गीत।

उन मंडी बीकानेर से जितेंद्र रिटोड और इनके साथी मेल हमें लिखते हैं हमारे नियमित श्रोता रेडियो प्रेमी सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। संदेश हम तक पहुंचा है। मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुद निसा, सविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यस मंसूरी का बाजार रोड मुंगीसापुर से, गंज दुडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुने आप सभी की पसंद पर यह गीत।

0: इसी गीत के साथ आज का गीत गंगा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रीपाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गंगा। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11 बजे हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहाँ बरसात

0: कम रहने की संभावना है।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।